मीडियम वेव 396.6 आठ मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 14.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 396.6 आर्दोमीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत देश वंदना से। जिस देश पर जान न्यौछावर करते हैं वीर, जिस देश पर जान न्यौछावर करते हैं वीर, उस देश की माटी सोना, उस देश की माटी चंदन, करते हैं हम सभी उस मातृभूमि को नमन, उस माटी को नमन। प्रस्तुत है समोस्वर में ये देश वंदना।

इस देश वंदना के बाद आइए स्तुति करते हैं उस प्रभु की, उस हरि की। पूरे ब्रह्मांड की रचना उस परमात्मा की, इसलिए वह बसता भी है हर प्राणी के दिल में, हर जीव के मन में, जिसका वास है उसका प्रकृति के कण कण में। आइए हम भी सिमरन करें मन से उस हरि का।

सृष्टि का रचनाकार वो परमात्मा हर भाव समझता है, हर प्राणी के हृदय में बसता है और इसलिए सबके दुख सुख की खबर भी रखता है। आइए भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की ये भक्ति रचना सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में।

0: हरिओम शरण के स्वर में इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम यही संपन्न करते हैं। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख और स्वर है पद्माक्षी अवस्थी का।
1: स्व का शाब्दिक अर्थ स्वयं के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन है। प्राचीन काल में स्वाध्याय का संबंध वेद और शास्त्रों के अध्ययन से था। श्रीमद् भगवद् गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जिन दैवीय संपत्तियों के विषय में कहा है, स्वाध्याय उनमें से एक है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तपार्जवम्। अंग्रेजी में कहावत है, एम्पटी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर। यह कथन बिल्कुल सही है। जब कुछ कार्य न हो तो मस्तिष्क 100 दिशाओं में भागता है, क्योंकि वह चंचल होता है। अतः बेहतर यही है कि हम स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग बना लें। इससे समय का सार्थक उपयोग तो होगा ही, हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। स्वाध्याय हेतु न आयु की सीमा है, न उम्र का बंधन, न स्थान की पाबंदी, किंतु यह आवश्यक शर्त है कि स्थान एकांत शांत हो और अध्ययन सामग्री ऐसी हो जो बुद्धि के विकास में सहायक हो, स्तरीय हो, धार्मिक साहित्यिक हो तो अच्छा हो। हल्के फुल्के स्तर की मनोरंजन से भरपूर अध्ययन सामग्री मानव मन को भटकाती है, ज्ञान को संक्रमित करती है, बुद्धि को क्षीण करती है। गीता के 4वें अध्याय का 28वां श्लोक है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तः परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशित्रितः। इसमें स्वाध्याय को ज्ञान का यज्ञ कहा है, इसे कहीं कहीं तप भी कहा है। सत्य है कि स्वाध्याय या यज्ञ को तप कहना, क्योंकि इससे मन शुद्ध उपयोगी व श्रेष्ठ अध्ययन सामग्री समर्पण ज्ञान प्राप्ति की उत्कट लालसा आहुतियों से कम नहीं। यह सत्संगति के समान है, पर इसमें गुरु या साधु नहीं होता। अध्ययन में चित्त रमा रहे तो फिर कुसंगति कहाँ। पिछले 3 वर्षों से विश्व कोरोना डेल्टा ओमिक्रॉन जैसी महामारी से जूझ रहा है। लोगों का घर पर ही सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है, तब तो स्वाध्याय के लिए सबके पास पर्याप्त समय है। घर पर ही रहकर स्वाध्याय कर ज्ञानार्जन में वृद्धि की जा सकती है। भारतीय साहित्य पौराणिक धार्मिक ग्रंथों से परिपूर्ण है, इनसे अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। तो हमारा कर्तव्य है कि बच्चों में भी स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करें। वर्तमान समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टेलीविजन मोबाइल लैपटॉप का है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी इन उपकरणों में दिन रात व्यस्त रहते हैं। कहें इनकी बुरी लत उन्हें लग चुकी है, वो नशे की तरह इनके आदि हो चुके हैं, जो बहुत बुरा है। इससे आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में तिरछापन, चश्मे का नंबर बढ़ना, अनिद्रा, सिरदर्द जैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। जब बचपन ही अस्वस्थ है तो देश का भविष्य क्या होगा। अतः आवश्यक है कि हम समय रहते सचेत हो जाएं और उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। उनके बचपन को हमें सुरक्षित रखना है। स्वाध्याय के कई लाभ हैं। पहला, समय का श्रेष्ठ सदुपयोग, घर पर सुरक्षित रहना, कुसंगति से बचाव, ज्ञान का विस्तार आदि आदि। गीता स्वाध्याय को वाणी संबंधी तप कहती है, स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयता पुच्यते। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। साथ ही वे इसे मन की शुद्धि का क्रिया योग भी बताया है, तप स्वाध्यायश्वर प्राणिगानानि क्रिया योग। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से लेकर कई योगियों ऋषियों ने स्वाध्याय की महत्ता प्रतिपादित की है, तब हमें भी इसके महत्वपूर्ण पक्ष को स्वीकार करना ही होगा। यह हमारे व्यक्तित्व निर्माण का आधार है, यह ज्ञान का स्रोत है और ज्ञान विनयशील बनाता है। स्वाध्याय को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, तभी वह सफल हो पाएगा। स्वयं को ज्ञानी मानने वाला अभिमानी कभी सफल नहीं हो सकता ज्ञानार्जन में।
0: चिंतन अभी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। आलेख और स्वर था पद्माक्षी अवस्थी का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर दिया है ए हरिहरन ने, संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं। उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर दिया था ए हरिहरन ने और संगीत निर्देशन दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कृषि सामाय की पीड़ा खड़ा चुकोट।
1: जसन जसन जनसंख्या बाढ़े से हुसने हुसने बेड़ा कमानी कम होय से बेड़ा खड़ा कमानी कम हो तो के देखुन पशुपालन के किसान मन आमदनी चो प्रमुख काम बनौकलाय सकोत। मानतरे चो नगद वाट मन नी जान तो के किसान मन के चो खूबे फायदा नी मिरुक सके से। यही काजे गोरस व्यापारी के लाभकारी बना तो काजे पशु पोस्तो लोग मन के एगोट मन के लेख करुकलाय पड़े से। सबले पहिल तो पोस्तोर गाय हो नहाले भैंस पालन पोषण काजे ज्ञान और मन चो इच्छा शक्ति होतर खूबे जरूरी हो ऐसे। दूसर गोट हो ऐसे गोरस बीती पशु मन के गाय भैंस जो घेंतोर पूरे छाट तो काजे पशु के घेंतो बेरा उम्र नस्ल और हुंचो स्वास्थ्य कसना से एक ध्यान देतर खूबे जरूरी हो ऐसे। घेंतो काजे बले गोरस बीती गाय नहाले भैंस के लाफी ठान ले नी घेंतो राय। कसन बल्ले लाफी ठान ले घेनलो ने ये जलवायु हुनके हुंचो काजे अच्छा होय दे कि नहीं हुंचो देह पाए अच्छा रह दे कि नहीं ये गोट काजे लेख करतो राय। और पशु मन उन्नत नस्ल चो रहो ये गोट के बल्ले दखतो राय। पशु चो उमर कसन रहो कास्कर भाई बहन मन गाय और भैंस के दखुन भांति घेनतो राय। हुन एक नहाले दुई हार पीला पकाऊ रहो। संकर नसल चो गाय चो पहिल हार पीला पका तो उमर 28 ले 32 महीना और भैंस चो उमर 45 ले 48 महीना ले आगर नी होतो राय। और लेख करतो राय कि हुन चो देह पाए नगत और बरसक रहो। ढेटी मन बले नगत और बीमार नहालो रहो एके बले दखुन भाती घेन तो राय। गोरस कितलो दय से एके सांगा सुना हिसाब ने नाई पारले घेंतोर पूरे आपलो हाथ ने 3 ले 4 हार दुहन भाती कितरो गोरस दय से एके जांच करुन दखतो राय। गाय भैंस के छाटतो बेरा हुन चो पीला बाछी रलो ने और नगत आए। काय काजे की बाछी ले ए तो समय आने गोटो गाय नहाले भैंस बने दे। संगे संगे लेख करतो राय कि हुन चो सिंग और खुर जसन चो हुसन रहो। बल्लो ने बिकतो काजे व्यापारी मन हुन चो सिंग के घसुन भाती लुका हुआ तो मर के ऐ काजे ये गोट के बले लेख करतो राय। पशु के पूरे ले पाठे हिंडाउन बले दखतो राय। पशु चो जनेन्द्री बल्ले जन्मा तो आंग ने काई अलग ले काई पानी महा घसरे से तो नहीं ये गोट के बले लेख करतो राय। लेंगड़ी के बले हाथ ले हलाउन भाती दखतो राय। ऐचे संगे पशु जानवर चो टक्कर के बले लेख करतो राय। ये चो काजे लगे जाऊन दखतो राय। काय काजे की कोनी कोनी पशु दूसर लोग के सिंह ने मारुआत और कोनी कोनी पशु मन सिंह ने खुटा के मारसोत। असन पशु के बले लेख करतो राय और नी घेनतो राय। आगर गोरस काजे हालिस्टीन फ्रीजियन जर्सी संड ले जन्मालोर संकर गाय मन ये थाने 62.5% विदेशी नस्ल चो रहू रहो और एक घेनतो राय। देसी नसल काजे साहिवाल नहाले हरियाणा चो शुद्ध नसल चो गाय मन के घेनुक सकास। भैंस चो नसल काजे मुर्रा और उन्नत मुर्रा भैंस पोस्तर नगत आए। कास्कर भाई बहन मन सांगलोर असनवाट के धरुन गोरस चो उत्पादन कर ले जुगे लाभ कमावा से और आप लोग डेयरी व्यवसाय के आगे बढ़ावा से।
0: कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकोट का प्रसारण किया गया मीडियम वेव और FM बैंड पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए हुल हुली। बस्तर के देवी देवताओं के धुन के इस कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए पाट भैरम पाड़। कलाकार हैं भारत और साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हुलहुली में, पाठ भैरमपाड़, कलाकार थे भारत और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, हम आपको सबसे पहले बता दें रायपुर से रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आज सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां ये कार्यक्रम, और सुबह 10:00 आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7:05 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा नमस्कार जगदलपुर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कथालोक में कथा मेले का तोरण, लेखिका होंगी उर्मिला आचार्य और साथी होगी फिल्म गीतों की मधुरिमा। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9:00। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म होगी खाकी। 10:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गुड़दुम। आज सुनेगा इसमें हल्बी लोकगीत, कलाकार होंगे डमरूधर और साथी। 11:00 हमारा कार्यक्रम होता है एक ही कलाकार। आज ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायिका गीता दत्त पर। लोक वाद्य धुन पर केंद्रित पाड़ आप सुन सकते हैं 11:30 पर। कलाकार होंगे भागीरथी और साथी। आज दिन के 12:00 हम आपको सुनवाएंगे रूपक। इसमें सुनिएगा रेला गीत ये रूपक। इस रूपक के लेखक होंगे डॉक्टर सतीश और निर्देशन होगा बलवीर सिंह कच्छ का। श्रोताओं, ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे घर द्वार। समय रहेगा 12:30 का। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन के 1:10 पर श्रोता सुमन। और कलाकारों के लिए केंद्रित कार्यक्रम कला और कलाकार सुना जा सकता है दोपहर 2:30 पर। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5:00 कार्यक्रम विवरण के साथ। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। समय रहेगा 5:05 का। युवा श्रोताओं के लिए अपना कार्यक्रम युवा श्रोता सुन सकते हैं 5:10 पर युववाणी। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर समय रहेगा 7:00 का। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनेगा शाम 7:21 पर। श्रोताओं, रात्रि 8:00 कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। आज इस कार्यक्रम में सुनेगा संगीता कश्यप से बालिका शिक्षा पर वार्ता। पीला मन काजे गोठ ये कार्यक्रम सुना जा सकता है आज रात 8:30 पर। आज इसमें सुनेगा हल्बी प्रस्तुति सुभाष चंद्र बोस पर। प्रस्तुति होगी अनिता निर्मल की। कुछ फिल्में नगमे सुनेगा 9:15 पर कार्यक्रम पुराने फिल्मों से के अंतर्गत। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मोचो मंचो गीत। ये कार्यक्रम आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों पर केंद्रित है। 10:00 आप सुन सकते हैं पाड़ में लोकवाद्य धुन। आज सुनेगा भीमादेव पाड़ और कासन पाड़। कलाकार होंगे भारत और साथी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इसे आप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ट्यून कर सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

जिंदगी हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। खुशियां दौड़ती चली आती हैं, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। फिर से एक हसीन सुबह में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, और मैं लक्ष्मी कुड़िकल। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

सभी श्रोताओं को फिर से एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, हमारे बड़े बुजुर्ग और चिकित्सक हमेशा कहा करते हैं कि भरपूर नींद के बाद सुबह की सैर दिन भर हमें तरोताजा रखती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नींद पूरी हुई और आपने अपनी सैर भी कर ली है। कहा जाता है कि साथ में अगर हम थोड़ा योग और खेल भी कर लें तो भी हमारा स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होता है। श्रोताओं, अगर आप अब भी नींद में हैं तो उठ जाइए, क्योंकि नमस्कार जगदलपुर का आगाज हो चुका है। आज है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, जो विश्व स्तर पर खिलाड़ियों, संगठनों और खेल संघों द्वारा मनाया जाता है। श्रोताओं, हम प्रायः देखते हैं कि छोटे बच्चे कुछ न कुछ खेलते ही रहते हैं, लेकिन अगर यह खेल जब नियमों और मूल्यों पर बंधकर खेले जाए तो प्रतियोगिताओं और विजयी होने के लिए खेले जाते हैं, तब उसका स्वरूप बदल जाता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हर खेल के नियमों को हम पूरी तरह जान लें। ये जानना बेहद जरूरी होता है। प्रायः इंडोर और आउटडोर खेलों में कई खेल शामिल होते हैं श्रोताओं, लेकिन हम कुछ एकाध खेलों के बारे में ही जानते हैं। खेल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं होते, रुचि के अनुसार अगर प्रशिक्षण लेकर खेला जाए तो ये खिलाड़ी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण लेकर खेलते हैं तो वहां तक पहुंचते हैं। खेलों को मित्रता, एकजुटता, सहिष्णुता और समाविष्टता की भावना के साथ बिना किसी भेदभाव के बढ़ावा देने के लिए ही विश्व निष्पक्ष खेल दिवस यानी वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाता है, जो आज हम मना रहे हैं। इसमें प्रतिद्वंदियों का सामना करना, उनका सम्मान करना, नियमों का पालन करना, खेलों में डोपिंग, हिंसा और धोखाधड़ी का सक्रिय रूप से मुकाबला किया जाना भी शामिल है श्रोताओं।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: इन संदेशों के बाद आप फिर से वापस नमस्कार जगदलपुर में, और मैं हूं लक्ष्मी कोड़िकल। हथेली से बादल छूने का सपना, हथेली से बादल छूने का सपना।

ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, पाना है मुझको नई मंजिलों को, आशा भरी सुनहरे सुबह को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। ये लाइनें निश्चित रूप से स्वप्न पूरे करने के जुनून को दर्शाती है श्रोताओं। किसी सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करना जुनून है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है, पर जब बिना समझे किसी चीज को पाने के लिए अड़े रह जाए तो उसे जिद कहते हैं, जो प्रायः छोटे बच्चे अधिकतर करते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि वो फोन पर गेम खेलने के लिए जिद करते हैं, या फिर माता पिता से किसी ऐसी चीज या खिलौने की जिद कर बैठते हैं जो उनकी पहुंच से उस समय बाहर होती है। अगर वो आवश्यक ना हो तो बच्चे को समझाया जाना जरूरी है श्रोताओं, अन्यथा वो आदत में शामिल हो जाती है और बाद में इस आदत का छूटना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब जिद का आधार अहंकार या नासमझी बन जाए तो यह विनाशकारी हो जाता है, घर की शांति खत्म होती है और रिश्तों में भी नुकसान पहुंचता है, और इस वजह से दूसरों की बात भी नहीं समझ आती उस समय। अगर यह आपके आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है तो फिर हमें चाहिए कि हम उसे तुरंत त्याग दें। कहते हैं नर्म और नन्हे पौधों को तुरंत आकार दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो पेड़ बन जाए तब उन कड़ी टहनियों को काट कर ठीक करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि नन्हे अगर जिद करें और रूठ जाएं तो उन्हें तुरंत मना लीजिए, ठीक कर लीजिए, क्योंकि कहीं ये आदत जिद भी न बदल जाए।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, और अब आपको हम लिए चल रहे हैं कथालोक की ओर। श्रोताओं, हर व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, और कुछ व्यक्तियों में उन विचारों को क्रम से संजोकर व्यक्त करने की क्षमता होती है। सृजन शैली का एक पहलू है कहानी या कथा। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं कथालोक की ओर। इसमें सुनते हैं कथा मेले का तोरण। लेखिका हैं उर्मिला आचार्य।
5: फागुन की गुन धान सुखाते सुखाते सुकली थक गई थी, फिर भी बकरियां थी कि चबर चबर। जब मनु का नशा कुछ कम हुआ तो बेटी सुकली के हाथ से डंडा लेकर दे दनादन पीट डाला। मनु बेटी पर भी नाराज होता कि इतने में पुरानी जीप खड़खड़ाते कमलू हाजिर हो गया। मनु गुस्सा कर बोला, ए लो, यही जगह मिली, बकरी हो या ड्राइवर। कमलू मजबूर था, नजर चुराए अपने खोली में घुस गया। वैसे भी उसे कल कोदई माता के मेले में जाना था। थका शरीर, जल्दी ही नींद आ गई। सपने में कसी देह और अमिया की फांक सी लिए आंखें, सुकली हाजिर। कल मेला घुमाने माँ को भी ले जाना बाबू। और तुम? मुझे घर जगना है, घर घर घर। सुकली जैसे घर से बंध गई थी। कमलू चाहता था कि जल्दी ही वो सुकली से ब्याह कर ले, पर उसके पास ब्याह का भोज भात देने लायक रुपया पैसा कहाँ था। इस खोली को भी उसके बाप ने सेठिया के पास बंधक रखा था। कमलू तो सेठिया की गाड़ी का ड्राइवर था। जब सेठिया ने नई गाड़ी खरीदी तो पुरानी जीप गाड़ी कमलू को यह कहकर टिका दिया कि जब 4 पैसा कमा लो तो इसकी कीमत चुका देना, नहीं तो तुम्हारी खोली हमारे पास बंधक पड़ी है, चाहो तो उसे बेच देना, गाड़ी की कीमत भी चुकता हो जाएगी और बचे रुपए से ब्याह का भोज भात दे देना। उसकी बात सुनकर कमलू चुपचाप सिर हिला रहा था, पर शुक्ली खूब नाराज हुई। कमलू भी जानता था कि सेठिया की नजर उसकी खोली के साथ साथ बगल के पटेल और मनु की जमीन पर है, जहां वो फार्म हाउस बनाना चाहता है। अगली सुबह गाड़ी में यात्रियों को लेकर कमलू मेले की ओर चल पड़ा। माघ फागुन की गुनगुनी धूप, उस पर महुआ की मादकता, उबड़ खाबड़ रास्ता और भीड़ ही भीड़। रंग बिरंगे सतरंगे झांपी टोकनी देवलाठी, लड़का लड़की मोटर गाड़ी, कच्ची पक्की सड़क, नए जमाने के कपड़े, साड़ी ब्लाउज जम्फर, और उधड़ी मांसल देह, सामने मेले का तोरण, तोरण से लगा काला चश्मा, जैसे कोई नाटककार या स्वांग धरे खड़ा हो। मेला देखने वाले इस नौटंकी को देखकर हंस रहे थे। जीप गाड़ी से उतरे लोग मेले में अपना काम धंधा पसारने लगे। कमलू को कल इन्हीं यात्रियों को लेकर लौटना है, तो आज कुछ हम भी कमा लें। यह सोचकर घर से चलते समय उसने पान की एक थप्पी अपने साथ रख ली थी। अब शहतूत पेड़ के नीचे पटा पर पान की दुकान सज गई। पहला बीड़ा सेठिया के नाम, जो वनोपज खरीदने यहाँ आया था। अजनबी लड़के लड़कियां, जाना पहचाना मिला मंडई, सुन काय चूड़ी पहनेगी, महला करेगी, चुप कर महला सगाई करेगा। सखी सहेलियां खिलखिला रही थीं, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। मेले में कुछ कस्बाई लड़के भी आए थे, कुछ काम धंधा के लिए तो कुछ मंचलों को घुमाने के लिए। खिड़खिड़ी और कुकड़ा लड़ाई के बाद मंचल एक आदिवासी औरत के पीछे हो लिए। सुनो इधर आ, गंदे इशारे और फप्तियां। औरत ने ध्यान ही नहीं दिया तो साहस पाकर उसके कंधे पर हाथ रखना ही चाहा कि मंचले और औरत के झुमा झटकी के बीच में उसके छाती में पड़ा मोती मन का मंचले के हाथ आ गई। गुस्साए औरत ने पलट कर मारना चाहा, पर न जाने क्या सोचा चुप रह गई। आश्चर्य, कस्बाई लड़कों का हौसला बढ़ा, सोचा छेड़खानी इनके लिए आम बात है। अब और आगे बढ़ा वो, उसे खींच कर कोने की ओर ले जाना चाहा, पर ये क्या, औरत ने पूरी ताकत से उसे दे दनादन बम का गोला पीट डाला। भागती भीड़ मारो मारो पीटो पीटो बचाओ बचाओ की आवाज से गूंज उठा। कमलू पान लगाना छोड़कर भीड़ के पीछे हो लिया। देखा भीड़ मंचलों को पीट रही है और पीड़ित औरत उन्हें कुछ समझाना चाह रही है। गोंडी बोली मंचलों के समझ से बाहर की है, कमलू ने ही अनुवाद किया। सुनो, तुमने छेड़खानी की पहली गलती, फिर इसकी छाती से मोती माला चुराया दूसरी गलती। इस औरत ने सोचा कि तूने इसकी छाती से माला ही नहीं चुराया बल्कि माँ का दूध भी पी लिया, तब तो इस माँ का बेटा हुआ ना। माँ से छेड़खानी कहाँ छोड़ेंगे ये संस्कारी लोग। आज ये माँ तुझे छठी का दूध याद दिलाएगी बेटा। मंचलों के होश उड़ गए। जल्दी ही मंचलों ने माता कहकर औरत का पैर पकड़ लिया। बड़ी मिन्नतों के बाद माफी मिली। तब जाकर मंचले गाड़ी उठाकर ये भागे वो भागे। तोरण का चश्मा उन्हें दूर तक जाता देखता रहा। भीड़ छट गई, मेले में राहत की सांस ली। गांव की युवक युवतियां फिर परिहास करने लगी। पिछली मंडी तू कहां थी, क्यों तूने याद किया था। हाँ, तेरी संगवारी मिली थी, कहीं उसे शादी वादी तो नहीं कर लिया। नहीं, वो तो सगोत्री निकली। तेरा गोत्र क्या है। पंडरी मैना। तेरा। मैं तो लाटा बुटा हूं। जोड़ी जमेगी। चुप कर, शर्म नहीं आती, जोड़ी जमाएगा। हास परिहास पान की दुकान तक आ गई थी। पान खूब बिकने लगा। लाल लाल पान पेका पेकी जुआन, लाल लाल पान पेका पेकी जुआन। सुबह से शाम हुई। पान लगाते लगाते कमलू को खाने पीने की भी याद न रही। पश्चिम का सूरज मेले की रंगीनियों में लाल हो रहा था। गैस बत्ती जलाए जा रहे थे, चैत पर्व गाए जा रहे थे। चैत पर्व में जैसे कमलू ही उतर आया था। गीत और प्रश्नोत्तरी के बीच में वो शुक्ली से पूछ रहा था, पान खाएगी। हाँ हाँ। ब्याह करेगी। हाँ हाँ। आया बुआ से पूछा। हाँ हाँ। क्या तुम भोज भात दोगे। पता नहीं। रुपया पैसा। पता नहीं। कमलू की जागती आंखों का सपना टूट गया। वह बुदबुदा रहा था, हे ईश्वर, इस मेले में इतनी कमाई हो कि मैं ब्याह का भोज भात दे सकूं। कमलू और जल्दी जल्दी पान लगाने लगा, पर सुपारी कत्था ये दोनों तो खत्म हो गए। अब कमलू के पास कुछ बटरा चना और गुड़ाकू रखा था, वही पान में लगाकर वो बेचने लगा। पान खाते खिलाते लड़के लड़कियों में प्यार के साथ साथ गुड़ाखू का नशा भी चढ़ने लगा। रात सुरमई हो गई। अकेला चांद तारों के साथ मेले को दूर तक तकता रहा। न जाने कमलू को भी कब झपकी लग गई। सुबह जब आंख खुली तो मेला उजड़ रहा था, सामान समेटे जा रहे थे। अगले बरस फिर मिलेंगे। चैत पर्व की लड़की लड़कियां बिखर गईं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, रात गई बात गई, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगले मेला मंडी में, पल दो पल का साथ, हाट बाट ठाट। भीड़ को लिए पगडंडियां सरपट भाग रही थी। धन कुबेर सेठिया माल समेटे जा चुके थे। कमलू ने भी सामान बटोरा, पैसे गिने, 2-4-5 हजार, अच्छी कमाई हुई। जीप गाड़ी में यात्री सवार हो गए थे। कुकड़ा कुकड़ी ड्राइवर की सीट पर थे। कमलू आधा बैठा आधा खड़ा एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। सुबह सवेरे महुआ बिनती लड़कियां उसे देखकर सोच रही थी, जाने किधर जाते हैं ये लोग। कमलू निश्चय कर चुका था, नहीं नहीं, अपना घर किसी हालत में नहीं बेचूंगा, अपनी पहचान बेचकर कहां जाएगा वो। कमलू की सोच के बीच सेठिया के फार्म हाउस का सपना टूट गया था। 2-4 ट्रिप यात्री और माल ढोकर जब कमलू घर पहुंचा तब सुकली के घर का दरवाजा उड़का हुआ था। कमलू ने साहस कर दरवाजा ठेला, भीतर घुसा, देखा मनु मधोश पड़ा है और सुकली की माँ चूल्हे के धुएं में तुरु माछ सुखा रही है। कमलू को देखकर भावातिरेक में सुकली खड़ी हो गई। माँ ने उलाहना दिया, मुझे मेला घुमाने क्यों नहीं ले गए। कमलू सफाई देता रहा कि जगह कम थी या कि आप देर से तैयार हुई, पर उसका पूरा ध्यान मेले से लाई चूड़िया, फुंदरी, मोतीमाला और सुकली की ओर ही था। माँ ने कुछ ऐतराज किया, काय आए, पर कमलू ने भी साफ साफ कह दिया कि आया मैं तो भोज देने को तैयार हूँ, ब्याह करा दो हमारी। सुकली की आंखें चमक उठी, गीली लकड़ियां सुलग गईं। माँ ने मदहोश मनु की ओर देखा, फिर कमलू को राजी का संकेत कर दिया। बाहर खड़ा पटेल का लड़का अस्तु गांव भर में ढिंढोरा पीटने भाग खड़ा हुआ।
4: मेले का तोरण, अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। लेखिका थी उर्मिला आचार्य। हम इस कहानी के लिए आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे श्रोताओं। और अगर आप भी कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो नमस्कार जगदलपुर में आपका स्वागत है। श्रोताओं, वक्त है मधुरिमा का, पर पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। श्रोताओं, हर मंगलवार को फोन इन किसानवाणी की रिकॉर्डिंग की जाती है और आज क्योंकि मंगलवार है तो आज भी दोपहर 3:30 से 4 बजे तक फोन इन किसानवाणी की रिकॉर्डिंग की जाएगी। हमारा नंबर है 07782-222-666। अगर आप भी अपने कुछ समस्याओं के उत्तर जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन नंबरों पर 3:30 से 4 बजे तक अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस सूचना के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
7: 8700001-4242।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
10: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: पेश है मधुरिमा। प्रकृति में हर मौसम का अपना अंदाज होता है। सभी ओर हर समय कुछ न कुछ फूल खिले होते हैं और अभी सब ओर गुलमोहर के फूल खिले हैं। शायराना अंदाज में कहें तो खूबसूरती भी गुलमोहर से कुछ कम नहीं।

कवि की कल्पना कविताएं बनाती है, कवि की कल्पना कविताएं बनाती है, और अगर वो कवि दीवाने अंदाज में हो तो नज़ारे भी मस्त हो जाते हैं, क्योंकि तब खत भी फूल में बदलते हैं।

फूलों के रंग से दिल की कलम से उतरे हैं कुछ ख्याल, दिन हो या रात हो, हर पल हर आरजू बन के सपना बस तेरा ही ख्याल।

प्यार भरी इस दुनिया में नज़ारे ना हो तो सब कुछ अधूरा सा है। चांद, तारे, सूरज और यहाँ तो प्यार का जहाँ भी आसमां से छोटा हो जाता है।

रास्ते रोकते हैं जिनका दामन, रास्ते रोकते हैं जिनका दामन, फिजाएं महकती हैं उसकी खुशबू से, सज उठती हैं राहें, सज उठती हैं राहें फूलों से, खिल उठती हैं वादियां उसके आने से।

हर हवा हर फिजा यूं ही बहकती रहे, हर खुशी आपकी हो, हर खुशी आपकी हो, क्योंकि ये प्यार की दुनिया आपकी ही रहे।

देवता, कन्यादान, प्रेम पुजारी, ज्वेल थीफ, अभिलाषा और पड़ोसन, इन फिल्मों के गीत आपने सुने आज इस मधुरिमा में। मधुरिमा के इन गीतों के साथ नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी अपने रेडियो सखी लक्ष्मी कुड़िकल को दें इजाजत। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

नमस्कार जगदलपुर, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम मीडिया वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन

0: आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीक की प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों

0: जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

योगदान। वार्ताकार हैं श्री विजय मिश्र, कहानी संगवारी के शर्त कहानीकार हैं श्री मानसिंह ठाकुर और कविता पाठ श्री तोषण कुमार चुरेंद्र से। तो लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक मा आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कोती ले। श्रोता साथी हो, आज के ए अंक मा आप मन ला सुनवाथन श्री विजय मिश्रा अमित के वार्ता छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। संगवारी के शर्त ये कहानी आप मन सुनिया श्री मानसिंह मौलिक ले और कविता सुनाही श्री तोषण कुमार चुरेंद्र। कार्यक्रम में सबले पहली आप मन ला सुनवाथन एक वार्ता जेकर विषय है छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। वार्ताकार हावे श्री विजय मिश्र अमित।
1: दुनिया में दो किस्म के मनखे होते हैं। एक तो वो जिन मन हर दूसर के बनाए रद्दा में रेंगते हैं, दूसर वो मनखे होते हैं जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते हैं। जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते हैं तेन मन हर अपन काम के दम मा खास बन जाते हैं, महीन ले महान बन जाते हैं। ऐसने है गुण के धनी मनखे मा छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी के नाम हर रचे बसे हवाए। उखर जन्म जाज्वल्य देव नगरी जांजगीर के रानी पारा दुबे पाड़ा मा 1 मई 1928 के हो रहीस। ददा पंडित श्याम लाल शर्मा औ महतारी सेवती के संस्कार में पले बढ़े पालेश्वर जी हर नानपन ले मेहनत मंजूरी के मरम ला समझ गे रहीन हैं। इही पाए के उन कहें कि दुनिया भर में 1 मई ला मजदूर दिवस के रूप में जाने जाते। मोरो जन्म हर 1 मई के हो है, तब महू हर कलम के मजदूर आऊं। उखर असल कर्म भूमि बिलासपुर हर रहीस। बाली उमर ले कागज मा कलम के नांगर चलावत चलावत आरुग आखर के बीजा बोवत बोवत छत्तीसगढ़ी भाखा ला पोठ रोठ बनाए बर जियत मरत ले उन बूता करिन। छत्तीसगढ़ी भाखा मा मानक लेखन और छत्तीसगढ़िया मान ल बढ़ाए बर उन संदा पदोली देवाए। अपन हक बर लड़े ल परही सुत निंदा मन जागा। ये बात ल लिख के पालेश्वर जी हर छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान ल जगाए के जबड़ बूता करिन। हिंदी भाषा के गुणी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हावें कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा सम्मान के मिटै नहीं को सूल। ये लाइन हर पालेश्वर जी के रुआ रुआ में समाये रही से। ते पाए के छत्तीसगढ़ी भाखा लोक साहित्य और संस्कृति ला जन मन में बगरावत छत्तीसगढ़ राज बने के पाछू पालेश्वर जी हर सबले पहली छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्द कोश छत्तीसगढ़ सरकार ला दे रहीस, ताकि सरकारी काम काज हर तको छत्तीसगढ़ी भाखा मा हो सकाए। पालेश्वर जी हर अंग्रेजी हिंदी संस्कृत सहित दीगर भाखा के जबड़ जानकार होए के बावजूद छत्तीसगढ़ी भाखा के महल खड़े करे के जोन पोखा न्यू गढ़ी से तेनहर संदेशा देवा थे। कुछ काम करे बर मौसम नहीं मन होना चाही, साधन जम्मो जुट जाही बस मनखे के भीतर संकल्प के धन होना चाही। बछर 60 के पाछू हिंदी छत्तीसगढ़िया कलमकार मन बर सूरज कस उत पालेश्वर जी के कलम हर उजास देहे के बूता करिस। उखर कलम के किरण हर चारों मुड़ा बगर गे और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम मा तको संघर गे। प्रबंध पाटल सुसक झन कुर्री सुरताले, तिरिया जन्म झन देई गुड़ी के गोठ सुरुज साखी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास परंपरा तीज तिहार कहावत खेती किसानी असन उखर कतकोन किताब छपे के पाछू छत्तीसगढ़ी भाखा के मान हर गजबे बाढ़ी से। आकाशवाणी मा छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन पठन ल बढ़र देवैया पहली साहित्यकार डॉक्टर शर्मा रहीन है। अपन पहली कहानी नाव के नेह माँ के पठन करिन। नामी अखबार मा 2 बच्छर ले ज्यादा छत्तीसगढ़ी परिदर्शन गुड़ी के गोट लिखत छपत छत्तीसगढ़ी भाखाला पत्रकारिता के दुनिया मा अंगत कस पांव धराए के बूता पालेश्वर जी करिन। अपन महतारी भाखाला लेके पालेश्वर जी के बड़ सुघर विचार रही से। ओ कहें छत्तीसगढ़ी हर दाई के दूध के नाम आए, बड़े दाई के चोन्हा चुम्मा आए, बाबा के माया, सुवारी के सिंदूर, बहिनी के राखी और गुइया के भोजली आए। छत्तीसगढ़ शासन के पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, भारत सरकार के वयोश्रेष्ठ सम्मान, बिहार सरकार के विद्याधर कवि सम्मान, बक्सी शोध पीठ के साधना सम्मान, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के बागेश्वरी पुरस्कार असन कतकोन मान और सम्मान उनल मिले रही से। उखल लिखे कहानी, कविता, निबंध और कतकोन दूसर रचना मनहर रहीम, कबीर, तुलसी, मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे रचना कस आजो कहरत हावय। फोकट के चंदन, घीस भई लल्लू, एकर बहुत खिलाफ रहीन है पालेश्वर जी। जब कोनो कवि लेखक के नवा किताब के विमोचन में जाए पगरई होके या माई पहुना होके तो खुदे किताब ल बिसावें। उखर कहना रही से कि किताब ल फोकट में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि किताब और रचनाकार के मान ल राखत किताब ल बिसाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी मा गीत, गजल, कविता माने पद्य मा तो अड़बड़ लिखे के कारज हुआ थे, फिर गद्य मा कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध के लिखई हर कम हुआ थे। छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत ला ये दशा ले उबारे बर छत्तीसगढ़ी गद्य कोठी ल भरे बर पालेश्वर कलम हर कमाल धमाल करी सावे। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी के लिखे हरेक रचना हर गोरस में पागे मखना का स्वाद थे। तभे तो एक घाव किताब हर हाथ में आते तो आखरी पन्ना के सिरावत ले पढ़ुया हर ओला छोड़ा नहीं। किताब ल छोड़ भी देते तो किताब में लिखाए बात हर हृदय में गूंजत रही थे। नानपन ले जानत रहे कि छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, फिर धान के कटोरा काबर कहे जाते, धान के बुआई मिंजाई कुटाई कारज हर कैसे होते, कौन कौन किस्म के औजार खेती किसानी के कारज में होते और ओखर से जुड़े हाना, जनौला, कीरा मकौरा के ज्ञान पालेश्वर जी के किताब छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन की शब्दावली में मिलते। उखर ये ग्रंथ में 11 अध्याय हावय, 9000 छत्तीसगढ़ी आखरे में भराए हावय। छत्तीसगढ़िया किसान के जिनगानी ऊपर 1972 में सबले पहली पीएचडी पालेश्वर जी करीन है। ये अर्थ में कहे जा सकत है कि पालेश्वर जी के कलम हर छत्तीसगढ़ के इतिहास और किसानी जनजीवन ल जनवाए खातिर बड़का बूता करी सावय। जेन हर बताते कि जेकर हथेली में लकीर नहीं छाला रही से ओखरे नाव पालेश्वर रही से। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक क्रांति के जनक दाऊ रामचंद जी देशमुख के संगे संग मोर पिताजी नारायण स्वामी मिश्रा हर खेती किसानी के नवा नवा बात ल बतावाए। ओखरे मुंह ले सुने रहे हो खेती अपन से थी, गाय न गरु सुज्जा हरु, ऐसन गोट बात के बेरा मा पालेश्वर जी के शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन के चर्चा जम के चलाए। छत्तीसगढ़ के 52,000 वर्ग मिलमा बसुईया किसान के नांगर और जांगर के ऊपर जी परान ले लिखे के जैन बुता पालेश्वर जी करीन है तेला सुने, गुने और पढ़े के पाछू मन में यही बात हर आते कि जैन हर बरखा के बरसे पानी में भींजते तेन हर खाली अंगरखा ला बदलते, फिर जैन हर पछीना में भींजते तेन हर पालेश्वर बन के नवा इतिहास गढ़ते। छत्तीसगढ़िया गुनी जन मन हा पालेश्वर जी के ज्ञान ल देखत देखत ओला जियत जागत आखर कोठी पोथी पुराण इंसाइक्लोपीडिया कही थे। एक घाव कवि सम्मेलन में शामिल होए बर रामेश्वर वैष्णव जी और मीर अली मीर जी के संग जात रहे, तभे रद्दा मा खेत में बड़ अकन कोंकड़ा का चिरई मन दिखिन। ओ चिरई मन के ऊपर चर्चा करत ओमन ह पालेश्वर जी के किताब सुसक झन कुर्री सुरताले के चर्चा छेड़िन। तब मेहर जाने हो दूसर राज दूसर देश ले अवैया चिरई मनला छत्तीसगढ़ी मा कुर्री कहे जाते। जिहा जन्मे जिहा के खाए पिए उहें के गुन गाबे बजाबे इही मा जिंदगी के सार हे, और नहीं तो 84 लाख जोनी मा सबले बढ़िया जन्म लेहे के हवय तेन हा बेकार हे। ऐसन संदेशा देवैया सियान छत्तीसगढ़ भुइया के लाल हर 2 जनवरी 2016 के दिन सदा दिन भर विदा ले लेह रही से। डॉक्टर पालेश्वर हर छत्तीसगढ़ महतारी के ऐसन मयारुक दुलरवा बेटा आए जिन हर छत्तीसगढ़ी साहित्य जगत खातिर नवा रद्दा गढ़े के गुर अवैया पीढ़ी ल सिखा के सरक सिधारिन हैं। आखिर मा कलम के ऐसन पुजेरी ल विजय जोहार करत अपन कलम ल विराम देवत लिखत हों, नंगा लेहू कलम ल कलमकार ले तो ओहर लिख दी ही कविता तलवार ले।
0: अभी आप मन श्री विजय मिश्रा अमित ले वार्ता सुने, विषय रहिस छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। कार्यक्रम मा आगू बढ़त हन और आप मन ला श्री मानसीय मौलिक ले कहानी सुनवात हन। शीर्षक हावे संगवारी के शर्त।
2: कलयुग मा पापी मन के संख्या अड़बड़ हावे कथे, ये गोट 16 आना सच नो है। अगर ऐसन होतीस ता विमल के गांधी फोकट भोजन भंडार कैसे चलतीस। बता देवन की धर्मी मन के संख्या घलो कम नहीं है। ये दुनिया मा कहां ले चाउर दार सब्जी नून तेल आथे कोई नहीं जाने। एकर से समझ आथे धर्मी के दान गोहार पार के थोरे आथे। कले चुप ढंग ले मनखे दान करके पुण्य कमा लेते। मोबाइल मा पैसा देवैया मनखे कमी घलो नहीं है। तस सैकड़ों झन मुफत मा रोज खावत पियत विमल आओ ओकर संस्था ला गाड़ा गाड़ा आशीष देवैया मन के कमी नहीं है। ये काम ला विमल 5 झन ले शुरू करे रहिस। ओकर संख्या दिनों दिन बढ़त जात है। ओकर दूसर काम गरीब के सहायता करना है। वाह रे फूटहा किस्मत, ओकर सुवारी हा ये सब काम ले नफरत करते। मोर बर ओकर कना समय नहीं हावय, दूसर बर जीवत हावस कही के मैके मा रहत हावय। घर के दाई बाबू अपन खुद कतरो बेर ओकर खुशामद करके मान मनोवल घर लहुटे खातिर करिस। फेर उमा हा अपन मैके छोड़ ससुरार लहुटबे कहाँ करिस। उमा के कहना रहा है कि फालतू काम छोड़ आओ मजा मा जिंदगी मोर संग बिता। हमर घर में कोनो बात के कमी हे ता मोला बता, मैं अपन दाई बाबू घर ले मंगवा दू। मगर विमल ओकर बात माने तब ना, मन मोटाव के कारण अतकी। फेर दोनों के बीच मया मान सम्मान के कभू डांड खिंचाए नहीं दिखाए। जब विमल ससुरार आते उमा ओकर बड़ सम्मान करते। अपन मैके छोड़े के बात मा अड़ के लंद फन काम झन कर कही थे। विमल के भरे पूरे परिवार मा 10-12 मन के हावय। ऊंचे रानू हा रसोई बनाए के काम करे। ओकर चाल ढाल पहिने ओढ़े के ढंग देख विमल के दाई सुरजा पढ़े लिखे ठाड़ मोटियारी। कोनो बड़े घर के बेटी के लक्षण चिन्ह टोंक थे। बड़ सुघर रांदगढ़ के मड़ा देथस, मोला तो तय काम वाले बाई कस लागस नहीं हो। माता विमल और मैं एक के संग पढ़े हन। उमा भौजी मैके माँ बैठे हे, मैं जाना था। एक दिन गोठ बात माँ शर्त लगाए हन, मोला अगर अधिकारी बने बर मदद करबे तो भौजी ला मना के तोर घर लान दू। विमल कथे और नहीं लान बे तो का करबे, ऐसन माँ तोला मोर संग बिहाव करे बर परही। मैं शर्त मान के काम करथो। वाह रे चतरी तोर चित और पट दोनों में जीत है। कहीं तोर सपना ये घर के बहू बने के तो नहीं। जान सुन के मोर बहू ला मना के लान बेच नहीं तबो तोर जीत है। आखिर तोर कना ऐसन का जादू है ते माँ बहू उमा तोर बात मानी। माता एक फोन करहूं भौजी दौड़त आही कब्भू ये घर ले नहीं टरो कही। अच्छा का बोलबे महूला तो बता। माता ऐसन मा मोर घाटा हो जही जब समय आही खुदे तोला मालूम हो जही। रानू हमर घर भर के मन बहुला मना डरेन नहीं मानिस तोर दरी कैसे मानही। माता मैं हार हूं ता बहु बन हूं जीत हूं ता ऑफिसर मोला अपन गरीबी से निकलना है बाबूला सुख और खुद के घर सरकारी बंगला देना है। ऑफिसर बन के महिला मन के मान बढ़ाना देश सेवा करत करत अपन जिंदगी सुधारना हावय। मोला तुम्हार घर के बहू बने के एको कनिक शौक नहीं है। रानू के साफ मन से शुद्ध विचार देश सेवा के भावना अधिकारी बने के चाह मां गरीबीन बर सुरजल दया आगे। एकर मृतालीन स्वभाव मीठ भाखा ईमानदारी बिना कपट खुददारी बने लागिस। सुरजा सोचते ये टूरी हा ऐसन का बात कही तेला सुन के वो हा अपन पति का नाम आ जही। यही बात समझ से परे लागत रहा है। माता बर्तन मांझ के लईका मल्ला ट्यूशन पढ़ा के ये दुनिया के बैरी मन के गलत आचरण ले अपन जान बचाए बर तुम्हार शरण आए हूँ। मोला पढ़े बर नानू कुरिया दे दूँ तुम्हार उपकार जिंदगी भर नहीं भूलाऊं। रानू के आंखी बुटबुट आगे अब तब आंसू चुहैया रहा है। रात मा मैं अपन घर मा पढ़ूं अपन बाबू के सेवा करूं कतरो झन मोर बर खोटा नियत करथे एक दिन ओ मल्ला जवाब देना है। तोर बाबू बर जेवन कैसे कब करबे। बाबू बर रोज गांधी मुफत भोजन भंडार के भात साग ले जाथ हूँ। आधा घंटा काम करके मोला अड़बड़ शांति और पुण्य मिलते। ठीक है रानू तोर सपना पूरे करे बर मोरो सहयोग रही। भंडार के आखरी कुरिया साफ सफाई कर उन्हें पढ़बे। विमल और उमा आपस मा गोड़ बात होवत रही थे जे मा किसानी घर परिवार के हालचाल लईका मन के पढ़ाई खान पान समय मा करे के मया भरे सलाह शामिल रही थे। एक दिन उमा फोन मा गरियात रहा ए जी तोला शरम नहीं लागे एक झन टूरी संग तुम्हार लफड़ा दफड़ा के बात सुने भर मिलत है। ओ मोर कॉलेज के संगवारी आए मोर गांधी मुफत भोजन भंडार मा काम करन लागथे आना जाना लगे रथे कोई जरूरत नहीं है ओकर संग गोठी आए के नहीं ता एक दिन अंगरी धरत धरत चैघो हाथ ल धर ली संभल के रहिबे। अब का करौ तय मोला छोड़ दे हस टाइम पास करे बर गोठिया लेत हूँ तेहा टाइम पास कथस मोर सास हा सबो जीवन बनाए बर सौंप दे है घर भर के मन मोहागे हो मोर मइंता जे दिन भड़क जही वो दिन घर जाके ओकर चुंदी हपाट के नंगत कुचर दूँ। विमल चिढ़ाए बर कथे ऐसन गलती झन करबे बड़े जान अधिकारी बनैया है तोला जेल मा डार दी जान डरे ओला अधिकारी बनाए के काम तोरे होही दानी आदमी आस तय हाँ फेर मैं ओकर चटनी बना दूँ। अगर मोर घर द्वार मा आगे लगाही मोर जोड़ी ल टोराही ता उमा के भाखा आगी और रिस उगलत रहा है। विमल एति फोन ल काट दिस ओती उमा अलकरहा बगिया गे। चार बच्चर के कठोर मेहनत लिखाई पढ़ाई पेपर देके रानू जिला पंचायत सीईओ बनिस। उमा अपन मोबाइल व्हाट्सएप मा राजेश और अपन प्री वेडिंग रंगीन फोटो उमा ला भेजिस। फोटो देख के उमा पसीना मा नहा डरीस ओकर जी मा हाहाकार मच गे। पहली फोटो मा विमल के गोद मा मुड़ी रखे निहारत रहा है। नीचे मा लिखाए रहा तोर जोड़ी संग मोर बिहाव होवैया हे, तोर मा ताकत हे ता अपन घर टूटे से बचा के दिखा। दूसर फोटो मा रानू के गोद मा मुड़ी रखे राजेश निहारत रहा। नीचे मा लिखे अपन पति के अच्छा काम ले आँखी मुंदे तेकर सजा भोग। तीसर फोटो मा एक दूसर के पीठ मा पीठ चटकाए बैठे रहा है। नीचे लिखे मैं तोर सौद बन हूँ तय मोर विमल ला तरसाए हस। चौथा फोटो मा रानू ला पाछू डहा ले विमल पोटारे रहा है। नीचे लिखे काली हमार भावर पर ही देखे बर आ जाबे। अतका सब उमा पढ़ के तुरंत सूट के धरीस अपन ससुराल पहुँच सास ऊपर बरस थे। कहा है वो चुड़ैल हा ओला मार पीट के भगाना है। सुरजा अपन घर संभाल बेटी, तोर संग हमन हावन, ओला घर मा निंगन नहीं देन। सास सुरजा बड़ खुश होते, रानू हा बात सांची करके दिखा दिस। एति उमा घर मा बिहाव मड़वा सजावट कुछ नहीं देख पूछते, मुला राजेश कना जाना है। माता बिहाव कहाँ मड़ा है तेला बता। ओकर पाँव पकड़ माफी मांग के अपन घर बचा हूँ। उत्की बेरा सरकारी गाड़ी ले अपन दू जन सहयोगी कर्मचारी संग रानू दंग दंग ले उमा के आगू ठाड़ होते। उमा रानू ला चीन के ओहा अपन जोड़ी के सही काम ला गलत ठहराए के सेती पछता थे। रानू के आगू हाथ जोड़ विनती करते, बहिनी तेहा अधिकारी बन के दिखा डरे, मोला मोर जोड़ी लहुटा दे, मैं तोर बिनती करत हाँ। रानू उमा ला छाती में पोटार लीस, भौजी ना मैं तोर दुश्मन हूँ, ना विमल संग मोर कोनो संबंध है, वो मोर मितान आए, मैं शर्त जीत गयो। रानू थोकिन रुक के कथे, जा तोर जोड़ी हा गांधी मुफत भोजन भंडार मा तोर अगोरा करत है। आज दोनों जन मिल के लोगन ला जेवन कराए बर परन घलो करे है। ड्राइवर हा रानू के इशारा पाके उमा ला गाड़ी मा बैठे के प्रार्थना करते, ता वोहा गाड़ी में बैठते। जा भौजी मोला माता संग कुछ बात करना है।
0: संगवारी के शर्त, ये कहानी आप मन सुनत रहो श्री मानसिंह मौलिक ले। और पत्रिका के आखिर में कविता सुनात हैं श्री तोषण कुमार चुरेंद्र।

कुखरा के बाँक सुने सूरज पाँव पसारे, सूरज पाँव पसारे। बड़े बिहिना चिरई चिरगुन कोयली कुह की मारे, कोयली कुह की मारे। कुखरा के बाँक सुने सूरज पाँव पसारे, सूरज पाँव पसारे। बड़े

तुरकुराम लहरावै अर पपैरी धारे अर पपैरी धारे। महानंदी सोंढुरी के झुमरथे कसारे झुमरथे कछारे। तुरकुर

रुख राई जंगल झाड़ी तोरे च सिंगार हे, तोरे च सिंगार हे। देवधामी तीरथ बरत हीरा के भंडार हे, हीरा के भंडार हे। रुख राई जंगल झाड़ी तोरे च सिंगार हे, तोरे च सिंगार हे। देवधामी तीरथ बरत हीरा के भंडार हे, हीरा के भंडार हे।

0: अब मैं हर दूसरा कविता सुनाए बर जात हूँ, जेकर शीर्षक है पेड़ और आला छंदमा रचना हवे।
1: पेड़ लगावा जुर्मिल संगी अमृत छैया है बगराय, पानी बादर झुर झुरे लावे धरती कोरा है हरियाय, पानी बादर झुर झुरे लावे। पेड़ बिना है सुनना जगिए संत सुजानिक करो विचार, कैसे पानी हवा बचाबू होवत हवे हाहाकार, कैसे पानी हवा बचाबू। पेड़ लगाथन कहिके भैया दे मारे फोटो खिंचवाए, बिन पानी सब सुनना दीदी लगे पेड़ ला कौन बचाए, बिन पानी सब सुनना दीदी। पेड़ बचावे जिंदगी सबके चेत गरव गामित मितान, हरियर धरती के को रामा आही तभी नवा बिहान, हरियर धरती के को रामा। धरती हरियर दुनिया हरियर मानो संगी मोरो बात, शुद्ध हवा पानी मिली तब हो ही जब झुर

0: झुरिला वई धरती के कोरा हरियाए पानी बादर झुर झुर लावै धरती के कोरा हरियाए पानी बादर झुर झुर लावै।
1: अभी आप मन श्री तोषण कुमार चुरेन्द्र ले कविता पाठ सुनत रहो। एकरे संग आज के छत्तीसगढ़ी समन्वित कार्यक्रम मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: मोर भुइयां। अभी आप छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्य कार्यक्रम सुन रहे थे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी
1: मीडिया वेव 396.8 मीटर अर्थात

756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
3: और जब बादल भारी

0: हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओ, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी,
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी,
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी,
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमृषि से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज,

0: अरे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, मैं तो लाल हूं। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
2: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जो जो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जो जो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
3: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाता। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाता गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से।

0: ਮੇਰੀ
1: ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਨਾ, ਲਾਓ ਲਾਓ, ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ।
0: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
1: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
0: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
2: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
0: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
1: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गाँव रैणी और आसपास के गाँवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
8: नहीं करने देंगे,
9: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
0: गौरमा, गौरमा,
5: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
0: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं?
0: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
5: हाँ,
0: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
0: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
8: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
9: हाँ, हम सब तैयार हैं।
8: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं कटने देंगे।
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
10: ये है जंगल के उपकार।
11: मिट्टी, पानी और बयान।
10: मिट्टी, पानी और बयान।
11: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो?
12: मेरा मुंह के ताक रहे हो? अजय शुरू मारो।
8: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर जाएंगे पेड़ से।
5: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
12: आगे बढ़ो।
8: अरे कहां से?
12: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए।
8: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
5: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
0: नहीं लगाने देंगे।
5: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
8: हाँ, चिपक जाएंगे।
12: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
12: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
13: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
14: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: NCERT अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। इसे आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खाकी से कुछ गीत। श्रोताओं, यूं तो भारतीय सिने जगत में एक से एक बेहतरीन फिल्में बनती हैं और इनमें देशभक्ति फिल्मों की अपनी ही बात है। देशभक्ति का जज्बा लिए, वीरों की कहानियां लिए अनेक फिल्म निर्देशकों ने एक से एक फिल्में बनाई हैं, जिसमें एक फिल्म है खाकी, जो आई वर्ष 2004 में, और ये फिल्म एक्शन थ्रिलर ड्रामा पर आधारित हिंदी भाषा की फिल्म है। तो सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से।

आप सुन रहे हैं फिल्म खाके के कुछ गीत कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। श्रोताओं, इस हिंदी फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी हैं और उन्होंने श्रीधर नागवन के साथ पटकथा का सहलेखन भी किया है। इस फिल्म की कहानी भारतीय पुलिस टीम के उस अभियान पर केंद्रित है जहां पुलिस टीम को महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से एक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी को मुंबई वापस लाना है। इस कहानी को बेहद रोमांचक तरीके से इस फिल्म में प्रदर्शित किया गया है।

श्रोताओं, फिल्म खाकी जिसके गीत अभी आप सुन रहे हैं, इस फिल्म के निर्देशन थे राजकुमार संतोषी, कहानी राजकुमार संतोषी की थी, निर्माता थे केशवराम से और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अजय कुमार, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन, तुषार कपूर, तनुजा, अतुल कुलकर्णी और अन्य कलाकार। इस फिल्म के सभी गीतों के लिए संगीत निर्देशन था राम संपत का। आइए अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत इसी फिल्म से, जिसमें अपनी आवाज दी है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने।

पुलिस विभाग पर केंद्रित फिल्म खाकी। इस फिल्म के सभी गीत लिखे समीर ने और संगीत दिया राम संपत ने, और सभी गीतों के फिल्मों के लिए आवाजें दी सुनिधि चौहान, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, ऋचा शर्मा, कैलाश खेर, सुखविंदर सिंह, कुणाल गांजावाला ने। आइए अब आपको सुनवाएं एक और प्यारा सा गीत इस फिल्म से, जिसकी आवाजें दी है अर्नब चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल ने।

एक ही फिल्म से अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। आज की फिल्म थी फिल्म खाकी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार होंगे, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। श्री साय ने कहा कि कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कल बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों में बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान कल जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कल जगदलपुर में शहीदों के परिजनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और नक्सल पीड़ितों के साथ मुलाकात और चर्चा की। श्री शाह ने खुशी जताते हुए कहा कि 3 पीढ़ियों तक जिस नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया जा सका, उसे हमारे वीर जवानों ने मात्र 3 वर्षों में समाप्त कर दिखाया। उन्होंने कहा कि माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, बल्कि यहां विकास नहीं होने का कारण ही हथियारबंद नक्सलवाद था। अब हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि देश के सभी आदिवासी संभागों में बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संवाद बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अपने बस्तर दौरे के दौरान कल शाम जगदलपुर स्थित बादल अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने बस्तर के संघ कार्यक्रम में बस्तर की आदिवासी लोक कला और संस्कृति का आनंद लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। बिलासपुर जिले में पुलिस और एसीसीयू की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

समय चक्र के घेरे में सारा ब्रह्मांड है, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान सभी समय से बंधे हैं। समय का सम्मान अनुशासन सिखाता है और अनुशासन से ही होती है देश और समाज की प्रगति।

0: इसीलिए वक्त की कद्र करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब नागरिक शासकीय सेवक हो। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही के लिए ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की है। डिजिटल तकनीक पर आधारित ई ऑफिस प्रणाली सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सरकार की ये पहल छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया सवेरा लेकर आई है, यानी अब सब कुछ हो गया है ऑनलाइन।
1: मैं उत्तम प्रसाद रजक, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस रायपुर से बोल रहा हूँ सर। ये ई ऑफिस शासन की डिजिटल कार्य प्रणाली है, जिसके माध्यम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों एवं पत्राचार का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। रायपुर जिले सहित लगभग समस्त छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। इसके संचालन हो जाने से जो उच्च अधिकारी हैं फाइलों को ट्रैकिंग करने में उनको मदद मिलती है और ई ऑफिस में जो फाइल आगे बढ़ती है उसका अनुमोदन जो है तत्काल द्रुत गति से होता है और इसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी सुविधा मिल जाती है। इससे शुरू हो जाने के पश्चात जो है लगभग जो सुविधाएं मिल रही हैं वह है फाइलों का ऑनलाइन संचालन एवं ट्रैकिंग, समय की बचत और कार्यों का शीघ्र निपटान, नागरिक सेवाओं का डिजिटल माध्यम से लाभ, जैसे कि अभी सेवा सेतु पोर्टल लागू किया गया है जिसमें नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं जो है जो पूर्व मिल रही थी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उससे ज्यादा सुविधाओं मिल रहा है। मैंने एक प्रकार से एक मंच एक पोर्टल के माध्यम से लोगों को, नागरिकों को जो है काफी डिजिटल माध्यम से लाभ मिल रहा है। ई ऑफिस से विभागों में जो फाइलों का आदान प्रदान है वो तेज गति से होता है, ऑनलाइन के द्वारा अनुमोदन होता है और डिजिटल सुविधा, डिजिटल हस्ताक्षर की भी सुविधाएं हैं। इससे अधिकारी जो है अपने आधार कार्ड या अपने मोबाइल नंबर की सहायता से ओटीपी प्राप्त करते हैं और अनुमोदन करते हैं। ई प्रणाली से जो रिकॉर्ड है वो भी सुरक्षित रहती है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। इसका एक ई ऑफिस में एक और महत्वपूर्ण है वो है पेपरलेस, जो जिसको हम इको फ्रेंडली कह सकते हैं। कागज का बचत तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक प्रकार से पर्यावरण के दृष्टि से भी ज्यादा सुरक्षित, पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है जो है। इससे फाइलों की खोने की जो संभावना है कम हो जाती है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत रूप से माने एक माने टेबल से दूसरे टेबल पर पहुंचाया नहीं जाता है, बल्कि केवल जो है यह एक कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारा फाइल्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से डिजिटल पत्राचार को इससे बढ़ावा मिल रहा है और जैसे कि हम नए युग में रह रहे हैं तो तकनीकों का समावेश से ई ऑफिस जो है निश्चित रूप से ही सभी माने विभागों को अपने जवाबदेही तय करने में ज़्यादा सुविधा मिल रहा है और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग सभी विभागों में ई ऑफिस जो है लागू कर दिया गया है, जिसमें मुख्यतः जो है सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग। इस प्रकार से ई ऑफिस जो है हमारी माने जो ऑफिस कार्य में एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर रहा है और लगभग लगभग सभी कर्मचारी जो है इससे जागरूक होकर के अपने कार्य जो है जवाबदेही ज्यादा अच्छा से कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अधिकारी पहुंचता है तो सर्वप्रथम वो अपने कंप्यूटर मॉनिटर को ओपन करता है और ओपन करने के पश्चात देखता है कि क्या क्या पेंडिंग है, किसको निपटाना है, किसको आगे फाइल को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से यह ज्यादा पारदर्शी है, ज्यादा जवाबदेही है और यह ऑफिस जो है एक शासन की महत्वपूर्ण योजना है और यह शासन के योजनाओं को और क्रियान्वयन को पारदर्शी रूप से और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के प्रति जवाबदेही तय करती है।

0: आईडिया ऑफिस अनुशासन और सुशासन का आदर्श रूप है। इस ऑनलाइन सुविधा ने पेपरलेस वर्क को गति प्रदान की है, साथ ही एक कार्यालय को दूसरे कार्यालय से सरलता और शीघ्रता से जोड़ा है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच की दूरी ई ऑफिस ने कम कर दी है। यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी डिजिटल हो गए हैं, इसीलिए फाइलों के ढेरों के निराकरण में सहूलियत हो गई है। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही हो रही है और समय सीमा में ही हो रहे हैं सारे काम।
1: मैं विश्वास कुमार, डिप्टी कलेक्टर, जिला राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस के महत्व की अगर बात करें तो ई ऑफिस शासन की कार्यप्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस लागू होने से सरकारी कार्यों में गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ी है। पहले ऑफलाइन फाइलों के संचालन में काफी समय लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल सिग्नेचर और उसके त्वरित अनुमोदन से सुविधा से कार्य शीघ्रता से हो रहे हैं। इससे आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल पा रही है और साथ ही साथ कार्यालयों में जवाबदेही भी बढ़ी है। अगर हम ई ऑफिस की सुविधाओं की बात करें तो ई ऑफिस

महत्वपूर्ण है। इससे कागज की खपत कम हो रही है और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रह रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल माध्यम से कार्य होने से फाइलों के गुम हो जाने या फिर उनके विलंब की जो समस्या थी उसमें कमी आई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस का उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों में किया जा रहा है, जैसे कलेक्ट्रेट, राजस्व विभाग और शासन के अन्य महत्वपूर्ण सभी विभागों में ये कार्यालय शामिल है। राज्य सरकार इसे धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में सभी विभागों में लागू करने के लिए पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

0: ई ऑफिस प्रणाली तकनीक की दुनिया का एक नायाब शाहकार है। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान तो हो ही रहा है, शासन की कार्य प्रणाली को भी स्पष्ट आधार मिल रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य ही ये है कि समाज प्रशासन के करीब आए और सारे कामों का निराकरण जल्दी से जल्दी जमीनी स्तर पर ही हो जाए। ई ऑफिस जनता और प्रशासन दोनों के लिए ही वरदान है। पारदर्शिता का ये एक अनुपम उदाहरण है।
1: मैं नितेश चक्रधारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ में संलग्न हूँ। अभी वर्तमान में सरकार ने छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस लागू किया है। ई ऑफिस क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। ई ऑफिस एक डिजिटल कार्य प्रणाली है जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। यह जो पारंपरिक फाइल की व्यवस्था होती है उसको ऑनलाइन प्रणाली में बदलता है। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रणाली में आने से जवाबदेही सुनिश्चित होता है और सुशासन और पारदर्शिता की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका महत्व यह है कि सरकारी फाइलों का डिजिटल प्रबंधन प्रारंभ हुआ है, अधिकारियों के बीच में कार्यों का तेजी से आदान प्रदान हुआ है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है, पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत अधिक बढ़ा है, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, भ्रष्टाचार और देरी में कमी लाती है, मतलब हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ते हैं। यह एक डिजिटल गवर्नेंस का एक मजबूत स्तंभ माना जा सकता है। इससे बहुत सी सुविधाएं हमको मिल रही।

है। अब इनकी हम सुविधाएं की बात करें तो हम इसको तीन स्तर पे बांट सकते हैं कि भैया कर्मचारियों को क्या सुविधा मिल रही है, आम नागरिक को क्या हो रही है और प्रशासन को इससे क्या फायदा हो रहा है। तो पहले तो अगर हम कर्मचारी और अधिकारियों की बात करें तो फाइल ऑनलाइन भेजने और देखने की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे ये होता है कि कोई अधिकारी अगर दूर है तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपने फाइल को ट्रैक कर सकता है, किसी भी समय और स्थान से कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल में ही एक हमारे सर हैं एक विभाग के, वो विदेश में थे, तो विदेश में रहने से वो करीब 10 दिन विदेश में थे, तो 10 दिन रहने से तो फाइल तो रुक जाती, लेकिन वह जब विदेश में थे तो वह विदेश से ही आसानी से वह अपने फाइलों को ट्रैकिंग कर पाए। तो फाइल को ट्रैकिंग करना बहुत आसान होता है और कार्य में समय बहुत की बचत होती है। दूसरी, अगर हम आम नागरिकों की बात करें तो सरकारी कार्यों में इससे तेजी आई है, आवेदन और शिकायतों का बहुत शीघ्र निपटान होता है, पारदर्शी प्रशासन होता है और कार्यालयों का चक्कर कम लगाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से दृष्टि से देखें तो यह कागज और खर्च में कमी लाती है, पर्यावरण संरक्षण को बहुत बढ़ावा दे रहा है, रिकॉर्ड सुरक्षित और व्यवस्थित रहता है और दूसरा कार्यों की निगरानी भी बहुत आसान होती है। इसके महत्व, ई ऑफिस का आज महत्व देखें तो यह सबसे पहले है कि हम एक पेपरलेस कार्यालय की तरफ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पेपरलेस प्रणाली एक सरकारी और आधुनिक और सुरक्षित प्रभावी बनाता है। दूसरा, यह कागज की खपत को तो कम करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। फाइलों के खोने की समस्या से निजात मिलती है, फाइलों के खोने की जैसे कई बार दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, अगर उनका डिजिटल संधारण रहता या डिजिटल फाइल रहती तो उनके जलने से और उसके प्रभाव नहीं होता, मतलब वह चीज आसानी से हमको मिल पाता। तो ऐसे घटनाओं से बचने के लिए भी एक डिजिटल संधारण बहुत अनिवार्य है शासकीय कार्यों में। डिजिटल रिकॉर्ड को बहुत लंबे समय तक भी हम सुरक्षित कर सकते हैं हमारे डाटाबेस में और दस्तावेज खोजने में कम समय लगता है। जब बड़ी बड़ी नस्तियां फाइलें रहती है तो 4 साल 5 साल बाद जब उनकी दोबारा आवश्यकता होती है तो वह बहुत जीर्ण शीर्ण भी हो जाती है और उसको ढूंढने में बहुत समय लगता है, उसकी ट्रैकिंग प्रणाली थोड़ी सी कठिन होती है। वह ई ऑफिस प्रक्रिया में यह बहुत आसान है और इसे कार्यालय में तेज और बहुत व्यवस्थित व्यवस्था होती है। ई ऑफिस प्रणाली आज छत्तीसगढ़ में लगभग 87,222 अधिक से अधिकारी और कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके फाइलों के मूवमेंट के बारे में बात करें तो जब से लागू हुआ है तब से 5,46,903 फाइलों का मूवमेंट हुआ है, इसे हम मान सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बचत है, पेपरों की बचत हुई है, डिसीजन लेने में कितनी जल्दी इसका डिसीजन हुआ है। दूसरा, ये को लगभग आज छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में, छत्तीसगढ़ के जितने भी सभी विभाग है सभी विभागों में ई ऑफिस को लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो, सभी और न केवल जिला स्तर के भी नीचे जितने ऑफिस हैं उन सभी में ई ऑफिस प्रणाली को दुरुस्त किए लागू किया गया है। और इसको लागू किया गया है यह केवल नहीं है बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इससे लगत सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की व्यवस्था NIC जो डिजिटल नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी के इजाजे NIC और हमारी शासकीय टीम चिप्स, ये दोनों मिलके पूरी सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण हो रहा है। और इस प्रशिक्षण का फायदा ये हो रहा है कि आज सभी अधिकारी कर्मचारी अपना ई ऑफिस से कार्यों का संचालन लगभग प्रारंभ कर चुके हैं और निश्चित तौर पर यह एक सुशासन की एक नई और आधुनिक परिभाषा हम लिखने के लिए तैयार है अपनी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार।

0: छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस यानी सुशासन प्रशासन की आधारशिला है ई ऑफिस। रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य हो या फिर डेटा कलेक्शन, सब कुछ आसान हो गया है ई ऑफिस की बदौलत। आज के डिजिटल युग में लंबी कागजी प्रक्रिया की जगह तकरीबन सब कुछ हो गया है ऑनलाइन। बात आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने की हो या बच्चों के शैक्षणिक कार्यों की, ई ऑफिस सब जगह एक जिम्मेदार मददगार के रूप में उपलब्ध रहता है। ई ऑफिस को ज्ञान का भंडार कहा जा सकता है। जनगणना जैसा बड़ा काम भी आज डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ई ऑफिस सिर्फ एक सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक अच्छा जरिया है।
1: मैं दीप्ति बघेल, सहायक शिक्षिका, शिक्षा विभाग से हूँ। आज का समय डिजिटल युग का समय है। पहले जिन कार्यों को पूरा करने में कई दिन, कई चक्कर और बहुत अधिक कागजी प्रक्रिया लगती थी, वही काम आज इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल की सहायता से कुछ ही मिनटों में हो रहे हैं। यही आधुनिक व्यवस्था ई ऑफिस कहलाती है। ई ऑफिस का अर्थ केवल कंप्यूटर पर काम करना नहीं है, बल्कि इसमें लोगों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं। यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो आज स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति पोर्टल, डिजिटल क्लास, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। प्रशासनिक कार्यों में भी ई ऑफिस ने बड़ा परिवर्तन लाया है। आज फाइलें ऑनलाइन भेजी जा रही हैं, रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा रहे हैं और कार्यों की निगरानी पहले से अधिक सरल हो गई है, जिससे जानकारी जल्दी और व्यवस्थित रूप से एकत्र हो रही है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल के माध्यम से ऑनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका लाभ यह है कि कई सरकारी कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इस प्रकार ई ऑफिस केवल सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। ई ऑफिस और डिजिटल तकनीक आज के समय की आवश्यकता है। यदि हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें नई तकनीकों को सीखना और अपनाना होगा। विशेष रूप से शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को उसका सही और सुरक्षित उपयोग भी सिखाएं। इंटरनेट, ई ऑफिस और एआई ने हमारे जीवन को सरल, तेज और आधुनिक बनाया है। यह हमारे विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। आवश्यकता केवल इस बात की है, हमें इसका उपयोग मानव कल्याण और समाज की प्रगति के लिए करना चाहिए।

ई ऑफिस प्रणाली ने पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता को एक साथ प्रवाहित किया है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ एक मजबूत पहचान के साथ उभरा है। ई ऑफिस ने प्रशासनिक व्यवस्था की कई अलग अलग कड़ियों को एक सूत्र में पिरो दिया है। इससे जन सुविधाएं आसानी से सब तक पहुंच रही है, शहर, कस्बे या फिर हो गांव। ई ऑफिस की छत्र छाया में सब फल फूल रहे हैं। अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है सारी योजनाएं। यही तो है सर्वांगीण विकास की परिभाषा। भारत के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ विश्वास और प्रगति की एक नई गाथा लिख रहा है। ई ऑफिस की संवेद किरणों के साथ सबको लेकर अपने साथ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हलबी लोकगीत। कलाकार हैं डमरूधर और साथी।

दया करो लो ने हम जाऊं दे तरुण, तुम जो दया करो लो ने हम जाऊं दे तरुण, तू भी मोचो प्राणों पोती ओले।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजा करी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज के कलाकार हैं डमरूधर और साथी।
4: No, no, le cosa.

कपड़ा अंगने निरली भाई मनीला बो खाल पिंदुन करी मुंडे जटा बांधु नाते डांगो धोरु तालो छाता बड़ू रला धीरे धीरे महिमा गोसाई इला भाई मालवी हारपुरे गेला मालवी हारपुरे महिमा गोसाई जाऊ न तो पबसला तीन गोटा दारू के आनुन बाती भाई उताये दुनी थापला दुनी के थापुन ब्रह्मांड को पापो के मजला दे बोलला ब्रह्मांड को पापो के अटसा तो काजे भाई बारा बोरो तो पबसला बारा बोरो

नौकनी चके अबर तू के सांगे से या तू जा रे बाबू मौज पूरे जाऊन भाती दिखिया देते सबू अलक महिमा तू।

বলে বাবু শুনছে শুনুন বাদে মহিমা তামি বলে।

बिजूर दादाव ने जागा के दिलो पांच एक जमीन उतार काम दिलो जब महिमा गोसाई चो डेरा होली उता जब महिमा गोसाई चो डेरा होली।

0: आप सुन रहे थे लोक गीतों के कार्यक्रम गुरुदुम में डमरूधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए महत्वपूर्ण संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: चेक
4: जाना पड़ेगा।
3: अरे गेम छोड़ के?
4: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है?
3: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को।
4: कैसे?
3: RBI अधिकृत बैंक NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका गीता दत्त। गीता दत्त हिंदी सिनेमा की सबसे सुरीली और दर्द भरी आवाजों में से एक है। गीता दत्त को मेलोडी क्वीन भी कहकर पुकारा जाता है। श्रोताओं, हम में से कई लोग संगीत के उतने जानकार नहीं हैं, लेकिन संगीत प्रेमी प्रत्येक व्यक्ति होता है और गीता दत्त की आवाज़ आपको भी बहुत पसंद आती होगी। संगीत की दुनिया में अगर स्वर्ण अक्षरों में किसी का नाम लिखा जाएगा तो वह स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर भी एक महिला गायिका की आवाज़ की दीवानी थी? हम बात कर रहे हैं बंगाली और हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज़ से दिलों पर जादू कर देने वाली प्लेबैक सिंगर गीता दत्त की। जी हाँ, गीता दत्त की आवाज़ और लहजे की दीवानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी हुआ करती थी। आइए सुनते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा।

गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर पूर्वी बंगाल में हुआ था। एक जमींदार परिवार से वो ताल्लुक रखती थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। चिन चिन चू, बाबूजी धीरे चलना, आंखों ही आंखों में जैसे गानों के लिए मशहूर गीता दत्त करियर की बुलंदियों पर थी कि तभी उनकी जिंदगी में गुरुदत्त साहब की एंट्री हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे। और बाजी फिल्म के दौरान उनकी पहली मुलाकात हुई थी और वो गुरुदत्त साहब भी गीता दत्त के गायन के दीवाने हो गए।

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे कहा, गुरुदत्त और गीता दत्त की पहली मुलाकात फिल्म बाजी की सेट पर हुई। गुरुदत्त की बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म थी। गीता दत्त तब तक इंडस्ट्री की मशहूर गायिका के रूप में स्थापित हो चुकी थी और अलग अलग भाषाओं में सैकड़ों गाने गा चुकी थी। फिल्म बाजी की सेट पर गीता दत्त ने फिल्म का गाना तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे गाया और

गायिका गीता दत्त गायकी में महारत हासिल की हुई थी और वहीं गुरु दत्त फिल्म निर्माण और निर्देशन में महारत हासिल कर रहे थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर उन्होंने साथ जीने का फैसला किया। गीता दत्त और गुरुदत्त ने शादी का फैसला किया। हालांकि गीता दत्त का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने 26 मई 1953 को शादी रचाई। दोनों खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने लगे। परिवार का विस्तार हुआ। इनके 3 बच्चे हुए, तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त। लेकिन अचानक अफवाहों ने इनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया और एक खूबसूरत प्रेम कहानी में एक बदनुमा दाग बन गया।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी कलाकार हैं पार्श्व गायिका गीता दत्त। श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद गुरुदत्त साहब ने गीता दत्त पर बंदिशें लगा दी कि वे सिर्फ उनकी ही फिल्मों में गाना गाएंगी। धीरे धीरे संगीतकारों ने भी गीता दत्त से किनारा कर लिया। उधर गीता दत्त ने कैरियर छोड़ परिवार को तवज्जो देना शुरू किया और गृहस्थी में रम गई। वहीं गुरुदत्त अपनी फिल्मों और काम के में इतने व्यस्त हो गए कि गीता दत्त को समय ही नहीं दे पा रहे थे, लिहाजा दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। और इसी बीच गुरुदत्त के विवाहेतर संबंध की अफवाहों ने इसमें आग का काम किया। पारिवारिक कारणों, जिम्मेदारियों और कई विसंगतियों के चलते महान गायिका हम भारतीयों के समक्ष अपनी प्रतिभा को 100% प्रदर्शित नहीं कर पाई, अन्यथा गीता दत्त भी कई कीर्तिमान गढ़ी होती और हमारे सामने, हजारों गानों के सामने आज हमारे साथ होती।

कई फिल्मों में साथ में काम करने के दौरान वहीदा रहमान और गुरुदत्त के प्यार के चर्चे होने लगे। गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरों से गीता दत्त अक्सर परेशान रहा करती और कुछ ऐसा हुआ कि वे अपने माता पिता के घर चली गई। गुरुदत्त ने रिश्ते सुधारने की कई बार बहुत कोशिश की और फिर गीता दत्त के साथ एक फिल्म शुरू करने की कोशिश की, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों ने की फिल्मों की शूटिंग रोकनी पड़ी। इस तरह दोनों के बीच दरार आ गई और महज 42 साल की उम्र में गीता दत्त दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन उनके गाए गीत आज भी हमारे साथ जीवित हैं और यूं लगता है कि वो हमारे सामने अपना सुरीला गाना गा रही हैं और हमें आनंद की अनुभूति कराती रहती हैं।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में संगीत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए गीता दत्त को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा 3 मई 2013 और 2016 में उनके सम्मान में 2 विशेष डाक टिकट जारी किए थे। गीता दत्त ने अपने गीतों में दर्द और खुशी दोनों ही भावों को जिस जादुई अंदाज में पिरोया है और हिंदी सिनेमा में अपना जो मुकाम बनाया है वो किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं उनकी गायकी को और उन्हें। आइए सुनते हैं चलते चलते एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म कागज़ के फूल का ये गाना।

0: आप सुन रहे थे कला कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी कलाकार थी मशहूर पार्श्व गायिका गीता दत्त। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30:25 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में सुनिए बोहरिया माता पाड़। वादक कलाकार हैं भागीरथी और साथी।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में अब से कुछ देर पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और 4 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104.46 रूपये प्रति लीटर और डीजल 97.51 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में पुलिस और एसीसीयू की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रूपये आंकी गई है। जांजगीर जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में आज एक कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा अकलतरा के खटोला गांव में हुआ। बताया गया है कि बाइक में 4 युवक सवार थे जो कोटगढ़ गांव के निवासी हैं। हादसे के बाद घायलों को अकलतरा अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में बीती शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 7 से अधिक लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब सतरेंगा के कारीघाट से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आज सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये हादसा रेलवे पटरी पार करते समय हुआ है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें, प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम में बोहरिया माता पाड़। वादक कलाकार थे भागीरथी और साथी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए रूपक रेला गीत। इस रूपक के लेखक हैं डॉक्टर सतीश, वाचक स्वर है इश्तियाक मीर और करमजीत कौर का, संगीत पार्वती और साथियों का है, और इस रूपक के निर्देशक हैं बलबीर सिंह कच्छ। तो लीजिए सुनिए रूपक रेला गीत।

0: अद्भुत है ये जीवन और इनकी जीवन कला। सारा परिवार साथ सोया है और बीच में आग जली है।
1: अद्भुत है इनकी जीवन शैली। घने जंगलों, पहाड़ों और प्रकृति के बीच ये धरती के पुत्र मालूम है कौन है?
0: यही तो जानना है, और जानना है इनके जीवन के संस्कारों को और विविध रंगों को।
1: तो चलो और करीब

0: यह हैं गोंड जाति के लोग। इन लोगों में तीन तरह के माड़िया शामिल हैं, अबुज माड़िया, दंडामी माड़िया और तिलंगी माड़िया। ज्यादातर माड़िये पहाड़ों वाले जंगलों के बीहड़ों में बसना पसंद करते हैं। साधारण से झोपड़े में रहने वाले दंपत्ति घर में कभी भी एक साथ नहीं सोते। इनकी मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह देवता नाराज हो जाएंगे। अब देखो ना, सारा परिवार साथ सोता है पर बीच में आगजली होती है। दिन का वक्त घर से बाहर बनी लाड़ी या मचान में बीतता है। गोंड वधु को पाने के लिए आर्थिक रूप से कम मजबूत वर चाहे तो तय किए गए वधु मूल्य को चुकाने, होने वाले अपने ससुर की नौकरी कर वधु को पा सकता है। क्रय विवाह या सेवा विवाह की इस पद्धति से वधु का मूल्य चुकाने वाले असमर्थ वर को ससुर के घर पर रहकर 3-4 साल तक खेत खलियान से लेकर पालतू मवेशियों को चराने और रसोई से लेकर नहाने तक में पानी भरने की जवाबदेही समय से पूरी करनी होती है। वधु मूल्य चुकाने का इससे कम सरल तरीका यह है कि मूल्य के बराबर की संपत्ति, खेती, पालतू पशु वधु पक्ष को दिया जाए। इनके जनजीवन पर अपने विचार देते हैं डॉक्टर के एन पांडे।
1: घर हैं पर छोटे, घास फूस और मिट्टी के। पास ही अनाज की कोठियां रखने के लिए मचान होते हैं जिसे वे डोड्डी कहते हैं। रजस्वला स्त्रियों के लिए कभी घर के समीप या गांव के छोर पर पृथक झोपड़ियां बनाई जाती हैं। युवा शयन गृह गोटुल गांव बसाते समय सबसे पहले बनाए जाते हैं। यहां संध्या नृत्यगान होता है, आगंतुक यहीं विश्राम करते हैं। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोटुल के सदस्यों पर रहती है। गोटुल में एक नगाड़ा रखा रहता है। यदि गांव वालों को किसी प्रयोजन के लिए एकत्र करना हो तो नगाड़ा बजाया जाता है। प्रशासक नरोना ने अनुभव किया था कि देर रात्रि के सन्नाटे में नगाड़े के निश्चित ध्वनि संकेतों के माध्यम से समीप के गांवों में गुप्त रूप से संदेश भेजे जा सकते हैं। अबूझमाड़ में भूमि पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता। जनश्रुति के अनुसार आदिदेव करंगा अपनी पत्नी के साथ माड़ में पहले पहल आए थे। उनकी ढेर सारी लड़कियां थीं। वे जहां रुकते लड़कियों को छोड़ते जाते थे। यही लड़कियां बाद में क्षेत्र विशेष की रानियां बनी। माड़ की भूमि और पहाड़ियों पर इन्हीं रानियों का अधिकार है। रानी का प्रतीक एक शिलाखंड होता है जो साजा वृक्ष के नीचे रखा जाता है। पेंदा या अस्थाई खेती के लिए पर्वतीय भूखंड के वृक्ष काटने, कटे वृक्षों को जलाने, बीज बोने और फसल घर लाने से पूर्व 4 अवसरों पर उस रानी की पूजा अर्चना करनी पड़ती है जिस रानी के अधिकार क्षेत्र में वह पहाड़ी होती है। इन रानियों के अतिरिक्त ग्राम देवी अर्थात तल्लुर मुत्ते के लिए भी अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में एक कसिक गायता होता है। कसिक गायता भूमि का पुजारी होता है। अबूझमाड़िया समुदाय गोत्रों में विभाजित है। गोत्र क्षेत्र भूम कहलाते थे। माड़ भूम कहलाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था। अभी भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां गोत्र विशेष की प्रधानता है। भूम संबंधी धारणाएं धुंधली हो चली हैं पर उनका आभास अवश्य मिलता है। प्रत्येक गोत्र का एक विशिष्ट देव होता है जिसे वे पेन कहते हैं। जैसे उसे मुदियाल उसेंडी गोत्र का देव है तो काणा उराल परसाल गोत्र का। गोत्र और देवों की संख्या कम नहीं। देवों के अन्य देवों से वैवाहिक संबंध है, संताने हैं। मानवीय समाज के समानांतर ही देवों का समाज है। काष्ठ निर्मित आंगा या कोला इन देवों के प्रतीक बनते हैं। इन्हें मोर पंखों और पीतल की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत किया जाता है। इनके सम्मान में ककसाड़ अर्थात यात्राएं उन्हीं ग्रामों में आयोजित होती हैं जहां राउल अर्थात देवालय होते हैं। ककसाड़ की तिथि आदि निश्चित करने का काम वड्डे कहलाने वाले पुजारी का होता है। वड्डे की सहायता के लिए लेस्के होता है जो देवता का माध्यम होता है। गोत्र 2 प्रकार के समूहों में बटे रहते हैं। ये समूह दादा तम्मुन या अक्को मामल कहलाते हैं। दादा तम्मुन के गोत्र समूह के सदस्यों में परस्पर विवाह वर्जित है। वे आपस में बंधु हैं। विवाह अक्को मामल गोत्र समूहों में हो सकते हैं। मामा की लड़की विवाह के लिए पहली पसंद बनती है। पहल लड़के वालों को करनी पड़ती है। कभी प्रेम की प्रबलता के कारण कोई लड़की लड़के के घर भागकर आ जाती है, उसे स्वीकार किया जाता है। कभी लड़का होने वाली पत्नी के घर सेवक बनकर वधू मूल्य चुकाता है। ऐसे युवक को लामण्य कहते हैं। ककसाड़ आदि अवसर युवक युवतियों के लिए विशेष आकर्षण रखते हैं। प्रणय संबंध प्रायः इन्हीं ककसाड़ों की देन होते हैं।
0: गोंड लोगों में लड़के की शादी की उम्र 18 से 20 और लड़कियों की शादी की उम्र 16 से 17 साल के बीच आमतौर पर तय है। समय के साथ अब उम्र में अंतर आया है।
2: यानी लड़की की उम्र 18 की होने के बाद ही शादी करने लगे हैं।
0: हाँ, विकास की धारा में जुड़ने का यह भी एक प्रमाण मानो।
2: मैंने सुना है कि पहले लड़के लड़की पक्ष की रजामंदी ली जाती है। एक खास बात जो गोंडों की शादी में देखी जाती है वो ये है कि वधु पक्ष का सारा खर्च वहन किए बिना वर को दुल्हन नहीं मिलती। ये खर्च हमारे समाज की शादियों के खर्च की तुलना में काफी कम होता है, पर आर्थिक रूप से सक्षम न होने वाले गोंड वर के लिए काफी होता है। जाति, समाज, कुटुंब, ससुराली पक्ष के लोग सभी को मुर्गे, बकरे, शराब आदि की खुली दावत देनी होती है। वधु को मान स्वरूप चढ़ावा देना होता है। इन सब की आज की महंगाई के दौर में औसत कीमत 20 से 25 हजार रुपए से कम नहीं होती, जो हर गोंड युवक के लिए एक साथ खर्च करना बहुत मुश्किल काम है।
0: पिछले सालों के सरकारी शिविरों में तो सुकमा छिनगढ़ ब्लॉक के शबरी पार बसे गांव के दर्जनों युवाओं ने अपनी शादी के खर्चों के लिए कर्ज देने आवेदन भी दिया था। गोंडों में एक रिवाज है कि बहन को अपनी लड़कियों में से एक लड़की अनिवार्य रूप से भाई के लड़के के साथ ब्याहे, यानी ममेरे फुफेरे भाई बहनों में शादी हो सकती है। मामा लोग अपने भांजे के लिए संपत्ति में से एक हिस्सा पहले सुरक्षित भी रखते थे। कम खर्चीली शादी की रस्म मनोरंजक होती है। मेले ठेले या हाट बाजार में अपनी सहेलियों के साथ घूमती वधू को वर अपने साथियों की मदद से अपने घर गांव उठा लाता है, फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। माता पिता को भी एतराज नहीं होता क्योंकि सब एक राय होते हैं। इनमें कुटुंब परिजनों और औपचारिक निमंत्रण देने या शराब बकरे पर खर्च करना जरूरी नहीं होता।
2: एक अन्य तरह की शादी गुंडों में होती है जो हमारे समाज के लिए भी आदर्श हो सकती है, विधवा या परित्यक्ता से शादी। दोनों की रजामंदी के बाद वर द्वारा वधू को समाज के सामने चूड़ियां पहनाकर पत्नी स्वीकार कर लिया जाता है। पर ठीक इससे उलट यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को शादी का लालच दे भगा ले जाता है और व्याभिचार करता है तो 4-5 गांव के लोग मिलकर 24 से 36 रुपए तक का जुर्माना वसूल करते हैं, पर जाति के बाहर नहीं करते।
0: कुंवारे लोगों को ब्याह से पहले रतिजन्य हालत में पकड़े जाने पर शादी करने का दंड दिया जाता है। माना जाता है लड़का लड़की हैं आपस में खेलकूद के लिए, इनमें इनका कोई दोष नहीं। बस्तर में गोंड संस्कृति के पोषक आदिवासियों में शादी 4 तरह से होती है। इनकी विशद व्याख्या पंडित केदारनाथ ठाकुर रचित बस्तर भूषण नामक पुस्तक में मिलती है।
2: पंडित ठाकुर के अनुसार पहली तरह की शादी माता पिता दूसरों से मांगकर व राजी कर करवाते हैं। दूसरे तरह की शादी में प्रेम हो जाने पर लड़के लड़की गांव से भागकर शादी कर लेते हैं। तीसरे तरह की शादी में चूड़ी पहनाकर विधवा से ब्याह रचाया जाता है। और चौथी तरह की शादी में अपनी होने वाली पत्नी को जबरिया चुराकर या उठाकर सरी बाजार लाया जाता है। हालांकि इस तरह की होने वाली शादियों के मामलों में रिपोर्ट भी दर्ज होने लगी है। पुलिस ऐसी रिपोर्टों पर भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366 और यदा कदा धारा 376 भी जोड़ देती है। गोंड लोगों के समाज की अनुकरणीय एक बात यह भी है कि विधवाओं या पतियों द्वारा अकारण छोड़ी गई महिलाओं की शादी को पूरा सम्मान दिया जाता है।

0: गीतों का शास्त्रीय पक्ष बताते हुए डीपी बड़ौदिया।
1: लोक संस्कृति ये अति प्राचीन संस्कृति है और जहाँ तक लोगों का मानना है कि लोक संगीत जो है वो सामवेद पर कुछ आधारित है। सामवेद में ज़्यादातर दो या तीन स्वरों का प्रयोग बतलाया गया है, उसमें गंधार ग्राम, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो इस आधार से लोकगीत का जन्म हुआ है और लोकगीत में ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे स्वर होते हैं जो कि उनका स्थायी और अंतरा या पूरे ही लोकगीत तीन या चार स्वर पर होता है। और ये लोकगीत जो है चाहे जितने लंबे हो लेकिन इन्हीं स्वरों पर आधारित होते हैं। जहाँ तक रागों की बात है, शास्त्रीय पक्ष की बात है, तो इसमें अधिकतर लोकगीतों में औरों जाति वाले रागों का प्रयोग हुआ है। औरों जाति से मतलब जिसमें पांच स्वर लगते हो, तो पांच स्वर से भी ये कम प्रयोग करते हैं। तीन चार इन स्वरों में लोकगीत गाते हैं। और इन जाति के रागों में जैसे भूपाली हो गया, देशकार हो गया या सारंग हो गया, तो इन रागों में इनकी जो है लोकगीतों की रचना होती है। तो ये इसका शास्त्रीय पक्ष हुआ रागों पर आधारित। रही ताल की बात है तो ताल में जो है ये भी हमारे दादरा कहरवा या रूपक ताल जो हैं, जैसे कि जगार गीत लिया हलवी का, ये ताल झपताल पर आधारित होता है। जो सूपे पर और ये हंडिया पर लेके जो बजाते हैं, ध्वनि करते हैं रिदम की, ये झपताल ताल उसमें होता है। और बाकी लोकगीतों में दादरा कहरवा, जहाँ तक ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इनके प्रकार ही बजाते हैं ये लोग। दादरा और कहरवा के एक अलग अलग प्रकार बजाते हैं और शायद इन जो बीट्स या तालों का प्रयोग हमारे आधुनिक संगीत में भी किया गया है। तो ये लोक संगीत जो है वो अति प्राचीन है और शास्त्रीय पक्ष भी इसका बहुत मजबूत है, इसी पर आधारित ये होता है। और कुछ ऐसे स्वरों का प्रयोग होता है जिससे कि सहज ही हर किसी को समझ में आता है और हर कोई उसको सुनकर गाने लग जाता है, इसलिए इसमें सहज भाव होता है और शास्त्रीय पक्ष तो होता ही है। अभी आपने ये जो गोंडी गीत सुने हैं इनमें राग मधमाद सारंग, पंचम मालकोंस, चंद्रकोंस, इस तरह के रागों का इन्होंने प्रयोग किया है। और जहाँ तक ताल की बात मैंने आपको पहले ही बतलाई है कि ये दादरा कहरवा रूपक और दीपचंदी इनके जो है अलग से प्रकार जो है अपने रिदम पर आधारित करके ये लोग उसमें प्रयोग करते हैं तालवाद्यों पर।
2: इसी अवसर का एक गीत और है

0: आप सुन रहे थे रूपक रेला गीत। इस रूपक के लेखक थे डॉक्टर सतीश। वाचक स्वर था इश्तियाक मीर और करमजीत कौर का। संगीत था पार्वती और साथियों का। और इस रूपक के निर्देशक थे बलबीर सिंह कच्छ। ये रूपक आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: इत बदले मत्तां अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तां जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, इस समय दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

0: घर दुआर कार्यक्रम सुन तो सपाए आया मन, दीदी मन, बहिन मन और संजौरिया संगवारी मन के, मैं तारा करे से जुहार। और सपाए बिला मन के मचो बाटले खुबे खुबे मया और चुमा, तुम अच्छो सपाए लालो बेलो मन, कसन आसस तुम्हें सपाए, नगत नगत आसस बेकाय, असनी नगत नगत रहा है, घामे तपे नी खेला नी बुला हाला। और दखा आजी काली काय घाम छेके से ने, घामे तपे निकर लो ने बादू बले आए, ऐ काजे तुम्हें सपाय दिन भर घरे सौन बसुन रहा काय सुंदर, भात पेच खाऊन भाती घरे बिसावा, और हुतरे खेलुक लाए भाव लो ने छाए ठान ने खेला हाय। और दखा पीला मन तुम्हें जोन स्कूल जा तो पीला मन आहास नहीं, रोजे दिना स्कूल जहा मन लगाउन भाती, अच्छा ले पढ़े लिखे के करा, पढ़ून लिखुन भाती नाव कमावा, बड़े मनुक बना आप लो पाए ने ठिया हुआ है पीला मन। और तुम्हें नहीं आप लो आया बाबा, घर परिवार चो लोग के मुर्रे नी बिटावा, उन मन चो गोड बात के धरा, उन मन काय बल सोत काय सांग सोत काय समझा सोत, मन देउन भाती धियान ले सुना और समझा बले। और दखा जोन आमचो आया बाबा हो सोत एमन के, घर परिवार चो लोग के, गांव चो लोग के, सियान सजन के, नानी बड़े के, बल्लो ने सपाए लोग मन के आदर मान ले हमके गोठिया तो राय, हाय मया ले आम के गोठिया तो राय, सपाए लोग के आदर दे उन भाती मान दे उन भाती। दखा पीला मन आम के अच्छा मनुक बन तो राय, आम के अच्छा मनुक बनुन भाती रतो राय, आमी सपाए लोग मन के, हाय तुम चो तारा दीदी चो बल्लो ए गोठ मन के नी भूल का दखा सुरता संगावा हाय। बहिन मन मैं पीला मन संगे तो गोठिया ले, मया चुमा बले दिले, नगत नगत गोठ मन के बले उन मन लगली अमरा ले ने, स्कूल जहा पढ़ा लिखा हुआ बले बल्ले, सत्य आए बहिन मन ये सब सत्य गोठाए, एबे चो समिया ने स्कूल जा तोर शिक्षा पाओ तोर बल्लो ने पढ़ई लिखई खूब्बे जरूरी आए। बहिन मन आम के आम चो सपाए पीला मन के रोजे दिना स्कूल पठा तो रहे, खूबे पढ़ा तोर लिखा तो रहे उन मन के, चाहे हुन लेका हो ना हले फिर लेकी हो, दोनों के एक बराबर पढ़ई लिखई करा तो रहे, लेका आए पढ़ो ये तो लेकी आए, नी पढ़ो बल्लो ने तो नी होए ने, और ऐसा बल तोर बल्ले नवाए। आजी चो समिया ने लेकी मन बले खूब्बे नाव और चीना बनाला सोत, बहिन मन आप लो नाव कमाला सोत और आप लो पहचान बनाला सोत, भले हुन कोनी चिठान रहो उन बाटे लेकी मन बले खूबे आगे आसोत, हर क्षेत्र ने आगे आसोत, पढ़ई लिखई चो क्षेत्र हो, काम बूता चो क्षेत्र हो, नहाले फिर काई बले हो, आजी चो समिया ने लेकी मन काई बल तीज ने पाठकुती निहात, पढ़ून लिखुन भाती काबिल बनला सोत, और असन करुन बाती आया बाबा घर परिवार के संभाल सोत और चला सोत बले, और संगे संगे जोन घर परिवार आए आया बाबा आत और जोन गांव पारा आए हुन सपाए जो नाव के बले ऊपरे उठाला सोत। तो कैक बेटी मनाजी दखा पढ़ा लिखा करुन भाती विदेश मन ने बले गेला सोत और नाव कमाला सोत और उनथा ने रसोत काम बूता मन के कर सोत, आय कसन। तो ऐ काजे बहिन मन एबे चो समिया ने बेटा हो नहाले बेटी हो ने, सपाय के पढ़ाई लिखाई कर तोर खूब्बे जरूरी आए, सपाय के आमी पढ़ा लिखा कराऊ ए बले खूब्बे जरूरी आए, उन मन के नगद शिक्षा दिला तोर खूब जरूरी होली से बहिन मन। और दखा आमी बहिन मन चो पहिल जिम्मेदारी ए आए कि आम के आप लो सपाय पीला मन के रोजे दिना स्कूल पठा तो रहे, चाहे हुन लेका हो नहाले लेकी हो, ए आम जो पहिल जिम्मेदारी आए कि आमी उन मन के रोजे स्कूल पठाऊ और अच्छा ले उन मन चो पढ़ई लिखाई चो ध्यान देव और उन मन के काय सुंदर पढ़ई लिखाई के कराऊ ने। ए गोठ मन तो होली बहिन मन मांतर गोटोक और गोटा हसे त मचो लगे, उन गोठ ए आए के दखा कैक दीदी बहिन मन असना सोत जे मन पढ़ुक लिखुक लाए नी जान सोत, तो काई नी होए बहिन मन एबे बले बेर नी होली से और बेर होली से बले तो काई नी होए, तुम्ही एबे बले पढ़ुक लिखुक लाए सीख तोर मूर करुक लाए सकास, आमचो घरे जोन बले पढ़ा लिखा लोग आसोत नहाले घर लगे बल जोन पढ़ा लिखा लोग मन आसोत नहीं, हुन मन लगे जाऊन भाती तुम्ही पढ़ुक लिखुक लाए सीखुक लाए सकास और तुम्ही शिक्षित होक लाए सकास। तो ये तो काहे सुंदर नंगत नंगत ज्ञान ध्यान भी ती गोठमन रहे बहिन मन, और मचो बल्लो ये गोठमन के लेख करातुन तुम्ही सपाए। तो ये तो काहे सुंदर गोठमन होली मन तरह झाला बीती और बल्ले नगत गोठमन आसे, ये गोठमन के बल्ले सुनूता उन चो पाछे पेरा में गोठियावा।
1: ಸೊ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಡಿಯ ರಾಹ ತಿಂದನ ಉಂಡನ ಸಾಮಾನ್ ತಲೆ ದೊರಕ್ತ ಡಬಲ್ ರೋಟಿ ಆರಿ ಅವ್ರ ಛೇನಾ ಪನೀರ್ ಅಸಿತ್ಕೆ ಇಂದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಗೆ ಮಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ಸಂಗೇನ್ 33 ಜರೂರಿ ದವಾಯಿನ ಮೋಲಾವೆಂಡ್ ಕಮ್ ಕೀಸಿತ್ತೋಡ್ ಅದೇನ್ಕೆ ಇಲಾಜ್ ತಲೆ ಖರ್ಚವೆಂಡ್ ಕಮ್ ಲಗೆ ಮಾತಾ ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ತಗವೆಂಡ್ ಇಂಜೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚೂಟ್ ದೊರಕಿತ ಅದೇನ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಯ್ತನದ್ ಇಂಜೆ ಸಸ್ತಾ ಅಂತ ಸುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರ 350 ಸಿಸಿತ ಕೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ತ ಪೊರ್ರೋ 28% ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತ ಅದ್ ಕಮ್ಮಾಸ್ ಇಂಜೆ 18% ಅತ್ತ ಇದನ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಇದ್ಕಿ ಇಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ಅಸಿತ್ಕೆ ಸಸ್ತಾ ದೊರಕಿತ
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 to 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 to 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आम चो फोन नंबर आए 07782226666 फोन इन किसान वाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
0: हाँ तो बहन मन ए भी आमी गाय सुंदरी नगर झाला मन के तो सुन लू मंत्र अदाय समय हो से भेंट वार्ता कार्यक्रम बाटे जातोर देखा जसन के अभी में गोठियाते रहे ने पीला मंचो पढ़ा लिखा चो गोठ मन के स्कूल जातो गोठ मन के बल्लो ने जो शिक्षा हो से उनचो गोठ ने तो असनी ये जो भेंट वार्ता है एथाने भेंट हो सो तो बहन श्रीमती अनुषा जॉन और एमन संगे एमन जो नात एथाने सांग दे पीला मंचो गोडबा पढ़ई लिखाई छू गोडबात मन के और एमन संगे भेंट कर सोत श्रीमती तनुश्री मोहंती तो आले काय काय गोठ मन के गोठिया सोत पहिले मन चो गोडबात मन के सुनुता उन चो पाछे फेरा में गोठिया मा
5: स्कूल नहीं पढ़तो पीला मन के पढ़ई का जे असन काय उपाय करतो रहे कि पीला मन रोजे स्कूल ले ये गोठ के सांगतो का जे एता अमरला से बहन अनुषा जान तो दीदी सबले पहले तुमके जुहार
6: जुहार
5: एदाय सांगा पीला मन कसन ने रोजे स्कूल जा दे और दीदी ये गोट के तो सांगा सीची मानतर मैं बोलते रहे कि आगे जोग और एप चो जोग ने तुम्ही काय फरक समस्या से के खिंडिक सांगुन दका
6: हाँ जसन की सब पाए जानो आज चो जुग और एवे चो जुग ने कितरो फरक आसे आगे जुग चो लोग पढ़ा लिखा नहीं होन बले कमान खादला और जीवला मंतर ए जुग जे के कल जुग बले बलुआ जोन थाने हरेक बुता कल मशीन ले होए से असन बेरा कोनी नुआ पीढ़ी चो लोग बले कोनी पीला अपड़ आसद बोले काम नहीं चले बाढ़ती जुग संगे संगे जातो काजे सब चो पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है और सरकार बले कई ठान उपाय योजना मन बनाए से कि सब पाए पीला झीला मन पढ़ोत और जुग संगे संगे आगे बढ़ोत
5: ये भी तुम्हें सांगलास के पीला मन चो पढ़तो काजे सरकार कई ठान योजना मन बल बना ली से तो ये योजना मन के खेडिक सांग दखलन होती दीदी
6: सरकार चाहे से कि सपाए पीला पढ़ोत एचो का जो शिक्षा चो अधिकार बोलते को तो कानून पास होली से आम चो देश भीतरे कोनी गांव कोनी पारा कोनी मोहल्ला चो गोटोक पिला बले अपड़ नहीं रहो बोलते और ये कानून बनली से कि 6 to 14 जो सपाय पिला मन काजे कक्षा पहली ले धरून कक्षा 8 तक पढ़तो काजे सरकारी स्कूल ने कोनी पैसा पत्र खर्चा करुक नहीं लागे और ये कानून भीतरे सपाय पिला फ्री ने पढ़सो उन मन के पुस्तक मिरे से स्कूल ड्रेस बल मिरे से और कक्षा 5 और जो 8 ने बोर्ड परीक्षा होते रहे उनके बोले गुजान दिला सर
5: असन ने तो दीदी ये जो शिक्षा जो जो अधिकार बनली से मैं जानू चाहे से कि सपाय पीला मन के स्कूल ने ये जो ना पढ़ कमर लाई मन
6: ये खूबे अच्छा गोट के तुम्हें पूछ लास सरकार जो कानून तो बन ली और एबे बले गुरुजी बहन जी मन गुलाब गांव पारा खोरी मोहल्ला ने बुलुन बुलुन खोजुन खोजुन 6 बरख ले 14 बरख जो पिला मन के स्कूल ने भर्ती करुन दिला।
5: हाँ हाँ।
6: मानतर सपाय भर्ती हो तो पिला मन एबे बले स्कूल जाओ मन नहीं करे सो।
5: सत्य बल्लास। तो असन पिला मन का जे काय उपाय करू पड़े दे मन का जे।
6: हाँ, जोन पिला मन रोजे स्कूल जासो थुन मन के तो हुन मन तो सीखु चाहे। मानतर असन पिला मन जोन स्कूल जाओ नहीं चाहे सो, हुसन पिला मन के चिन्हुन भाती का एक ठान काम करू पड़े दे। जसन सबले पहल असन पिला जो घरे जाऊन भाती हुन मन चो माय बाप संगे गोठ बात करू, हुन मन के समझाक पड़े दे।
5: हाँ, कि तुम रोजे स्कूल पटा। हाँ,
6: तुम जो पिला चो जीवना के आगे चला तो काजे तुम के सोचुक पड़े दे है, और ये चुका जे आपलो पिला झिला के पड़ोक बले पड़े दे।
5: हाँ, हाँ।
6: तुम ही तो आपनो जीवना के पढ़ा लिखा नहीं होन बले चला लस।
5: हाँ।
6: मानता रे भी तो नहीं चले,
5: ये भी तो मुश्किल है।
6: मुश्किल है। तुम्ही घर चो काम बुता बाटे बेड़ा बाटे छेरी मेंडी चरा तो बाटे पिला मन के तो पठान दे हुआ है, और गुलाय मंजन पिला मन होता खेलुन खेलुन बुता बले कर सोत घर चो और खेलते बले रुआत। तो हुन मन जो आया बुआ के समझा तो राय कि ये काम बुता के छुट्टी दिन बल कराओ नाले कोनी फावलो बेरा कराओ मंतरी स्कूल रोजे पठाओ। और ये संगे संगे होनी स्कूल भर्ती होलो पीला मन संग बले गोट बात करू खूब जरूरी है से। हाँ, का जे बोले पीला मन जो विचार काया से है, उन मन जो नानी पीला मन जो मन के जान तो खूब जरूरी आसे।
5: हाँ,
6: काय चाहे सो कसन बोले ने जोन स्कूल नहीं खेला सोत नहीं, उन मन के डर बल लागे से।
5: हाँ, कि होता पढ़ा दे कि मार दे
6: मार दे
5: काय कर दे
6: इतरो दिन ले नहीं गेले से मैं मार दे, और खेंटिक लाज बल लागे से
5: है
6: कि मैं अगर बाढ़ ले से नैन नैन पीला मन संग जाऊन बसे दे
5: लाज होलो कारण बल मन नहीं जाए
6: नहीं जाए। हाँ, हाँ। है तो हुन मन संगे अच्छा गोट बात करून भाती हुन मन जो मन के तैयार कर तो रहे। हाँ,
5: हाँ।
6: कि डर तोर न आए कि लाज हो तोर न आए, और सीख तो कोनी उम्र हो से नहीं है, पीला बेरा ले धरून नामी सियान हो तक सीख सीख सो है। हाँ। तो असन सिकान भाती हुन मन के रोजे स्कूल जातो का जे तैयार करुक ले पड़े से।
5: दीदी असन पीला मन स्कूल जो दिन भर रहते रहला फिर इधर ये बाटे उन बाटे बोल लो ने खेटिक ठग बोल दाका हुआ कोनी कोनी पीला मन।
6: हाँ,
5: है कैसा।
6: हाँ, हाँ।
5: तो असन मन जो पीला मन आस होत उन मन का जे कहीं उपाय करु पड़े दे।
6: हाँ, असन पीला मन जसन स्कूल गोटोक दिन है उन फिर गोटोक दिन पर हुआ था।
5: हाँ, हाँ।
6: तो हुन मन के चमका धमका कर तो न है,
5: सुसारे
6: समझा तो रहे, और हुन मन के सपाय पीला संगे गोट बात कर उन भाती जान पहचान करान दे तो रहे।
5: हाँ, बोल लो ने उन मन तो ये खेली को दोस्त असन बन ला।
6: हाँ,
5: ने
6: हाँ।
5: खेल तो काज बोल उन उनका अच्छा लागे दे। हाँ, खेली उन मन तो मन भूरा लो ने रह दे बने।
6: हाँ, और जसन की अब सपाय बोलुआत की स्कूल नहीं जातो पीला कहीं नहीं जाने उसन न आए, मान तर पिला मन नहीं स्कूल नहीं जान रो बले हुन मन जो भीतर खूब बे जानकारी रहे से ज्ञान रहे से। हाँ, कैदक गिनती बल जानो थ हुन मन गोठिया को जानत कि लिखुक नहीं जानत मातर गोठिया को जानत। तो हुन मन के धीरे सुसारे हाक दे तो राय, और हुन मन के हुन मन जो भाषा बोली ने गोठिया तो रहे
5: बोलो ने हुन मन भोतरी जान सो तो खिंडी बोली हम के जोगे नहीं जान बोल खिंडी भोतरी बोल लोसन बोलो ने गोठिया तो बोलो ने गोठिया तो रहे
6: हुन मन के धीरे ले मया ले पूछ तो रहे कि तुम जो घरे कौन कौन आसो तू जो काय नाम आए है तू काय साग खा ली तू के कौन खाजा अच्छा लागे से, और ये सब गोठिया लो ने कहे कि पीला मन जो डर बल गुचे से
5: और हुन मन के लागे से नहीं ये आम ची असन लोग
6: मोचो माया बाप भाई की कौन आया असनी गोठिया हुआ है। तो उनके असन लागे कि मैं कोनी दिगर ठान ने आसे, अब मैं आप लोग घरे आप लोग बाग संगे आसे, और उनके डर नहीं लागे और उन मन कर उन तब ऐसे से
5: आसन नहीं। तो दीदी स्कूल ने कसन पढ़ा तो रहा है कि पीला मन के ठग नहीं लागो बोलो।
6: हाँ, देख स्कूल ने तो सपाई पीला जाए सो है, और हम जो स्कूल ने पढ़ा तो लोग मन बले अपन पाठ के अपन विषय हिसाब ने पढ़ाए सो। मान तर सपाय पीला मन के हुन विषय हुन पाठ समझिली कि नहीं के बले ध्यान दे तो रहे है कि नहीं।
5: सत्य बोल
6: देख सपाय पीला मन जो दिमाग तो घोटो समान नहीं रहे।
5: हाँ, कोनी किंडी चतुर असत
6: कोनी झटके समझवात कोनी नहीं समझत। तो जसन हमें कोनी पाठ के पढ़ाओ से तो सपाई पीला मन की कहानी असन आगे सांगुन दे तो
5: उसने कहा उनके ध्यान दे सुन सो कहानी की।
6: हाँ, फिर पाठ के हुन जो घर जो गोट संगे जोड़न दे तो रहे। जसन की आमी स्कूल ने जल नाव चो पाठ के कोनी गुरु जी या बहन जी पढ़ाए से, और हम जो गाँव खेड़ा चो पीला जल के तो नहीं चिन्हत
5: जल बोल
6: काय भीती आय जल बोल दे ने और हमी पूरा पाठ के जल असन आय जल के बोलू आज जल ले करू आज बोलो ने जोन पीला मन जल चो मतलब के समझो सो थुन मन पाठ के समझ ला मानतर जोन पीला जल चो मतलब की नहीं समझे से उनके तो काई समझ नहीं
5: है
6: काय भीती है और पूछ तो कजबल डर और लाज लाज बल लागे से की एक ही नहीं जाने बोलते असन पूछे सत ने तो हुन ए बाट हुन बाट दखते रह से और हुन के पढ़ा लो पाच फेर गुरुजी बन जीवन प्रश्न पूछ ले हुन काय कसन उत्तर दे दे
5: होगा हुन जाय से लाज लागे से डर बल लागे
6: डर बल लागे से
5: तो असन पिला मन कसन करुन समझुक सकते मन
6: हां असन लोग और सफाई पिला के आगे तो जल जो मतलब के सांगुक पड़े दे
5: बोलो ने मतलब के आसन समझाव पड़े ने
6: हां जैसे हुन मन जो इस तरह हिसाब ले हुन मन जो गोट बात मुरिया को लग लाग दे जैसे पिला मन तुम्हें प्यास लाग ले काय के पीऊ आज तो कई पिला मन पानी बल दे और कई झंडानी पिला मन पेज बल बोलुक सको
5: सत्य कसम बोलो ने प्यास लाग पेज बल
6: पेज बल पी सो है नी तो हुन मन के धमका चमका कर तो नो है मानतर हुनिच मन के पूछ तो राय की पेज रान तो काजे काय काय जिनिस लागे से है हुन सांग ले सांगलो जाले ठीक नाले हुन मन के धीरे सुसारे सांग तो राय कि जल पानी के बोलू है नहीं और पानी चो काय का उपयोग

0: से, पानी कहाँ कहाँ ले मेरे से, ये सब गोठ मन के पीला घर ले स्कूल चो ज्ञान ले जोड़न दे तो रहे
1: तो सने पीला मन चो मन भल पढ़े वाटे लागे दे।
0: हाँ, जसन बाबू तुई नहा तो कजे कहाँ जाऊ आस, नहा तो पानी के पीउ तो काम नहीं अनुक सकू हमें, तुम चो गाँव चो लोग कहाँ कहाँ चो पानी पीउ सो, ये सब गोठ के पीला मन के तो सिकाऊ नहीं लागे, मन तो चट चट गोठिया दे, तो असनी हमें पाठ के धीरे धीरे समझाओ ले सको।
1: ये तो खुबे नगद तरीका आए मंत्र। मैं कहा तो सुनू रहे कि स्कूल ने खेल खेल नहीं बोले सिखा हुआ, ये कसना से।
0: हाँ, खुबे अच्छा गोट के तुम्हें पूछ ला बहन। आजिकल पाठ के पढ़ा तो कहे सरल ले सरल तरीका डगरक पड़े से।
1: हाँ,
0: कि कसनेच करून बोले पीला मन सीखत, ये हिसाब ने खेलून खेलून सीख तो कई ठन उपाय मना से, जैसा मैं तुमके गोटो खेल ने गणित सिखा सके।
1: हाँ,
0: आम चो गाँव चो लेकी मन बिल्ला खेलू आत नहीं, उसने लेका मन बारा डंडी खेलू आत। ये चो कहे चार कोनिया जोन लकीर खींचुआत और खेलू आत, तो हुनी चार कोनिया लाइन ले पीला मन के रेखा गणित चो कोण कसन हो से, समकोण कसन हो से, अधिक कोण न्यून कोण के सिखा सकू। उसने लेखी मन चो बिल्ला झिक तो का जो गोला झिकुआत, तो ता वृत्त काय के बोलुआत, परिधि कोण लगे आसे, कोण लगले त्रिज्या बोलुआत, चाप बोलुआत, कर्ण बोलुआत, ये सब के हमी खेलते खेलते सिखा लेने। नोनी तू ये लगे अमर लिस एक परिधि बोलुआत, असन सांग लो ने उनके भी नहीं भूल कुक सके।
1: और उन मन के खेल खेलने पढ़िए सन बनी
0: लागे नहीं लागे। और नहीं जान ले बोले सीख दे कि एक परिधि बोलुआत, एक त्रिज्या बोलुआत, हुन सिकुक ले सके। असने जसन आम चो भारत देश ने किठन राज और हुन चो राजधानी आसे, एक सिका तो गजे पीला मन चो जोड़ी बनान देऊ, हम गोटो के राज बनान देऊ और गोटो के राजधानी, और हुन मन के हुनी नाम ले हाक देऊ, तो पीला मन बल सीख दे और हुन मन बले भूलकुक नहीं सीख नहीं सकते। असने जसन विज्ञान के हमी पढ़ाऊ से, विज्ञान ने हम सजीव निर्जीव पाठ के समझातो रहे, तो सब ले आगे हम के सजीव और निर्जीव का है के सांगुक पड़े थे।
1: कसन बोलो न गांव तो पीला मन तो सजीव बोले का है नहीं
0: जानो है ना, तो पीला मन चो खेल तो हुन लेका मन खेल सो बाटी और भौरा है, हुनके गोटो खात ने धर तो रहे और गोटो खात ने बूटा, कई बल बूटा के आनुन भाती दखा तो रहे और बोल तो रहे की बेटा ए बाटी के आपटलो ने हुनके दुखे से की नहीं है, और तू चो मुंड के खिंडिक थकान छटान दक हुन तुके दुखा दे से की नहीं है नी, तो हुन सांगे दे की
1: मोके दुखे से,
0: मोके दुखे से, अरे बाटी के तो नहीं दुखे से, तभी हमें उनके सिखा सकू की जोन थाने जीव आसे हुनके दुखे से, जोन थाने जीव नहीं आए हुनके निर्जीव बोलू से हमें है। असने हम मन के सिखा सकू की आमा रुक आमा जोन टाकू है उनके रोपलन हो से है, और जाम रुक जाम चो बीजा ले हो से है, आमा ले जाम नहीं हो जाम ले आमा नहीं हो मानतर, ये बाटी और भौरा के अच्छा खोदरा खनुन भाती तो पुन होता पानी और खाद देते रहे नु नखरे दे हुन तो नहीं आख रुक सके, तो हुन बोले हम हुन मन के सिखाओ सकू कि सजीव और निर्जीव असन हो से बोलते, तो खेल खेलने सरल तरीका ले हमें कई जीनिस के आनुन भाती पीला मन के दखा तो रहा है उनके छिया तो रहा है, और असन सिकालो ने पीला मन अपन बल कर उन दखुआ मन बल लागे से, और असन जो असन प्रयोग कर सत नहीं खुदे कर उन भाती तो केवे हुन मन भूल कुक लाई नहीं
1: सको, तो उन मन के बिल्कुल
0: याद रहे से।
1: तो दीदी मैं बोलते रहे ये जो बोर्ड परीक्षा के तो सारून दिला से, तो पढ़तो पीला मंचो पढ़ाई ना काई फरक असन होत कसन।
0: हाँ, एक ही मैं तुमके सांगून दे से बोर्ड परीक्षा बोलने ने ये जो शिक्षा चो अधिकार आसे ने, तो पांचवी और आठवीं चो बोर्ड परीक्षा के गुजाला से आगे चो आसे
1: आसे आसे। हाँ, मैं उनके ही बोलते रहे कि पांचवी चो परीक्षा गुजालो ने पीला मन चो कसन हिसाब में पढ़ाई होए दे बोलते। हाँ, रहे
0: आगे पांचवी बोर्ड और आठवीं बोर्ड के गुचान दिला से असन आए दक पीला मन परीक्षा बोलन डर है सर।
1: हाँ, डर सर
0: है पीला मन का बड़े बड़े लोग के डर लागे
1: परीक्षा जात्रा बोलो
0: डर लागे से
1: डर लागे से।
0: तो कई ठन गाँव चो पीला मन का है कि बोर्ड परीक्षा आई तब नहीं पढ़ लो ने फेल बल हो सकू नंगत नंबर नहीं आनु सकू बोलते डरे सोत, तो यही काजे ये मन चो पढ़ाई चो व्यवस्था अच्छा बनु रहो बोलते सरकार चाहे से कि पीला मन एक हार पहली कक्षा ने भर्ती होत और सर लगा पास होते होते आठवीं पढ़ुन भाती स्कूल ने निकरो
1: बोलो ने समझ दे
0: समझदारी है मन के। हाँ,
1: स्कूल पिला मन के स्कूल ने पढ़ाई संगे संगे और दूसर ज्ञान बोले देवत
0: हाँ
1: तो एक बल खेडी सांगन दखलन होती दीदी
0: हाँ सांगे हाँ। समय असन तो स्कूल बोले ज्ञान जो गोट और कई प्रकार जो नुआ नुआ गोट के सिकुन आप लोग जीवना के सुधरा तो ठान हो
1: हाँ, हाँ।
0: मानतर ए विषय मन के छानुन पिला मन के साफ सफाई ने कसन रतो राय है अपन देह चो संगे संगे आप लोग पिन लो फटाई आप लोग नक के दत के बाल के ये सब जो सब सफाई कसन करतो रहे कौन बीमारी ले कौन टीका सूजी मारुआत कौन बीमारी कौन विटामिन चुका मिले हो ऐसे
1: हाँ।
0: और ये बीमारी ले कसन करून बाचुक सकू आपन ले नानी लोग मन संगे कसन दया मया ने रतो रहे है आपन ले बड़े मन संगे कसन इज्जत आदर ले गोठिया तो रहे और ये चो संगे संगे पीला मन कोनी गीत नंगत गाउआत कोनी कहानी लिखुआत कोनी नंगत छापा बाना बना हुआ
1: कोनी नाचू बोले
0: नाचू बोले हाँ हाँ। तो ये सब ले बोले पीला मन की परीक्षा हो से है नी तो जोन पीला मन जोन बाटे हुन मन चो मन करे से जोन काम के हुन मन अच्छा करुआ तो हुन विषय ने हुन मन के नंबर अच्छा मिले से
1: हाँ सत्य बल
0: और जो संगे संगे पीला मन चो पढ़तो कक्षा के हुन मन चो बना लो जोन चित्र आए बाना आए छापा आए और नंगत रंग बिरंगा पाक फर चो बाना बनान दिया
1: हाँ,
0: है नी साग डार चो बाना बनान दिया पशु जानवर चो छापा गीत कहनी और गिनती पहाड़ा गुलाय दीवाल ने
1: हाँ,
0: बीती
1: हाँ,
0: ने लिखुन दे तो रहे और नानी पीला मन का है कि सजरा लाल बुता जो हाँ, कमरा हाँ, रहे से नहीं तो मन करे सो
1: सत्य अल्लाह सर हमन जो मन बल लागे से
0: हाँ,
1: नाले उनो निकरुन पुरा हुआ
0: निकरुन पुरा हुआ थे उता रंग बिरंगा छापा हुन मन जो चढ़ई के दक की बाघ के दक की बेंद्रा के दक हुनी लगे लग रहे उन भाती तो हुन मन जो जीवना के सिखा तो रहा हम के हुन मन जो कसन कहाँ मिरुआते माने चले काय फायदा है मनुख जाति के ये सब के हम ही सिखाओ के सकू है नी और मैं सपाय सुन तो दादा दीदी मन के सांगू के लाए चाहे से कि पीला मन के रोजे स्कूल पठा तो काजे सांग तो रहे है ठक दका तो पीला मन के रोजे स्कूल ने हुन मन के आनंद दे तो रहे हुन मन के समझा बुझा कर तो रहे गांव खेड़ा ने पीला झीला मन का है कि ठक बोल दखा हुआ
1: हाँ।
0: और गागुक बोल मुरिया हुआ है नी
1: तो दीदी तुम्ही इतरो नगद गोट के आम चो टेशन नियुन भाती आम चो दीदी बहन मन के सांगलास और आम के बल हरिक लागली और आम चो दीदी मन बले पक्की ध्यान देन सुनला होती तो फिर असने के भी भेंट गांठ हो आलते भी जुहार
0: जुहार
2: हाँ तो बहन मन एबे हमी सुनते रहो भेंट वार्ता कार्यक्रम के एथाने गोड़ बात करते रहोत बहिन श्रीमती अनुषा जॉन ए मन सांगते रहोत कितरो सुंदर की स्कूल ने पीला मन के कसन शिक्षा दे तो रहे जे चले हुन मन अस्कट बले नहीं होत आ डरोत बले नहीं और मन लगाउन भाती समझुक लाए सकोत और पढ़ुक लाए बले सकोत ने और सीखोत नवा नवा तीज मन के बले तो एक आय सुंदर गोट मन तो होली मानतर ये बहिन मन संगे भेंट करून भाती जोन गोड़ बात करते रहोत ए मनात बहिन श्रीमती तनुश्री मोहंती तो ये गोड़ बात मन तो होली आम्ही सुनलू बले और समझलू बले नहीं ये चो मोल के मानतर दखा नंगत नंगत ज्ञान ध्यान बीती गोट बात मन तो होली ने और ये चो संगे संगे गोटोक गीत बल होलो ने नंगत रती बलते रहे मैं असनी गोटोक शिक्षा बीती गीता से बहिन मन तो पहले गीत के सुनू था उन चो पाचे फेरा में गोठिया हुआ और ये जोन गीत आए एक गावला सोत जलधर और हुन मन चो संगवारी मन तो आले गीत के सुनू

हाँ, तो बहिन मन ए भी आमी सुन लू एक काय सुंदर गीत के। ए गीत के गावला सोत जलधर और उनमन चो संगवारी मन। तो बहिन मन अदाय मचो जातो समया होए से असनी मैं फिर के भई तुम चो संगे भेंट होकलाय आए दे। तुम ही सपाए बहिन मन नंगत रहा स्वस्थ रहा हरि को दिमने रहा और खूबे खूबे बढ़ती उन्नति करा। आले बीदा धरे से घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सपाए आया मन दीदी मन बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के जातो पूरे मैं तारा करे से जुहार।

0: आप सुन रहे थे ग्रामीण महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर द्वार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 में हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामे की बेड़ा खड़ा चुगूट।
2: भाई बहन मन, जसन जसन जनसंख्या बाढ़े से हुसने हुसने बेड़ा कमानी कम हो से। बेड़ा खड़ा कमानी कम हो तो के देखुन पशुपालन के किसान मन आमदनी चो प्रमुख काम बनाक लाए सकोत। मानतरे चु नगत वाट मन नी जानतो के किसान मन के चु खूबे फायदा नी मिरुक सके से। यही काजे गोरस व्यापारी के लाभकारी बनातो काजे पशु पोस्तो लग मन के एगोट मन के लेख करुक लाए पड़े से। सबले पहिल तो पोस्तोर गाय हो नहाले भैंस पालन पोषण काजे ज्ञान और मन चो इच्छा शक्ति होतर खूबे जरूरी हो से। दूसर गोट हो से गोरस बीती पशु मन के गाय भैंस जो घेंतोर पूरे छाट तो काजे पशु के घेंतो बेरा उम्र नस्ल और हुंचो स्वास्थ्य कसना से एक ध्यान देतोर खूबे जरूरी हो से। घेंतो काजे बले गोरस बीती गाय नहाले भैंस के लाफी ठान ले नी घेंतो राय। कसन बल्ले लाफी ठान ले घेनलो ने ये जलवायु हुनके हुंचो काजे अच्छा हो दे कि नहीं, हुंचो देह पाए अच्छा रह दे कि नहीं, ये गोट काजे लेख करतो राय। और पशु मन उन्नत नस्ल चो रहो ये गोट के बले दखतो राय। पशु चो उमर कसन रहो कास्कर भाई बहन मन गाय और भैंस के दखुन भांति घेनतो राय। हुन एक नहाले दुई हार पीला पकाऊ रहो। संकर नस्ल चो गाय चो पहिल हार पीला पकातोर उमर 28 से 32 महीना और भैंस चो उमर 45 से 48 महीना ले आगर नी होतो राय। और लेख करतो राय कि हुन चो देह पाए नगत और बरसक रहो। ढेटी मन बले नगत और बीमार नहालो रहो, एके बले दखुन भाती घेन तो राय। गोरस कितलो दय से एके सांगा सुना हिसाब ने नाई पारले घेंतोर पूरे आपलो हाथ ने 3 से 4 हार दुहन भाती कितरो गोरस दय से एके जांच करुन दखतो राय। गाय भैंस के छाट तो बेरा हुन चो पीला बाछी रलो ने और नगत आए। काय काजे की बाछी ले ए तो समय आने गोटो गाय नहाले भैंस बने दे। संगे संगे लेख कर तो राय कि हुंचो सिंग और खुर जसन चो हुसन रहो बल्लो ने बिकतो काजे व्यापारी मन हुंचो सिंह के घसुन भाती लुका हुआ तुमर के ऐ काजे ये गोट के बले लेख करतो राय पशु के पूरे ले पाठे हिंडाउन बले दखतो राय पशु चो जनेन्द्री बल्ले जन्मा तो आंग ने कहीं अलग ले कहीं पानी महा घसरे से तो नहीं ये गोट के बले लेख करतो राय लेंगड़ी के बले हाथ ले हलाउन भाती दखतो राय ऐचे संगे पशु जानवर चो टक्कर के बले लेख करतो राय ऐचो काजे लगे जाऊन दखतो राय काय काजे की कोनी कोनी पशु दूसर लोग के सिंह ने मारुआत और कोनी कोनी पशु मन सिंह ने खुटा के मार सोत असन पशु के बले लेख करतो राय और नी घेनतो राय आगर गोरस काजे हालिस्टीन फ्रीजियन जर्सी संड ले जन्मालोर शंकर गायमन ये थाने 62.5% विदेशी नस्ल चो रहू रहो और एक ही घेन तो राय देसी नस्ल काजे साहिवाल नहाले हरियाणा चो शुद्ध नस्ल चो गाय मन के घेनुक सकास भैंस चो नस्ल काजे मुर्रा और उन्नत मुर्रा भैंस पोस्तर नगत आए खासकर भाई बहन मन सांगलोर असनुवाट के धरुन गोरस चो उत्पादन कर ले जुगे लाभ कमावा से और आप लोग डेयरी व्यवसाय के आगे बढ़ावा से।
1: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वीकार कीजिए हरिप्रिया का अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सावन को आने दो फिल्म से, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में। गीत कृष्ण की है, गौहर कानपुरी ने, और संगीत है राज कमल का। सुनने की चाहत रखते हैं हमारे ये सभी श्रोता। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। बागबहरा भद्रसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन। जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामनी कर्ष, यश कर्ष। गुमला झारखंड से एस एम जावेद, सगुफ्ता अंजुम। ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अवान अब्बासी। शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। छत्तीसगढ़ बुड़गहन से आप हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, रतक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से आप हैं शुभन चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पम्मी भाटिया। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: श्रोता सुमन कार्यक्रम में पुनः आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गाना ब्रह्मचारी फिल्म से सुनिए, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। गीत कृष्ण की है, शैलेंद्र ने, और संगीत है शंकर जयकिशन का। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। नेवासा खुपटी से आप हैं, बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से आप हैं, श्रवण पूजा अनीता बिड़वे, हरिभाव बिड़वे, ग्राम छिंदडीही से आप हैं, कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार, मालेगांव से आप हैं दत्ता घायाल, सुनीताबाई घायाल, सानिका घायाल, गजान

कृष्णन घायल। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा। बाजार भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ जैन, सौर्य जैन और शुभम जैन। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, दिव्यांश कुमार और बंसीलाल श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से आप हैं दिशा, रूही और लबी श्रीवास्तव। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, किरण, गीतू, निहारिका और वैनिश बत्ता। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

0: निकले आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: श्रोता सुमन का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राजपूत फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विकी नानू, रविंद्र सेन और खुशी और रौनक सेन। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या मल्होत्रा और बेबी सुच्चा पाठक। देवपेठ वासिम से आप हैं राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भवसार, राजू भवसार और प्रीति खंबायतकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आशिया खान, हृदया खान, अस्मा सालिया, सोएब खान, सायरा खान, पोतरा मुश्ताबा खान, पोतरी अफिया खान, रऊफ भाई, शहीद भाई। गांधी भवन अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इस गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। काके गांव से आप हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित और प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख। सिरोड से आप हैं कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी सवर्द देशमुख और उनके परिवार के सभी सदस्य। चारमीनार चौक गंडरी पंडिरा से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश कुमार मोटवानी। गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी। झूलेलाल चौक तिलदा से आप हैं हरीश कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दीदी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयदेव बीकर बीरक और मीका बीरक। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र वर्मा। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर पांधा। इसी गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी है ताजपुर महोबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली साकरा से आप है जयंत कुमार बैरागीली जी। सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म से कुमार शानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी।

श्रोता साथी डोंडी लोहारा संबलपुर से आप हैं, गौतम उर्वशा डामिन लकी डोमन लाल कोठारी अर्जुंदा बालो छत्तीसगढ़ से आप हैं, दिनेश यादव साधना यादव तुवे गोंदी मंचुआ से आप हैं, रिंकू रावेट आशिया रावेट और कांकेर से आप हैं नरसिंह थापा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से मध्य प्रदेश से आप हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। घंटाघर चौक खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमारी साहू, दरचूरा से ही ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। जिला उज्जैन बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्यासी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती संविता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुक टुक। आकाश हाइट्स बहादुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर और परी। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। ग्राम छिंदडीही पुजारी पारा जिला कोंडागांव से आप हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। केशकाल छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है सुनील यादव, शिवकुमार यादव, तनिष्का यादव, नौबत यादव। जिला मुंगेली गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं संतोष कुमार, सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे, भूषण, सोनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला दीदी। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। दरचूरा से ही आप हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। श्रीरामपुर भोकर से आप हैं हरुबाऊ बिड़वे, शुभांगी, पूजा, श्रवण, अनिकेत, अनीता बिड़वे। निवासा खुपटी से आप हैं चंद्रकला देवीदास और उनके परिवार के सदस्य। बेहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं डॉक्टर तिलक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, रामराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से आप हैं गजानन येली, नवदीप येली, शेरी वाडनेर अकोला से आप हैं रुद्रदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सिग्मा से आप हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सिन्नी, सन्नी और कोमल यादव। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लायलपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जयदेव ने और फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से आप हैं शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। जिला खंडवा से ही आप हैं छैगांव से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका और वैनिश बत्ता। महाराष्ट्र से आप हैं टेलर रामचंद्र, धोबीड़ा इंगोली, सिद्धांत इंगोली, टिंकू इंगोली, रमा बाई, सुरेंद्र इंगोली, मयूरी सुरभी, मंजूषा, गौतम इंगोली, नामदेवराव सिंधे पाटिल, मास्टर विलास सिंधे पाटिल, सुनील जबड़े। अशोकनगर वासमत हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। झुमरी तलिया से आप हैं छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले और महेंद्र चौरसिया। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललिता, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए राजा और रंग फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। कैदी मुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू रितु सिंह। धनबाड़ झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि। झांझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि आरती सिंह। पटना से भुवनेश्वर सिंह, मोनू और लीलू सिंह। मालूल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडुकार। और लक्षणपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। बालोद से इस गीत को सुनना चाहते हैं जितेंद्र दास मानिकपुरी, मीलू दास, जयदास, देवेश, धनवंतरी बाई, गोमती बाई, गणेश धाम, पिसूली खेरपा से। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद सादाब खत्री। बाजार पारा बेमितरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा। लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश का ये गाना और हरिप्रिया को दीजिए श्रोता सुमन कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: Afternoon trade today, the Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टर्न म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में

0: ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके पांच देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
4: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
5: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
4: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
6: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
7: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 में हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
9: दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा।

0: कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाए कलाकार दादा दीदी मन के, भाई बहन मन के और संगजौरिया संगवारी मन के, मैं तुम चो तारा करें से जुहार। और सपाए पीला मन के मचो बाटले खूबे खूबे माया और चुमा। कलाकार भाई बहन मन, पीला मन बल्लो ने मके मके गोटोक गोर सुरता इली। हुन आए के नानी पीला मन रसोत नहीं, उन मन के कितरो बानी बानी चो कपड़ा मन लागे से ने, कपड़ा बल्लो ने फिर पिंतो कपड़ा मन होली और ऊंचो कपड़ा मन होली, जैसन के सूटेर टोपी मोजा हाथे पिंतो बीती और पेंट ने, और कोनी कोनी बहिन मन फिर जो ऊन हो से ऊंचो जूता बल्ले बना सत नान नानी पीला मन चो ने आय कसन, तो बानी बानी चो जो सुंदर सुंदर लागे से हुन तीज मन बने से कपड़ा ले और ऊन ले आय कसन। असनी जोन बड़े लोग मन आसोत, उन मन काजे बले आनी बानी चो पीन तो ओढ़ तो तीज मन बने से कपड़ा ले और उन ले बले बने से ने। और एक सपाई लोग मन तो बनाउक लाए सिलुक लाए नहीं जान सोत ने, आमी सपाई तो नहीं जानू, कोनी कोनी सिल तो लोग मन आसोत कई एक जन, उन मन जान सोत। और ये जोन सिल तो बीती काम आए और ये बुनाई कढ़ाई कर तो बीती जोन काम आए, ए बले गोटोक हुनर हो से दादा दीदी मन ने। फिर असनी कढ़ाई बल तो बीती तीज होए से ताने, जेके बले हर कोनी नहीं जान सोत, कोनी कोनी लोग ची जान सोत, जे चोली सुंदर सुंदर बानी बानी चो जमक मन बने से। हुन बले बड़े लोग चो पीन तो काजी टोपी सूटेर मोजा और हाथे पीन तो बीती हुन दस्ताना बल सोत जे हुन बीती बने से। असनी उसनी नानी पीला मन काजे बले बने से हुनी ची बीती मन, और कढ़ाई करुन भाती बुनाई करुन भाती मन मन चतीज मन तो बना सोची। असनी फिर दखा उन ले बने से उनी घर ने चौखट मन ने टांग तो बीती सुंदर झालर मन ने मन मन चा डिजाइन चो बोलो वे कई सुंदर तीज मन जो नाय हुन बने से कपड़ा ले बले बने से और उन ले बले बने से। तो भाई बहिर मन, आमी बले चाहलो ने एक कला मन के सीख उकलाय सकू, सीख तो राय बल्लो ने फिर आमी कोनी दूसर लोग ले सीख उकलाय सकू, नहाले फिर जो नाम चो घरे जान तो लोग मना सोते हुनर के उन मन ले बले आमी सीख उकलाय सकू आय कसन। और नहीं तो फिर असन बले नहीं हो सके से तो मोबाइल फोन चो माध्यम ले बले आमी सीख उकलाय सकू कसन बल्ले, मोबाइल फोन ने कई लोग मन सीखवात ये सब तीज मन के काई बले कला हुनर के। और असनी कपड़ा सीख तो बीती, कपड़ा कसन सील तो राय, कसन कसन सीली होए दे काय काय डिजाइन मन चो कपड़ा सीली होए दे उन बीती मन केवल सीखवात, और कढ़ाई बुनाई कर तो बीती बले सब सीखवात मोबाइल फोन ने, तो आमी दखुन बाती उन बीती मन के सीख उकलाय सकू ने कितरो सुंदर। और दखा ए कला मन के जान लो ने बले अच्छा रहे से, ए कला मन के नहीं कोनी ची कला मन के जान लो ने बले खूब बड़े बात आए कलाकार भाई बहन मन। कसन बल्ले कला हुनर सो जे कला हुनर ची न वाय एक जान तोर बले आप लो आपने बड़े बात आए, कसन बल्लो ने हर कोनी तो जानुक लाए नहीं सकोत, कोनी कोनी कलाकार मनासोत जे मन जानुआत ने। और अस ये जो कला मनाए हुनर मनाए ए मन चो माध्यम ले आमी दुई पैसा कमोक लाए बले सकू है। आज चो समय ने दखा महांग चो समय आए, कहीं कहीं तीज मन ने कम पैसा लागे से तो कहीं कहीं तीज मन ने आगर पैसा लागे से, तो असनी कपड़ा लत्ता सिल तोर बले जो न रहे से सिल तो बीता मन ना हाले कुनी सिल तो बहिन मन सिल सोत, तो उन मन लगे आमी जाऊन कहीं बले सिलाऊ से बल्लो ने तो आम के उन चो मोल दे उकलाय लागे दे दाम दे उकलाय लागे दे ने। और उन मन हुन सिलाई हिसाब ले धर सोत, आप लो मेहनत आना बल्लो ने आप लो मेहनत कर लो मसागत कर लो जो काजे आम के देउक लाए पड़े दे पैसा, उन हुन हिसाब ले आम के देउक पड़ुआ है कपड़ा हिसाब ले, उन मन काय हिसाब ले सील ला सोत बना ला सोत हुन हिसाब ले देउक लाए पड़ुआ है। तो असन ने काय उन मन आप लो पाए ने ठिया आसोत और हुन हिसाब ले रोजी रोटी के पाव ला सोत और दुई पैसा कमा सोत बले ने। तो असनी भाई बहन, आम चो कला और जान लो हुनर आम के रोजी रोटी बले देवा है, आमी हुन चो माध्यम ले आप लो पाए ने ठिया बले होक ले सकू और दुई पैसा तो कमाऊ से ची ने, दुई पैसा तो कमाऊ से ची। और दखा कहे कसन कला हुनर मन आसे जेके अच्छा पहचान बले मिरली से ने, पहचान बले मिरली से और उन कला हुनर मन के आम चो जन जान तो कलाकार भाई बहन मनात आम चो देश और दुनिया ने बले दखाला सोत, जे चोले सपाए लोग मन जान सोत कि एक काय बल सोत ए कला के और एक कौन ठान चो आए और एक जान तो बीता एक कर तो बीता कलाकार कौन आए। तो तुम्ही बल्ले भाई बहन मन अगर सीख उकलाय चाहे सास तो बिल्कुल सीख उकलाय सकास, कसन बल्ले एबे चो समय ने काई बल चीज के सीख तोर जान तोर कठिन नहीं है, आमी कोनी न कोनी बाटले हुन बीती मन के सीख उकलाय सकू। तो ए तो रहे काय सुंदर नंगत नंगत गोठमन, अदाय और बले झाला बीती गोठमन आसे, ए गोठमन के बले सुनु उंचो पाचे फेरा में गोठियावा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
0: हाँ कलाकार भाई बहन मन, एबे आमी ये गाय सुंदर नगत नगत झाला मन के तो सुन लू ने और तखा अदाय समय होए से भेंट वार्ता कार्यक्रम बाटे जातुर। तो आज ये थाने भेंट हो सोत कलाकार भाई श्री दिलीप कुमार पांडे और एमन संगे भेंट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ। अले एमन काय काय गोट बात मन के गोठियाय सोत और ये कलाकार भाई काय काय गोट मन के सांग सोत। पहले एमन चो गोट बात मन के सुनुता उन चो पाचे के फेरा में गोठियावा।
7: निचट सुंदरे आ, आ, आ,
8: आ। गांवकारी भाई बहन मन, असन तो अपन मन जाना चाहिए कि आमचो आकाशवाणी केंद्र बले कई गीत मन सुन साथ हुनी गाऊ कलाकार आज आमता नीला से हेमंचो नाम है श्री दिलीप कुमार पांडे। तो दिलीप कुमार पांडे, सबले पहले मैं तुमसे पूछूं अभी कि ये जो संगीत कला ने आए बोलूबे तुमके कसन यू खोली कितलो बर कसन होली ये कला ने इलोर?
9: तो असन है, सबले पहले तो जितरो बले सुनतोर गांवकारी दादा दीदी मन के मोचो बाटले मैं जुहार करे से और जसन की तुम्हें मोके पूछलास कि ये संगीत कला ने कित बरख ले मोके ए बाटे एवतर होली बल्लो ने मैं नानी बेरा ले ये चो साधना करें से जब मैं हुनी 6-7 बरख चो रहे तो हुद्रो बेला ले काया है कि हुनी कुर्सी टेबल मन के घरे बले खूबे ठोकते पीटते रहे खूबे बजाते रहे। तो जितरो बोले हम चो दादा आया मन आई आजा मन वो सब बोलत कि ये लेका बड़े होन पक्का कहीं कलाकार अच्छा बने दे और उन्हीं जसन टेप बाजा उन्हें रिकॉर्ड बाजा ने बोले गीत सुन लो ने खूबे मैं हुंचो संगे संगे मतलब गाते रहे उन गीत मन के। तो शौक तो मौके उन नानी बेरा ले रहे।
8: तो दिलीप कुमार पांडे, ये तो तुम्हें अच्छा सांगलास की पीला बेरा ले ये तुम जो संगीत जो क्षेत्र ने आसे बोलोगे तो असन तुम्हें गाँवची आस मांतर बाजा हिसाब ने बोले काय काय असन बाजा मन के बजोक ले जानास?
9: कि बाजा हिसाब ने मैं सबले पहला हारमोनियम बजातर मैं सीख ले। तो हारमोनियम बले जाने बजातर, ढोलक बले बजाए से, बांसुरी बले बजाए से, हुनी माउथ आर्गन बल्सोत हुन मन के बोले मैं बजाए से और मोचो जोन मुख्य जोन कला है उन्हीं गातो कला है और संगीत जो माने गीत बोले मैं लिखे से और उनके कंपोज बोले करे से जसन हुन जो धुन बनातो और सब सफाए सुनतो लोग मन बोले जाने सोत कि मोचो कैसेट मन बोले निकरली से तो हुसन फांदा ने मैं आसे
8: आसा तो दिलीप कुमार पांडे तो अच्छा घोटा है मंत्र आज ही आम चो लगे बोले तुम चो पूरे हारमोनियम बोले आसे ढोलक बोले आसे बांसी बोले आसे तो सब ले पहल हम चो सुन तो लोग के हारमोनियम बाजा संगे कहीं गीत कम्युनिकेशन सुनाऊं दिया
9: बिल्कुल

0: चुनरी घेनुक हमें दोनों जावा हडेरी, हाँ चुनरी घेनुक हमें दोनों जावा हडेरी, चुनरी घेनुक हमें दोनों जावा हडेरी।
1: हाँ तो दिलीप कुमार ये तो अच्छा गीत गाउन बाती सुना लास मन तर ये सांगा जैसन कि तुम जो लगाओ तो ये क्षेत्र ने पिला बेरा लासे मन तर आगे बढ़ा तो काजे तुमके कहीं असन गुरु धरु पढ़ ली
0: असन है कि शुरू शुरू ने मैं खूबे भटक ले गुरु काजे काय काजे बल्ले आज ले हुन 30 बरस पहला जो गोट है जगदलपुर उतरो मतलब डेवलप नहीं रहे तो बहुत खूब मुश्किल होली मौके गुरु डगरा तो काजे। फिर जब मैं शास्त्रीय संगीत चो अध्ययन कर ले तो बिलासपुर ने जाऊन मैं संगीत सीख ले, संगीत चो जो परीक्षा है डिप्लोमा परीक्षा बोल सो शास्त्रीय संगीत चो उन्हीं बिलासपुर ने मैं परीक्षा दी ले और जगदलपुर ने ये जो रेडियो सुनन सुनन मैं यथा चो हल्बी गाना मन के खूबे सुनते रहे और मौके खूब रेडियो ले बोले प्रेरणा मिरली।
1: ये तो अच्छा गुट के सांगलास की तुम शास्त्रीय संगीत जोन जौन बती सुकुन बती लास तो वाले तुम चो जोन सीख लो जोन ज्ञान है हम चो सुन तो लोग केवल खिंडी कसन सुनाऊं दिया।
0: तो शास्त्रीय संगीत चो असन है कि मैं गोटोक राग सुनाए से और मैं जोन राग एबे सुनाए दे ये राग के लगभग सफाई लोग जानो बहुत सरल राग है। ये राग चो नाम है यमन

0: देना।
1: हाँ तो देखा दिलीप कुमार पांडे ये बोलखिनी कसन गौन भाती सुना लास मांतर बोलुआत कि कोनी आदमी के अच्छा बाटे जन बढ़तो बेरा है कितली असन अटकनी मनी हुआ है समस्या मनी हुआ है आगे बढ़तो काजे तो असन कहीं तुम चो घटना।
0: अब ये संगीत चो क्षेत्र असन है कि मेहनत मसागत तो खूबे करू पड़ू है। असन बात नो है कि आपने आपने सब मीरो बल्लो ने नी होए तो मौके बले उसने पीला बेरा ले करुक पढ़ लिया और मैं बले करते रहे। तो धीरे धीरे धीरे सब रास्ता मने अपने अपने खुलते चले जाऊंगे।
1: तो ये तो अच्छा गुट के सांगला समांतर तुम्हें बाउंसिंग बोले हाथे धरला सास तो वाले कोनी बोले पाड़ के बाउंसिंग बोले फुकुन बाती सुना दिया
0: तो मैं गोटोक लोक धुन सुनाए से।
1: हाँ

0: तो पांडे जी देखाय बांसी बाजा पहले तुम सीखून दिलास मंत्र इतलो कला तुम चलगे आसे बोलुबे तो ये चो अभ्यास बोल तो जरूरी आए तो दिन ने तुम कसन कसन समय ने कितलो समय ये अभ्यास कर सा
1: ऐसा ना है कि मैं पीला बेरा ले संगीत चो शिक्षा संगे संगे मोचो पढ़ाई बले होली से तो स्कूल बले जातो रहे फिर उनचो पाछे कॉलेज तक बले मोचो पढ़ाई होली और फिर धीरे धीरे नौकरी चाकरी बाटे फिर परिवार चो फांदा ये बले भीड़ ली।
0: हाँ।
1: तो मतलब होनी है जसन फुर्सत मिललो ने राती बेरा सब काम ले निपटलो पाछे खिंडिक अभ्यास बले जरूरी है। तो ज्यादा अभ्यास तो ज्यादा टाइम तो मैं देख नहीं सके लेकिन फिर बले दिन में कम से कम आधा घंटा एक घंटा तो अभ्यास कर तो बहुत जरूरी है।
0: अच्छा तो ये तो कहा है कि तुम ही तो बजाए सास गाए सास सिखाए सास तो असन बल्ले कहा है कि तुमसे जो सीख लो जो कला है
1: हाँ।
0: उनके बचा तो कहा तुम असन को नहीं सिखा तो वाट नहीं कि कहीं चेला असन बना ला सा।
1: हाँ उनके बचा तो का जे ऐसा है कि मैं सिखाए से मुझे चेला मन आसोत ढोलक ने बोले आसोत चेला मन बांसुरी ने बोले चेला मन आसोत और हुनी शास्त्रीय संगीत ने बोले चेला मन आसोत आज ही हुन मन संगीत चो विद्यालय चलासोत और दूसर लोक मन के सिखासोत

0: तो ये तो परंपरा के मतलब जिंदा रखते और बहुत जरूरी है।
1: हाँ, तो दिलीप पांडे तो अच्छा गुट के सांगलास मंत्र तुम चो लगे ढोलक बजा से, तो ये ढोलक चो जो कला है बोलू भी
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: बोल कहीं गीत ने गाउन सुना ना लसनी बोल सुना हम चो सुनते लोग
0: अच्छा, ढोलक असनी बजावन सुना है सर।
1: हाल है।

0: और ये तो मतलब लाइट जो संगीत बोलसो ये होली
1: हाँ
0: जसन लोक ने जसन लोक धुन लोक पाड़ बजातोर होले कसन है ढोलक।
1: हाँ

0: तू ये तो अच्छा ढोलक बेल भजन बस सुनालास और तुमचो इतलो जन गावतो कला बजातो कला ये सब के सांगलास और तुमचो कई कसन सिखालो चेला मन बलासत मंतर तेबले बले ये जोन संगीत कला है बोलू बे आमचो बस्तर चो लोक कला है बोलू बे एके बचातो काजे एके संगातो काजे तुमचो बाटले आमचो कलाकार भाई मन के कहीं बोलू।
1: हाँ मोचो बाटले में हम जो कलाकार भाई मन के सागे से आजकल का है कि रिमिक्स जो जमाना इली से तुमन मन बोले सब सुना साहस की जो गीत मन ने उन वेस्टर्न संगीत के बिल्कुल ढाए ढाए ढाए सब मिसाउन आजकल गाना चले से तो ठीक है जमाना जसन बदले से उन जो संगे संगे आम के बोले उन जो संगे चलतो रहे लेकिन आप लोग जो जुना संस्कृति आसे जो पुराना संस्कृति हुनके भूलक तर नो है और हुनचो रक्षा अगर आमे नी कर ले दूसर कौन फिर करे दे है कि नहीं।
0: हाँ।
1: तो जसन आमन मन बोले आजिकल गीत मन जसन बनाऊ से कैसेट ने बोले आमचो दादा दीदी मन बोले सुनसोत तो का है कि जो हुनचो मूल जो धुन आसे हुन तो हुनीचे रहे से बीच ने जो आमे संगीत देव से हुन संगीत ने थोड़े से पाश्चात टाइप चो भले थोड़े मिसाउन उनके संगीत आमे देव से लेकिन उन जो मूल संस्कृति के आमे हुसने बिल्कुल यथावत हुन रहे से और उनके आम के बचा तो रहे काय काजे बल्ले हम चो ये तो जो पीढ़ी आसे हुन मन हम के पूछ दे कि हम चो 100 साल पुराना जो संस्कृति रहे या और जूना संस्कृति रहे हुन कहाँ गेले तो हमें हुन मन के काय जवाब देवा है कि नहीं।
0: हाँ
1: तो हुनके बचा तो बहुत जरूरी है।
0: तो दिलीप कुमार पांडे तुम इतलो अच्छा बोले ने तुम छो जो कला के आए बोल सांगलास मंतर जाते जाते आम चुके बस्तर जो पारंपरिक गीत के सुनाते आले
1: राने जावा राने।

0: हाँ, तो कलाकार भाई बहिन मन, एबे आमे कितरो सुंदर ए गीत के सुनलु ने, और ए गीत भीतरे जोन भगवान कृष्ण जो जन्म आए उन चो के सांग तेरा लगा उन भाती उन गोट मन के। तो ये मधुरा मरुन मन जो संगवारी मन चो गावलो गीत तो रहे, मानतर अदाय और फिर गोटोक झाला आसे एके सुनुता।
1: इत बदले मत्तां अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दुर्कना दुमिद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दुर्किता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
0: ये काय सुंदर झाला के तो सुन लो, मानतर दखा अदाय मचो जातो समय होए से, मैं असनी तुम तो संगे फिर के भई भेट होकला आइंदे, अलविदा धरे से। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाई कलाकार दादा दीदी मन के, भाई बहिन मन के, संगजौरिया संगवारी मन के, जातो पूरे मैं तुम चो तारा करे से जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:30 और 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। एफएम पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में आज शाम 5:10 पर। आज शाम 6:35 पर पार्वती और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत कार्यक्रम बस्तर के स्वर आज शाम 7 बजे। आज शाम 7:21 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम शिक्षकों के लिए आज रात 8 बजे। विषय है बालिका शिक्षा, वार्ताकार संगीता कश्यप। आज रात 8:30 पर सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जे गोठ। प्रस्तुति होगी अनीता निर्मल की। कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से आज रात 9:15 पर। आज रात 9:30 पर होगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आज रात 10 बजे भीमा देव पाड़ और कासन पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। कल सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा पद्माक्षी अवस्थी का। श्रीरामचरितमानस का गायन सुबह 6:25 पर। स्वर होगा भूपेंद्र सिंह और ए हरिहरण का संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:05 पर कृषि श्यामी की बेड़ा खड़ा चो गोठ। कार्यक्रम होलली में सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे उलट भैरम पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे स्वास्थ्य की बातों में पैथोलॉजी टेस्ट संबंधी सावधानियां विषय पर डॉक्टर रजनी खत्री से दिनेश नामदेव की भेंट वार्ता। साथ होगा हल्बी समाचार बुलेटिन और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुनिएगा कार्यक्रम लोकमंजरी में कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कार्यक्रम एक ही फिल्म से कल सुबह 9:30 पर। फिल्म होगी आशिकी। कल सुबह 10 बजे कार्यक्रम गुलशन में आप सुनेंगे शीर्षक फिल्मी गीत। शीर्षक होगा चूड़ी। कार्यक्रम गुरुदुम में सुबह 10:30 पर जलधर और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। कल सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार। कलाकार होंगे पार्श्व गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता दिलजीत दोसांझ। विभिन्न प्रदेश के लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस कल सुबह 11:30 पर। कल दोपहर 12 बजे कार्यक्रम झुमझुमा में आप सुनेंगे मेघनाथ पटनायक और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम कला और कलाकार कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। गोंडी समाचार बुलेटिन कल शाम 6:30 पर। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव कल शाम 7:21 पर। कल रात 8 बजे कार्यक्रम कूड़े फूल में सुनिएगा मेरी राम बघेल और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ कल रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी माधुरी यादव की। कल रात 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। शासकीय योजनाओं की जानकारी का कार्यक्रम ओवाट में कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे जैविक खेती मिशन योजना के विषय में। प्रस्तुति होगी दीपिका ठाकुर की। कल रात 10 बजे कार्यक्रम परिचर्चा में सुनिएगा ग्राम विकास संगठन की पारंपरिक व्यवस्था विषय पर श्री मंधर रामनाग से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: देखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: गेजानोड़ी समसामयिक माटाकिन कार्यक्रम तसंगे नन्न अभिलेश कुमार गेजानोड़ी नेंतर मनवदी कार्यक्रम बस्तार संभाग तक आयन बैंक सुविधा पेड़ माटाकिन पोर्रो मिंदे छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका मुन्ने माओवाद तिप्पाल संचार और बुनियादी जरूरत किन संगे जूझोर मत अत 2.5 साल ते इत संभाग तक 31 पूना बैंक खुले मत तक मानेर नरगे बदलाव इंजे तोपम बेचुट बस्तर तक बैंकिंग सुविधा नकाय इल्व मत्ता नकदी आधारित अर्थव्यवस्था वित्तीय व्यवस्था नकाय सीमित मत्ता नरगे तोरको नाटेनोरकु सुडला सुडला बैंकिंग बैंक तक बूता किन ले जिला मुख्यालय तीना नकाय जुई दायन दासवर मत्ता और समय वेण बर्बादासवर मत्ता मती इंजे नाटेनग ब्लॉक स्तर तक बैंक सेवा एक समय वेण बचे मायमता संसाधन वेण बचे मायमता और वित्तीय व्यवस्था तक जुड़ा वेण पेड़ता बस्तर संभाग तक नाक नग बैंक शाखा खुले मत्ता वित्तीय संस्था पेड़ता दोन क्षेत्र नग बेचूट मूलभूत सेवा एवदन नकाय तिपलासोर मत्ता नेण अग आधुनिक बैंक सेवा एवदमता तर्रेम जगरगुंडा चिंतलनार किस्टाराम पामेड़ समलवार और कोकामेटा लेकोट नाकनगा बैंक खुले मत्ता विश्वास विकास नकाय पेड़ता बैंकिंग तर नेटवर्क पेड़ता आदिवासी कुटमतोर सरकारी उवाटकिन लाभांवन दुर्कमता प्रधानमंत्री जनधन योजना किसान सम्मान निधि तेंदुपत्ता बोनस वंधन योजना सामाजिक सुरक्षा और वेण उवाटकिन पैसा सीधा डीबीटी माध्यम से बैंक खाता नगा एवदमता हगान मुत्तेना स्वसहायता समूह नगवेन बैंकिंग तक बैंक तक सुविधा दुर्कमता बैंक खुले मत्तांक सुडला व्यापारी लोर किसान और लेयोर किन वित्तीय सहायता न कैनला दुर्कमता अगन नाटेन क्षेत्र नगा नकदी पैसा आधारित व्यवस्था वेन डिजिटल लेन देन वेन पेड़ता यूपीआई मोबाइल बैंकिंग माइक्रो एटीएम लेकुटा जरूरी सुविधा वेन नाटेनगता बस्तर तक बैंकिंग नेटवर्क दुर्सत्ता लेयोर किन लय और खुद तक रोजगार किन लय और उद्यमिता तद मौका बन पड़ता बैंक कर्जा वित्तीय सहायता दुर्कता किंजे लेयोर किन कृषि आधारित उद्योग लघु व्यवसाय सेवा क्षेत्र और पुनः बूता किया और मन किया तो नाटेन क्षेत्र नगर ग्राहक सेवा केंद्र बैंक मित्र और डिजिटल बैंकिंग सेवा का माध्यम से नाटेन और लेयोर अग कली बूता किया तो बस्तर संभाग तग बस्तर तग इद बैंक तक सुविधा इद टोपिकियम तक इंजित क्षेत्र अच्छा सुरक्षा तक हिसाब से आइयो बल्कि विकास नकनला किया था सड़क शिक्षा स्वास्थ्य बिजली मोबाइल नेटवर्क और बैंक लिपटाव सुविधा पेड़तांक नक्सल मुक्त बस्तर इंजे आत्मनिर्भरता और समग्र विकास का अर्थे नकायनल मुन्ने पड़ता नाटेनग एवदा नीव बैंक सुविधा इद संदेश तक इंजे विकास आखिर माने एवदमता नक्सल मुक्त बस्तर दुर्सायमता बैंकिंग नेटवर्क वायान समय ते क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सामाजिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता किन बढ़िय ताकत बने मायान दायमता विष्णुदेव सायनद सरकार गठन पेर के अत्ता 2.5 वर्ष लोपते बस्तर संभाग तक बैंक सुविधा नकाय पेड़सी बूता कियमता जुई जुई मंदान क्षेत्र नगा बैंक सेवा एवता किंजे बस्तर विकास मुख्य धारा ते जोड़े मास मुन्ने पेड़सामता ईद पूना बस्तर मुन्ने बंदूक तक टुपाई तक लेंग वासोड़ मत्ता इंजे अगा विकास विश्वास और समृद्धि तक लेंग केंद्रना आयाम।
0: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का अपना

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका रेडियो साथी विक्रम नाग।
1: और मैं हूं इंदु कश्यप। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे।
0: तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का विषय है अकेलापन।
1: अकेलापन जो भीड़ में होकर भी अपनों की कमी का महसूस कराना, खालीपन का महसूस कराना है। ये एक मानसिक व भावनात्मक स्थिति है जो उदासी और अपनों से जुड़ाव ना होने के कारण पैदा होती है, भले ही आपके आसपास लोग हों या ना हों। क्या बात है विक्रम, बहुत दिनों से देख रही हूं तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है क्या?
0: हाँ, काम तो है ही इंदु, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑफिस में 100 लोगों के बीच रहने के बाद भी घर लौटते समय लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
1: अकेला क्यों, मैं नहीं हूं क्या?
0: हाँ हो। नहीं इंदु, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब परिवार से नहीं है, यह मन की एक अजीब सा हालत है। लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, या शायद मैं खुद को नहीं समझ रहा। भीड़ में होकर भी अलग अलग महसूस करता हूँ।
1: इसे ही तो अकेलापन कहते हैं विक्रम। ये कोई शारीरिक दूरी नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी है।
0: शायद कभी कभी लगता है इस बड़े शहर में, इस बड़ी कंपनी में मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, बस एक रोबोट की तरह काम कर रहा हूँ।
1: अच्छा एक बात बताओ विक्रम,
0: जब
1: तुम अपने लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर अपने पसंदीदा फिल्में देखते हो तब भी तुम्हें यही लगता है?
0: नहीं, तब नहीं, तब तो मैं बहुत खुश रहता हूँ।
1: बस यही तो अंतर है, जब हम खुद के साथ खुश होते हैं तो उसे एकांत कहते हैं, और जब खुद से हम दुखी होते हैं तो उसे हम अकेलापन कहते हैं।
0: तुम सही कह रही हो इंदु, लेकिन आज के भागदौड़ में मुझे लगता है कि मैं एकांत का आनंद लेना चाहता हूँ, लेना ही भूल गया हूँ। हमेशा बाहरी दुनिया, सोशल मीडिया और काम का दबाव।
1: बिल्कुल, आजकल हम तकनीकों से तो जुड़ गए हैं लेकिन इंसानों से दूर हो गए हैं। लोग फेसबुक पे हजारों दोस्त तो बनाए रखते हैं लेकिन सच तो ये है जब बात करने की जरूरत होती है तब कोई भी हमारे साथ नहीं होता।
0: वही तो इंदु, ऑफिस में सब साथ हैं लेकिन सब अपनी अपनी दौड़ में भी लगी हैं। किसी के पास किसी दूसरे की बात सुनने का समय नहीं है। यह अकेलापन का बोझ अक्सर मुझे रात को सोने नहीं देता है।
1: दोस्तों मुझे लगता है कि हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। अगर हम अपने भीतर ही खुश रहना सीख लें तो अकेलापन गायब हो जाएगा।
0: परंतु यह इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ पर फिर वही खालीपन।
1: देखो मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है जब हमारे घर के बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो घर पूरा खाली हो जाता है, और मैंने इसे एक अवसर के रूप में मान लिया है।
0: अवसर

0: ह्यूमन विन समझना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए और खुद को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए।
1: तो क्या मुझे योग या एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए?
0: हाँ जरूर, व्यायाम से मूड बेहतर होता है। और फोन को कुछ देर के लिए जो है अपने से दूर रख दीजिए, ताकि आप अपनों से, अपने परिवार वालों से और दोस्तों से काफी टाइम बिता सके और उनके साथ बैठ के बात कर सके। इससे क्या है, आपके मानसिक स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: इंदु, आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हल्का महसूस हो रहा है। इंदु, मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ।
0: हाँ, ये एक सामान्य सी समस्या है विक्रम। ये उम्र के, जीवन के किसी भी पड़ाव में आ सकती है, बस इसे क्या है, खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए।
1: तुम सही कह रही हो, मुझे अपने जीवन में संतुलन, बैलेंस की जरूरत है। काम और नतीजे जीवन के बीच, निजी जीवन के बीच।
0: और हाँ, जब भी ऐसा महसूस होता है तो चुप मत रहो, अपने दोस्तों से या परिवार वालों से बातें करो, साझा करो। साझा करने से अकेलापन कम होता है।
1: बिल्कुल सही, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा और हाँ, अपनी पुरानी किताब की अलमारी को भी साफ करूंगा।
0: और वीकेंड में एक बार सब दोस्त मिलकर जो है बाहर जाएं, अपनों से वक्त बिताएं और लैपटॉप और फोन लेकर ना जाएं।
1: शुक्रिया इंदु, तुमने मुझे समझा। अकेले रहने का ये मतलब नहीं है, ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मैं अपने साथ हूँ और यह काफी है।
0: जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपके मन मन की बात को छुपाकर ना रखें। इससे अपने दोस्तों को या परिवार वालों को शेयर करें। शेयर करने से जो है हमारा मन का बोझ कम होता है और मन में शांति होती है।
1: दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानिए हैं कि क्या है खास।
0: वैसे विक्रम, आज की शाम तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की शाम हम सुनेंगे हमारे श्रोताओं के मनपसंद गाने।
1: अरे हाँ, आज तो हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंदीदा गीतों की फरमाइश की है।
0: हाँ, हम अपने श्रोताओं की उनकी फरमाइशें गीते तो सुनवाएंगे जरूर, लेकिन साथ ही सुनेंगे सामान्य ज्ञान की बातें और वार्ता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: तो चलिए दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत।
1: तो दोस्तों, आज की हमारी पहली फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपिका कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। बाजार पारा बेमित्रा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। मुंहपो बोरका धरणता मालेगांव, दत्ता गायका, सुनीता बाई गायक, सानिका गायक, गजानन गायक,

इन्होंने फरमाइश की है फिल्म विवाह का ये गीत, जिसे लिखा है रविंद्र जैन ने और आवाज़ दिया है उदित नारायण। श्रेया घोषाल ने इस गीत को संगीत से पिरोया है रविंद्र जैन। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, कुछ पलों के लिए हम आपको लेके चलते हैं ज्ञान के सागर में, जहां आप सुनेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़ी बातें।
3: इंदु, एक बात बोलूं?
2: हाँ।
3: सामान्य ज्ञान पर एक गेम खेलें?
2: हाँ जरूर, लेकिन विक्रम, मुझे ना इतिहास और भूगोल थोड़ी कठिन लगती है।
3: अरे नहीं इंदु, ये तो बहुत आसान है, बस इन्हें छोटी बातों में याद रखो। तो गेम स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुम आंसर दो।
2: हाँ।
3: सबसे बड़ा महाद्वीप?
2: एशिया महाद्वीप।
3: भारत की राजधानी?
2: नई दिल्ली।
3: भारत के पहले प्रधानमंत्री?
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
3: भारत को आजादी कब मिली?
2: 1947 को।
3: भारत का राष्ट्रीय खेल?
2: हॉकी। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान में बस इतना ही, और अब सुनेंगे हमारे श्रोताओं की अगली फरमाइशी गीत। इसके फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पहरा हरिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति छाया बंदोर। दतरंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर कुमार साहू की। बिलाई से खुशी सुशील जैन, कल्पना जैन, शौर्य जैन, सौरभ जैन, शुभम जैन की। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म तेरे नाम का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक की जोड़ी ने। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, अब हम आपको सुनाएंगे वार्ता विषय, देश के विकास में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार है श्रेया यादव। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं वार्ता।

0: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

Listen up, yo. It's Valentine's Day. Groove.

0: दोस्तों, अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो थी फिल्म भागवान का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने और अपनी मधुर आवाज दिया है अमिताभ भट्टाचार्य, अलका याग्निक, हेमा सिरदेसाई और आदेश ने। और इसके फरमाइश करता है झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि, बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि आरती सिंह, मध्य प्रदेश कंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल की।
1: दोस्तों, अब हम आपको सुनवाएंगे वार्ता। विषय होगा देश के विकास में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं श्रेया यादव। तो दोस्तों, चलते हैं वार्ता की ओर।
2: युवा हमारे देश का वर्तमान और भविष्य है। मानव जाति की विभिन्न अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था युवा अवस्था है। इस अवस्था में ताजे रक्त का संचार होता है। युवा शक्तिशाली, बलवान तथा निडर होता है। इसी अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र लालसा होती है। ज्ञान प्राप्त करके युवा का चिंतन, मनन करने की क्षमता का विकास होता है। इस समय युवा ज्ञान विज्ञान, संगीत, नृत्य, वाद विवाद आदि की जानकारी प्राप्त करता है। यही कारण है कि वह देश के विकास का आकांक्षी होता है। किसी भी देश के विकास का दारोमदार उसकी युवा शक्ति पर आधारित होता है। युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस देश की युवा शक्ति जितनी प्रशिक्षित, संगठित और द्वेष भावना से मुक्त होगी, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। देश के विकास के लिए युवा वर्ग का योगदान देश के सभी क्षेत्रों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सहायक बिंदु बहुत से होते हैं, परंतु उनमें से एक पृथक बिंदु युवा ही निकल कर आता है, जो अपने ओजपूर्ण स्वभाव से देश के विकास एवं हर क्षेत्र में सक्रियता दिखाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम शक्ति युवाओं में प्रचुर मात्रा में होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी देश का विकास उस देश के युवाओं पर ही हमेशा से निर्भर रहा है। हम यह कह सकते हैं कि युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है। आज के युवा अपनी शिक्षा के हर कार्य को आसानी से करने में सक्षम हैं। आज हमारे देश में प्रशिक्षित युवाओं की बहुतायत है। वे देश ही नहीं, विदेश में भी बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति उसके उद्योग, सैन्य परिवहन, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, संचार व्यवस्था तथा अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास पर निर्भर होती है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाएं आवश्यक होती है। इनमें से हर क्षेत्र में प्रशिक्षित युवक युवतियां अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। कई शिक्षित युवा ऐसे भी हैं जो अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहते, किंतु रोजगार के लिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए तैयार हैं। इसलिए युवा वर्ग स्वनिर्मित वस्तुओं का निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत में ही वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगार युवा भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और देश की आर्थिक बचत भी होगी। आज के अधिकांश युवा शिक्षित हैं, जो अपनी शिक्षा बल बुद्धि के बल पर देश की उन्नति करने में समर्थ हैं। प्रत्येक राष्ट्र की तरक्की का आधार उसकी युवा पीढ़ी होती है, जिसकी उपलब्धियों से ही उस राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। ऐसा इसलिए कि युवा ही सर्वोच्च भूमिका का निर्माण करते हैं। युवाओं में समाज का वह क्षेत्र शामिल होता है जो विकास को परिलक्षित करता है और एक राष्ट्र के लिए भाग्य का निर्माता होता है। युवा में कार्य करने की अपार क्षमता होती है और प्रत्येक युवा उत्साह से भरा होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर वह हमेशा अग्रसर होता है। राष्ट्र की सर्वांगीण विकास और भविष्य वहां रहने वाले नागरिकों की शक्ति और क्षमता पर निर्भर होता है। इसमें प्रमुख रूप से योगदान उस देश के युवाओं का होता है। जब युवा अपने प्रयासों के साथ अपनी पूर्ण क्षमता के साथ यही काम करता है तो उसकी गणना की जाती है। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है जिन्हें यदि सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए और वे अपना योगदान सही दिशा में दें तो भारत देश संपूर्ण विश्व में उच्च कोटि का बन जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह पता चलता है कि हमारे देश के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान दिलाने में युवाओं की भागीदारी और सक्रियता प्रमुख रूप से हो रही है। समाज में व्याप्त कई समस्याएं पर कार्य करके युवा दूसरे के लिए आदर्श बन सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान युवा सकारात्मकता से हल करना जानता है। इतिहास में युवाओं की शक्ति का प्रभाव देखा गया है। जिस कार्य में युवा अपना सक्रिय योगदान देते हैं उस कार्य में विजय हमेशा होती है। उदाहरण के तौर पर भारत की आज़ादी में अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया और कई युवाओं ने बलिदान तक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश ब्रिटिश सरकार को भगाने में कामयाब हुआ। इस प्रकार युवाओं ने अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए। युवा अपने तन और मन समर्पण की भावना से हर कार्य संभव करते हैं। भारत की युवा शक्ति, आंखों में वैभव के सपने, मन में तूफान सी गति हो, ऐसे ही हृदय में उठते हुए ज्वार, परिवर्तन की ललक, अदम्य साहस, स्पष्ट संकल्प का नाम है युवावस्था। दुनिया की कोई भी आंदोलन, दुनिया की कोई भी विचारधारा युवा शक्ति के बिना सशक्त नहीं बन सकते हैं। वास्तव में वह युवा शक्ति ही है जिसके दम पर किसी निर्माण या विध्वंस की नींव रखी जा सकती है। विश्व में भारत अधिक युवा आबादी वाला देश है। विशाल भारत के समग्र समावेशी विकास के लिए कामकाजी व्यक्तियों के लिए विशाल जनसंख्या की आवश्यकता होगी। अतः भारत को एक युवा राष्ट्र कहा जा सकता है। यदि एक ओर देश की युवा शक्ति देश व विदेश में अपनी भारत माता का परचम लहराने में अपनी भूमिका अदा कर रही है तो दूसरी ओर अनेक विघटनकारी विसंगत गतिविधियों में अशिक्षित युवाओं की तुलना में शिक्षित युवाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। कितने ही ऐसे युवा हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत की धाक जमाई है। युवा उस परमाणु शक्ति की तरह है जिसका सकारात्मक उपयोग होने पर अनुकूल ऊर्जा प्रकट होगी। आज दुनिया में कोई संगठन हो या कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो इसी सिद्धांत के बल पर। यदि कोई प्रण कर ले कि मुझे दुनिया में जितना मिला है उससे अधिक वापस करूँगा तो वह दुनिया के हर लक्ष्य को पा सकता है। विश्व स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत के युवा आज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए मेरुदंड सिद्ध हो रहे हैं। आज दुनिया की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, चाहे विश्व भौगोलिक प्रतिस्पर्धा हो, विश्व गणितीय प्रतिस्पर्धा हो, ITI, सेवा, खेल, लगभग हर क्षेत्र में भारत का युवा अपना प्रभाव दिखा रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों व समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत आज आर्थिक व सामाजिक रूप में महाशक्ति बनता जा रहा है और यह युवाओं के अथक प्रयासों से ही संभव हो पा रहा है। भारत वास्तविक अर्थों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे यकीन है कि इस देश को हम तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुनिया का बेहतरीन देश बना सकते हैं। भारत देश की युवाओं में जबरदस्त संभावनाएं हैं, ऊर्जा है और बहुत कुछ कर गुजरने की भावना भी। हमें एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जो विश्व में सर्वोपरि हो। हमारे देश के युवा भारतवर्ष को उन्नत व विकसित देशों की कतार में लाने के लिए अपना कीमती योगदान दे रहे हैं, ताकि हमारा देश विश्व में अपनी अनुपम व अमिट पहचान बना सके। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था देश के विकास में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार थी श्रेया यादव।
1: तो दोस्तों, हमारा अगला गीत है फिल्म एतराज का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक की जोड़ी ने, और इस गीत की फरमाइश करता है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रज्जक, के आर शाहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदित्य शिवानी और मीना राजू श्रीमाली, चांदनी चौक गड़ई पंड्रिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, घटागर चौक गढ़वा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल शाम फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए कंपेयर साथी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, मुझे इंदु कश्यप को
1: और मुझे विक्रम नाग को।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिप्पे टेरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम के कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाये। तेल कंपनी डहल ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करेगे है। और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा गरेर के संग थोर बहुत वर्षा होने की संभावना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाही। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया ले गोट बात कर श्री शाह कहन कि सरकार के लक्ष्य है कि बछर 2031 तक बस्तर के लोगन मन के आमदनी है 6 गुना तक बढ़ जाही। ओमन कहन कि बस्तर ला नक्सल मुक्त बनाए के बाद केंद्र और राज्य सरकार है मिलके अवैया 5 साल भर एखर विकास ले जुड़े एक ठन वैज्ञानिक रोड मैप तैयार करे है जेखर ले बस्तर संभाग में बनाए गए सुरक्षा बल के करीबन 200 शिविर मल्ले 70 ठन कैंप मल्ला शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा में बदले जाही। ये सेवा डेरा के माध्यम ले स्थानीय लोगन मल्ला शासन के जम्मो योजना मन के फायदा पहुंचाए जाही जेमा बैंकिंग कौशल प्रशिक्षण स्कूल आंगनबाड़ी वन उपज प्रसंस्करण शामिल है। एकर अलावा बस्तर के हर आदिवासी परिवार ला एक एक ठन गाय और भैंस दे जाही। औ अवैया 6 महीना के भीतर यह सहकारी डेयरी के एक ठन बहुत बड़े नेटवर्क तैयार करे जाही। ए काम पर छत्तीसगढ़ सरकार हा राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के संग अनुबंध कर ले है। केंद्रीय गृह मंत्री है यूगिन की सरकार है बस्तर के लोगन मन के सुरक्षा के संगे संग ओखर विकास पर घलो प्रयास करी। श्री शाह कहन की हिंसा है कोनो भी समस्या के समाधान नहीं है और हिंसा ले आज तक काखरो विकास नहीं हो है। ओमन कहन की अवैया 5 साल के दौरान केंद्र और राज्य सरकार है मिलके बस्तर के लोगन मन तक सरकार के जम्मो सुविधा पहुंचाई और यह दुनिया में विकास के एक ठन लोकतांत्रिक मॉडल बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर में रखे गए मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठक की अगुवाई करें। ये बैठक में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संगे संग केंद्रीय गृह सचिव इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और ये चारों राज्य के पुलिस महानिदेशक के अलावा पुलिस और प्रशासन के बड़का अधिकारी मन शामिल हुए। तेल कंपनी डहल ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करे गए है। तेल कंपनी के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान हा आकाशवाणी समाचार ला बतेन कि पेट्रोल के कीमत में 90 पैसा और डीजल के कीमत में 96 पैसा प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे गए है। राज्य सरकार है कहने की प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं है एखर ले लोगन मल्ला घबराए के कोनो बात नहीं है। सरकार के मुताबिक राज्य में अभी 3,88,00,000 लीटर ले ज्यादा पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल हवे। खाद्य विभाग डहर ले जम्मो तेल कंपनी मन के संग समीक्षा बैठक रखे गिस। ए दौरान कहन की जौन जौन पेट्रोल पंप में स्टॉक कमती है वहां प्राथमिकता के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के आपूर्ति करे जाए। प्रदेश में कुल 2,516 ठन पेट्रोल पंप हवे। पाछू कुछ दिन में मांग बढ़े के सेती पेट्रोल के खरीदी में 47% और डीजल के खरीदी में 22% के बढ़ोतरी दर्ज करे गए है। सरकार है लोगन मल्ले अपील करे है कि कोनो भी प्रकार के अफवाह में मत आवे और ज्यादा पेट्रोल ला स्टॉक में झर रखे। राजधानी रायपुर के लोक भवन में हिमाचल प्रदेश गुजरात सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पारंपरिक उत्साह और उमंग के संग मनाये गिस। राज्यपाल रमेन डेकाला एक कार्यक्रम के माई पहुना बनाये गये रहीस। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के रखे गये कार्यक्रम में राज्य के प्रतिनिधि मन घलो शामिल हुईन। राज्यपाल है जम्मू के राज्य के लोगन मल्ला बधाई और शुभकामना दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन हा आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़बो बाँचे समाचार कोती। प्रदेश में जनजाति समुदाय मन तक सरकारी योजना मल्ला बताए खातिर कालीले जन भागीदारी सबले दूर सबले पहले अभियान शुरू करे गए है। जनजाति गरिमा उत्सव के तहत ये अभियान ला 25 मई तक चलाया जाए। अभियान के तहत जनजाति क्षेत्र मन में ज्यादा ले ज्यादा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। ये दौरान सेवा केंद्र

0: वापस ले में इनकार कर दिन। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के अध्यक्षता वाले पीठ नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करे के मांग वाला याचिका ला खारिज कर दिन और अधिकारी मल्ला ऐसन कुकुर मल्ला आश्रय जगह में रखे के निर्देश दिन। पीठ चेतावनी दे कि निर्देश मन के पालन नहीं करैया अधिकारी मल्ला अवमानना और अनुशासनात्मक के सामना करे भर पड़ सकत है। दुर्ग पुलिस के टीम डहा ले आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप चलिया गिरोह के 13 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार के प्रमुख संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के माध्यम ले म्यूल अकाउंट के उपयोग करके करोड़ों रुपया के लेन देन करत रही। पुलिस आरोपी मंत्री ले मिले म्यूल खाता के करीबन 5 करोड़ रुपया के लेन देन के जानकारी मिले है। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाका में हो एक ठन चोरी के मामला के जांच करत पुलिस अंतरराज्यीय गिरोह को खुलासा करे है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है बतैन कि ये मामला में मेरठ ले 2 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए है। ओखर तिल्ले 60 लाख रुपया के कीमत के करीबन 400 ग्राम सोना और 3.5 लाख रुपया नकदी बरामद करे गए है। ये गिरोह दुर्ग भिलाई नवा रायपुर बिलासपुर और जबलपुर में चोरी करत रहीन। श्री अग्रवाल है बतैन कि आरोपी मन दिन में फेरी वाले बन के कपड़ा और कंबल बेचे के बहाना रेकी करे। बिलासपुर जिला में पुलिस और ACCU के टीम सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के संग 8 जिन माइलोगिन मल्ल गिरफ्तार करी। ये माइलोगिन मन इलेक्ट्रॉनिक ऑटो गाड़ी ले गांजा के तस्करी करत रहीन। ये जम्मो झन माइलोगिन मन मटियारी गांव के रवैया रहे और ओमन उड़ीसा ले गांजा ला के तीर्थखार के इलाका में बेचत रहीस। पुलिस के टीम गांजा के संग 2 ठन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लघलो जब्ती कर ले है। एकर कीमत ला 46,75,000 रुपया बताए जाते है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग डहल ले आज प्रदेश के रायपुर दुर्ग बालोद राजनांदगांव बलौदा बाजार जांजगीर चांपा रायगढ़ और बिलासपुर के संगे संग कोनो कोनो जिला मन में हवा गरेर और हल्का बारिश होए के संभावना जता है। ओती बस्तर संभाग के जिला मन में गरज चमक के संग छिटपुट वर्षा होए के और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। और अब थोरकुन समाचार सार में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम उत्तर मध्यमा पहली बछर और 11वीं के दूसरिया मुख्य परीक्षा के समय सारणी ला जारी कर दे है। ये परीक्षा 1 जून ले 9 जून तक रखे जाही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में दाखिला खातिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी मन 20 जून तक अपन अर्जी दे सकत है। चयन परीक्षा ला 26 जुलाई के मंझनिया 12 बजे ले 2 बजे तक रखे जाही। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव डहरले काली 20 मई के बिहनिया 10 बजे ले अम्बागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेला के कार्यक्रम रखे जाही। कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर और आज बिहनिया रेलवे पटरी पार करत रेलगाड़ी के चपेट में आये एक जन रिटायर शिक्षक के मौत हो गए और जांजगीर चांपा जिला के खटोला गांव में कार और फटफटी के आपस में टकराए ले एक जिन जवान लड़का के मौत हो गए उन्हें 3 जन जवान घायल हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जही। तेल कंपनी डहाले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करेगे है और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा ग्रेड के संग थोर बहुत वर्षा होने की संभावना है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्य रोगिणाम् अथवा

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं पार्वती और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां अभी आप सुन रहे थे। केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
6: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लोगों तक सभी शासकीय सुविधाएं पहुंचाकर उनकी औसत आमदनी में 6 गुना की वृद्धि की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल के मूल्य में 96 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बन जाएगा। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी 6 गुना तक बढ़ जाए।
1: मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
2: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
0: श्री शाह ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 वर्षों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत बस्तर संभाग में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 शिविरों में से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा। इस सेवा डेरा के माध्यम से स्थानीय लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसमें बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी और वनोपज प्रसंस्करण शामिल हैं। इसके साथ ही बस्तर के हर आदिवासी परिवार को एक एक गाय भैंस दी जाएगी और अगले 6 माह के दौरान यहां सहकारी डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB के साथ अनुबंध कर लिया है।
1: मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
2: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
0: इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आज जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और इन चारों राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104 रूपये 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रूपये 51 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण न करें। कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर इसके 7 सदस्यों को दिल्ली और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। फरसगांव के एसडीओ पुलिस अभिनव उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस की अलग अलग टीमें पिछले करीब 3 महीने से तलाश कर रही थीं। उन्होंने बताया कि आरोपी खुद को बीमा एजेंट बताकर लोगों से पैसा वसूल किया करते थे और अलग अलग मोबाइल फोन से फर्जी मैसेज भेजकर उनके साथ ठगी किया करते थे। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रूपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेश डेका ने कल लोकभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित किया। इनमें शुभांगी आप्टे, संजय आप्टे, सुजॉय मंडल, रुचि साहू, तुमन साहू, कुसुमलता बीपड़े और पुलिस अधिकारी सूरज सिंह परिहार शामिल हैं। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाके में हुई एक चोरी के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
3: नेहरू नगर में विगत दिनों चोरी हुई, चोरी के उपरांत पुलिस टीम लगातार उस पर लगी हुई थी। एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। अंततः 2 आरोपी मेरठ से पकड़े गए हैं और वहां से लगभग 400 ग्राम सोना रिकवर हुआ है जो गली हुई अवस्था में था और साथ ही लगभग 3.5 लाख कैश मिला है। ट्रांजिट रिमांड टीम को लाया गया है और इनसे इंटरोगेशन करने हेतु PR लिया जाएगा।
0: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह ने दुर्ग भिलाई, नवा रायपुर, बिलासपुर और जबलपुर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। ये आरोपी दिन के समय फेरी वाले बनकर कपड़ा और कंबल बेचने के बहाने रेकी किया करते थे। बिलासपुर जिले में पुलिस और ACCO की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। ये सभी महिलाएं भटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रूपये आंकी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रायपुर, बालोद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर सहित कुछ जिलों में तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा और मेघ गर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच आज शाम दुर्ग जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश

0: छुई। कई इलाकों से आकाशीय बिजली गिरने की भी खबर मिली है। आंधी के कारण अनेक स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिश कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस नहीं छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार किया है। राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन में कल हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस का कार्यक्रम पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल रमेन डेका इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 26 जुलाई को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा कल 20 मई को सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में आज सुबह रेलवे पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। जांजगीर जिले के खाटोला गांव में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में बीती शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लोगों तक सभी शासकीय सुविधाएं पहुंचाकर उनकी औसत आमदनी में 6 गुना की वृद्धि की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल के मूल्य में 96 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: सँगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सब पाए गाउँकारी दादा दिदी और सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मई मंगलू
1: और मई गडरू
0: अमी दुनो करू से
1: राम राम,
0: राम, राम।
1: ये ना मंगलू आम्ही दोनों तो भेटघाट होलू और दादा दीदी मन संग बोल भेटघाट करलू ने मांतर दक नानी बड़े पिला मन बोल रेडियो कटाकटा बसून काय सुनते रहू तो रेडियो कटाकटा बसून सुनतो नानी बड़े पिला मन के बोल आम दोनों जो बाढ़ खूबे खूबे मया और चुमा तो मंगलू भाई
0: गटरू
1: मैं बोलते रहे जसन की आम्ही खेती बाड़ी तो करू से चेने काय की एबे खेती बाड़ी मन का जे नया नया कल मशीन मन लीली से और आनी बानी चो खत बात मन बोली से और आनी बानी बीज मन बोल मिले कसन और क्या है कि आगे देखुआ तो आमचो जो पुरका बेरा चो सियान सजन और आई दादा बड़ा मन रहते रहो उतर हाँ। तो ये सब जिनिस मन नहीं रहते
0: नहीं रहे नहीं रहे हाँ।
1: कसन
0: हाँ। कसन बोले एबे समय आने बोले जो है गोबर आगे बोल ले पुरखे तिल जोन चले से गोबर खाद हो इसने जहन केचुआ खाद बोल सो गोबर खाद बोल सो ने एमन मन ने खत मन ने जहन धान बोल कमानी करूस नहीं उनचो चाउर बल हो ने उनके भात बन खाउस तो उन बल खिंडी का है नुको सुवाद बोले लागे ने
1: सत्य बोलिस कसन बोल केचुआ खाद बोलिस तो ही और गोबर खाद बोलिस और का है कि जसन रू कटगुज मन चो का है पाना पत्ती बोलो उनके बल गोबर को उधरन पकल उन का है उन सड़क बोल खाद बन रहे और उनके बल का है बेड़ा बाड़ी ने उन बाती बिकरू दिले फसल का है जन होते
0: जन हो ऐसे
1: कसन तो आमचो जन आगे जो जोन सियान सजन मन रहा पुरगति बेरा और उन मन का है खेती बाड़ी का जे नांगर बैला ने लगड़ा और का है कि होलदरा नांगर बोलो जे उन बोल करते रहला कजन तो मंगलू गोड बात मन तो होली आलाम जी लग नांगर गोड मन बोला एक बोल अमराउन जी
0: आले अमराउन
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तग्गा टैक्स तुन और वेंट सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्निटा लेकेन 8% टैक्स मंता नेलत माट इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का न गाड़ी 8% जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
6: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ।

0: Chettinad Cement, the perfect concrete choice.
1: मंगलू भाई
2: हाँ गटू
1: ये नंगत गोट मानो अमरा उन दिलू ने
2: हाँ हाँ
1: हाँ अलग काजी चो दिन बोलो ने गोट गलग दिन है
2: हाँ
1: कसन
2: हाँ हाँ
1: काय दिन है सुरता कर लीस काय
2: काय मंगलवार दिन है लोक लहरी ने
1: हाँ और काय कि दादा दीदी मन चिट्ठी पत्र लिखो उन पटा रुआ तो ता हुन मन चो मन कर लो गीत मन रुआ कसन तो आले मचल गोट चिट्ठी आता लिख पड़े स्था है ग्राम मोरमेड़ विकासखंड बीजापुर जिला बीजापुर ले सोहन तेलाम विनोद तेलाम मुन्ना तेलाम विजय तेलाम चिन्नाराम तेलाम
2: मतलब चिट्ठी पत्थर ये ग्राम ढोडरेपाल छोटे मुड्राले विकासखंड दरबा जिला बस्तर ले बलदेव मंडावी विनीता मंडावी दिलीप मंडावी वेदांत मंडावी परिता मंडावी छवि मंडावी अंतिका कश्यप और मुझे घर चो सब पाए
1: अब मचलग बलगोटो का स्थान है
2: हाँ।
1: ग्राम डिल मिली विकासखंड दरबा जिला बस्तर ले राजू सोड़ी नरेंद्र कर्मा हितेंद्र कर्मा परसु सोड़ी मणिराम मंडावी संतु पयाम और मंचो जमा संगवारी मंच
2: मतलब बोला से ग्राम पकनार विकासखंड दरवाले जिला बस्तर लक्ष्मण मंडावी सुनीता मंडावी दुर्जन मंडावी समली मंडावी अर्जुन मंडावी कारी मंडावी और मंचो घर चो सब पाए लो
1: फिर बलगोटो को मचता नास्थान है
2: हाँ।
1: ग्राम राजा मुंडा जिला सुकमाले लक्ष्मण मंडावी गरिमा पोड़ियाम हिरमा सोड़ी वेको उंगा वेको जोगा माडवी गणेश माडवी देवा महेश कुंजाम
2: अमोचलक बोला से ये ग्राम कोरीरास विकासखंड कुआ कोंडाले मासा कुंजाम मंगल कुंजाम अजय कुंजाम अनीता कुंजाम कमलेश्वर कुंजाम सुचित्रा कुंजाम आरती कुंजाम और संतु कुंजाम और मंचो घर चो सब पाए लो
1: मंगलू भाई फिर गोटक मचता नास्ता ने
2: हाँ हाँ।
1: ग्राम बास्तानार टूले जिला बस्तर ले वरुण वेको गजेंद्र पुड़ियाम विनोद कुड़ाम महेश पोयाम चंद्र बघेल सुखमन सेठिया सुद्रु सेठ मंडावी अरे मंचो जमाई संगवारी मन
2: आले,
1: आले तो ये मंचो मन कर लो गीत के अमराउंदे गीत पूरे मंचो नाव के पाचक सांगवा
2: हाँ आले अमराउंदे

0: मंगलू भाई
1: हाँ गडरू
0: दा काय सुंदर गीत लिने
1: हाँ
0: गीत कुरिया मन किसी चाली
1: हाँ चिताली का एक एक गणेश मंडा भी अरुंचो संगवारी मन गाँव रहा था
0: हाल दक फिर बोले हम जलक चिट्ठी पत्री मन आसे थाने
1: हाँ
0: तो मैं बने स्थाने
1: हाँ
0: ग्राम देव गांव जिला कोंडा गांव ले बुद्रू मंडावी श्रीमती मंगलदेई मंडावी श्रीमती मंगली मंडावी श्रीमती सत्यवती मंडावी जसवंत मंडावी बसंती मंडावी
1: अरे ग्राम भोन चित्रगुड़ाले ये लुद्र प्रताप बघेल रुखधर बघेल दुर्जन बघेल लक्ष्मूराम बघेल सुभद्रा बघेल और मनमती बघेल और मंचो घर चो सब पायलो
0: मछलक पेर वड़ो का स्थान है
1: हाँ।
0: ग्राम गड़िया लोंडीगुड़ा जिला बस्तर ले बंजाराम मोरे सुद्रू सेठिया लखमू कश्यप कोपाराम मंडावी तुलसी सेठिया।

0: राम बड़े मोर पालतू का पाले, बादू राम कश्यप, सहदेई कश्यप, मैथु कश्यप, चैतु कश्यप, कंसुला कश्यप, मुन्नी कश्यप, अनुराग कश्यप, वंशराज कश्यप,
1: मतलब गुला से ग्राम बिरिंग पाले, घासी राम कश्यप, लक्ष्मी राम कश्यप, प्रियंका कश्यप, खामेश कश्यप, अंबिका कश्यप,
0: घर तो सपा मंच मन कर लो गीत के हम राउंड देव गीत पूरे हम जनाव पाचक सांगवा।

0: मारुन पकाए पाकटी खोसा मतवार मैं हाय विमान की मतवार मैं हाय।
1: मंगलू भाई
2: हाँ गटरू
1: दा काय सुंदर गीत रली ने
2: हाँ।
1: एक गीत के गाव रला बिपिन बिहारी दास और मंजो संगवारी मन तो दक मंगलू भाई चिट्ठी पत्री तो हम चला के सरली
2: ने
1: और जा तो समय होली और मैं विदा दरस तब तुम रख सकल जा तो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाए गाँव कारी दादा दीदी सियान सजन संगजोर या संगवारी मन के मैं गटरू
2: मैं मंगलू
1: हम दोनों करूँ से
2: राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: एक मज
1: जुहार ना गड्डू, जुहार
2: जुहार मंगलू जुहार।
1: हमारे लिस्ना ने
2: हाँ
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए खेतियार दादा दीदी मन के। मैं मंगलू
2: और मैं गड्डू,
1: अमित दोनों करू से
2: जुहार। मंगलू भाई
1: हाँ ना गड्डू,
2: देख हम जे भी बरसात समय बोल अमरे से ने।
1: हाँ हाँ
2: और हम जो खेती बाड़ी समय बोल अमरे से।
1: हाँ
2: मंत्र देख का है कि एबे बोले गाम बल खूब चेके से जेट असन लागे से। और कोनी कोनी जगह ने हम देखो कि पानी के आज बल तकलीफ होय से छे।
1: हां जेट ने तो यही चीज हलाया ने कोनी तन देख कोन बाटे पानी नी मिर बल जाय ने।
2: हां
1: ये जसन गर्मी समय ने जसन शहरी बाट बल होली नल कोनी गांव गांव क्षेत्र मन ने बल होय से ने। एमन मन ने काय कि कोन थाने ए टेंडा मन ने बल सुत ने। एमन थाने वर्षा बेरा अच्छा निकरे से ने। उतर अरे गर्मी बेरा काय होय से पानी कम होय से होता
2: कम होय से और उन बल करे स्टैंड अप
1: बल करे।
2: तो काय दादा दीदी मन आम के काय पानी के बचाउन संगा तो
1: ने।
2: पानी काम के फोका पका तो रोए जसन हम खेती बाड़ी करू से तो खेती बाड़ी वाले उतरी पानी जपात रहे जितरो पानी उता लागे से
1: पौधा ने लागे से।
2: और काय है कि दक्षित तुई कि पानी के जसन जुआ तो काजे असन कई टन काय सरकार बाटले बल योजना मर रहे से डोबरी निर्माण सुने तालाब निर्माण कुआं निर्माण और ये भी थी मन के बल का है हम दादा दीदी मन के लाभ धर तो रहे। कसन
1: अरे जहन शहर मन ने होय से ने ए भी जगह मन बल साटेज होय से। और जहन छत मन बल होय से छत चो पानी फिर काय होय से बोल तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल सत ने। उता बल काय कि हम के हर घरे जहन छत मतलब रलो थाने जोन थाने और उता काय हार्वेस्टिंग बना तो जरूरी है। कसन बोलले उता काय पानी छत चो पानी होता नीचे जाओ।
2: हम के जोसन नाव से नाल रांधू से खाऊ से पीऊ तो पानी होली। ये पानी का है धीरे धीरे स्रोत बल कम होते जाए। उन्हीं का है कि पानी का जी खूब तकलीफ मन हो कसन। तो हम तो दादा दीदी मन के का है खूब लेख करो पानी के खूबे बचात रहे। बोलवात नहीं जल है तो कल है कसन। आज ही हम पानी के बचावा तब ने उन काली लोग का जी काम दे
1: काम है
2: कसन। तो मंगलू भाई ये गोड़ बात मन तो होली आले हम चलग नगद गोड़ बात मन बोला से मन के बल हम
1: राउंड।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हिसाब ने ए वार्ड बनली से कि देश चु सप्पाय बेड़ाने कोनी नहाले कोनी हिसाब ले पानी हमरा तोर गोठ हो। इच्छुकाजे राज्य और जिला स्तरीय समिति चु दखा रखाने सप्पाय काम होए दे।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: GST काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सिक्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: मंगलू भाई,
5: हाँ गड्डू,
4: ये नगद गोड़ बात मन के बोल अमराव जिलू ना आले दक आम्ही रोज दिन आईले काही ना काही आणून चिरू आम कजन तो आले आमचे मोठा दक भेट वार्ता असे ने एमनात बिंदू शर्मा महिला कीर्तकात और एमन संग भेट घाट करला होत CR कसे आले के बोल सुनू और दादा दी बोल सुनत।
6: रेडियो सुनतो किसान भाई बहन मन खेती किसानी करतो काची बोलबे काय कसन बोलबे बीज भात खत पानी सब लागे से मंत्र असना है कि खेती किसानी ने एबे चो जुग ने बोलुबे मेहरार मनबले पूरे सोत और आपलो सशक्तिकरण बोलो ने महिला सशक्तिकरण हिसाब ने उनमन आर्थिक स्थिति ले मजबूत बन सोत कोची ऊपरे उनमन बले निर्भर नहीं रहोत अपनी मन कमा सोत और घर परिवार के चला सोत असनी ची आजी आमचो लगे अमरला सोत बिंदु शर्मा ये मेहरार दीदी एमन चो कमानी कसन कर सो ती गुड बात के सरसरा ले जानवा तो दीदी अल तो के सब ले आगे तो के खूबे खूबे जुहार
7: जुहार और जो हम जो रेडियो में सुन तो लोग किसान दीदी मन के भले मैं जुहार करें।
6: हाँ हाँ तो दीदी मैं ये पूछूक चाहे से कि ये भी तु ही बोलो भे काय सब्जी भाजी लगा ले सीज जाले खेती किसानी हिसाब ने काय कमानी कर सीज जाले।
7: मैं खूबे साल होली मके 10-15 साल से मैं खेती किसानी काम करे से और खेती किसानी में भले मैं मुर्दिन ले मैं खेती किसानी में करे से तो मैं केवल हॉर्टिकल्चर उत्पादन में मैं काम करे से।
6: अच्छा।
7: हम जो दुई विभाग हो से एग्रीकल्चर बोले धान मक्का उड़ीद हिरवा हो से तो मैं जो कमाए से उनके हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट बोल सर।
6: अच्छा।
7: और उन हिसाब ने मैं साग सब्जी बांगा होली आलू होली गोभी होली और नाना प्रकार चो टमाटर होली ये सब सब्जी और फल फ्रूट बल मैं लगाए
6: बोलो बे सब्जी संगे संगे पाक फर्चो बल हो।
7: हाँ पाक फल बल।
6: अच्छा जसने पाक फर हिसाब ने कहीं से बे कहीं लगा ली
7: नहीं मैंने मैं सांगे से तुमके कि मैं बोले मचलग ज्यादा बेड़ा नहीं है मचलग लगभग 4.5-5 एकड़ जमीन आसे।
6: अच्छा।
7: तो हुनी ने उत्पादन कसन हम आगर करवा और कसन ने हुनके हम पूरा परिवार के भरण पोषण कर तो हिसाब ने मैं ये के मुरियाले तो मैं शुरू शुरू में मैं असंतीज के अनुक सकली जैसे मार्केट ने अबे पपई चो बहुत डिमांड होली कोरोना
6: काल कोरोना बेरा ले
7: कोरोना बेरा ले लोग बोल चेतला कि अच्छा अच्छा खातो आए तो हम के सही अच्छा फल कहाँ ले मिले दे और पपई असन आए कि गरीब मन चो बोले पोषण करे से और जो पैसा बीता मन बल उनके घेन उन खाउक सकत हाँ,
6: हाँ।
7: और परिवार के बल पूर्व आए दो तीन ठन घेन ले पूरा परिवार बल खाउक सकत
6: तो
7: और आयरन चो मात्रा तो उन हिसाब ने मैं पपई लगाऊ रहे
6: अच्छा।
7: और पपई लगाऊ मैं अलग एक ठन उन कोंडा गांव जो भीतर में अलग क्राफ्ट के आन ले
6: हाँ, हाँ।
7: तो उन तरीका से बोले खेती के बदलून बदलून करून भाती इनकम
6: अच्छा।
7: कमाऊ
6: मुरियालीस बोलो हाँ। हाँ तो जसन एवे बोलीस पपई चो तो पपई संगे संगे जसन आमी बूटा मंडाऊ से पपई तो उनकी लापी लापी रुआ तो उन खाली जसन भूई रहे से उता बोल कहीं असन उवाट कर सी
7: हाँ, हाँ। ये तो हुनी बीती के किसान भाई मन के और दीदी मन के सांग तो आए कि जसन जगह चो हम के उपयोग कसन कर तो आए
6: हाँ, हाँ।
7: जसन ये शहर ने गेले दुई मंजिल तीन मंजिल बिल्डिंग बने से
6: हाँ।
7: आए का
6: है?
7: तो उन दुई मंजिल तीन मंजिल बिल्डिंग चो हिसाब ने बले हमके खेती के बले हुनी हिसाब में करुक लागू है क्योंकि अब लोग बाढ़ते गेला जमीन जमीन बले लोग छोटे होते गेली
6: हाँ, हाँ।
7: और बाल बच्चा हिसाब में बंटवारा होते गेली तो हम चोला चक बल बहुत कम आसे तो हुन कम चक में हम कसन खेती करवा असन मैं कई जगह जाऊन भाती ट्रेनिंग बल धर ले
6: हाँ, हाँ।
7: और कई चीज में मैं सीख ले बले और मैं हुन पोपई चो खाले में मैं अरबी लगाऊ रहे कोचई लगाऊ रहे
6: अच्छा।
7: और कोचई लगा ले और मेड़ मेड़ में जो हाँ जगह बाचू रहे
6: हाँ।
7: क्योंकि पार में लगे से पोपई
6: हाँ, हाँ।
7: तो पार पार में जो जगह बाचू रहे तो मैं बूटा बीती बरबटी लगाऊ रहे
6: अच्छा।
7: और खाले जहाँ जगह बाचे से उनमें मैं कोचई लगाऊ रहे
6: हाँ, हाँ।
7: तो असन में मके नहीं जसन बरबटी चो उत्पादन होली तो मके लेबर मन के देव कुलाए होली लेबर तैयारू रहे से बनिहार मन के उनके देव खोए से
6: हाँ, हाँ।
7: और जैसे कोचई आए तो उन्हें एक सीजन में नहीं कर ली तो उनके बिकुन भाती कुछ दवाई पानी में जो खर्चा हो सुन नहीं करे से और पोपई चो हम पूरा रेट हम के किसान के फायदा हो
6: अच्छा अच्छा। और दसन की तो बल्लीस दस पंद्रह साल होली तो चो ये खेती किसानी कर तो असन बोलो भी फसल उपजन कर तो काचे कहीं असन बोर वर बोले आसे कई कसन जाले
7: हाँ, उन तो बहुत जरूरी चीज है भाई कि बोर तो लागू चाहे और मैं जो करे से ड्रिप पद्धति योजना के हिसाब से करे से
6: हाँ, हाँ।
7: और बहुत सारा चीज मके जानकारी मिलते गेली तो उद्यान विभाग ले बोले हमके मदद मिल ली
6: अच्छा।
7: मल्चिंग लगाउन करे से क्योंकि खरपतवार बहुत हो से और खरपतवार में हमके निंदा कोड़ा में हमके बहुत खर्चा जाए से मजदूरी देव पड़े से लेबर देव पड़े से तो बेरा बेरा नहीं अभी काम कर तो लोग बल नहीं मिरत
6: हाँ।
7: तो उन हिसाब में जसन जसन समस्या आती जाए से उन हिसाब में हमके थोड़े चट्टे रहून भाती उन काम के हमके
6: आए ची हाँ। मात्र दक ये जन सब्जी साग भाजी संग संग पाक फर बीती बोले तो ये कर सीत ये चो बिक्री भांजरी कसन करवाज जाले
7: ये मचो हिसाब में मैं जो काम करे से तो हाँ। मैं गौ आधारित खेती करे से
6: अच्छा।
7: और उन जो काजे प्रचार प्रसार बल लागे से और दूसरा का हम चो लगे मंडी चो व्यवस्था नहीं आए तो हम ही का होम डिलीवरी बल कर लू घर घर जाऊन भाती और छोटे छोटे जो सब्जी बेच सक दीदी मन
6: हाँ, हाँ।
7: उन मन के जाऊन भाती पहुंचा उन भाती दिलो और ज्यादा मात्रा में होले तो फिर बाहर बल हम उनके खबर करूं से
6: अच्छा।
7: दो तीन किसान मिल उन भाती तो उन मन उठा सक
6: हाँ हाँ जसन बल्लीस तो ये हॉर्टिकल्चर हिसाब ने तो ये भी खेती किसानी कर सी तो आमचो जो इतलो बोले किसान भाई बहन मन आमचो गोट बात के संसद होती तो उन मन के बोले कहीं तुझे बाटले असन कहीं गोट नाल कहीं विचार देव चाहे सी तो खिनिक सांगून दे
7: का है कि बहुत सारे हमके परेशानी ये हो से कि बहुत सारे किसान हम चो जानकारी चो अभाव में उनके पूरा उन चीज उन मन के मिरुक नहीं सके
6: हाँ,
7: विभाग
6: हाँ।
7: चो कई ठन विभाग चो योजना आसे चाहे हुन कृषि विभाग चो योजना हो चाहे उद्यान की विभाग चो योजना हो चाहे पशुपालन विभाग चो हो चाहे मत्स्य पालन
6: हाँ,
7: विभाग
6: हाँ,
7: चो
6: हाँ।
7: तो क्या योजना हुन मन लगे शिक्षा चो कमी या प्रचार प्रसार चो कमी या कहीं असन कमी हो जाए तो उन मन के उतरो नहीं मिल रुक सके तो उन कारण उन मन वंचित रह सत लेकिन
6: हाँ।
7: विभाग में बेरा बेरा ने बल किसान भाई मन के जाऊन भाती क्योंकि विभाग चो लोग बल तो सीमित आसत
6: हाँ,
7: ना
6: हाँ, हाँ।
7: जितरो आसत उतरो ही उन मन पूर्ति कर दे लेकिन किसान भाई मन के जाऊन बेरा बेरा में अपन चो खेती चो बारे में जाऊन जाऊन मिलुक पड़े दे किसान मन के और जाऊन जाऊन हर योजना चो बारे में होता रहे से ग्राम सेवक मन रसत फील्ड ऑफिसर मन रहे तो मन के पूछुक लागे थे, तो योजना जब तक हम योजना साथ जुड़ दे नहीं ना हा? तो किसान भाई मन के उन फायदा कम मिले दे और कई ठन नुकसान बल हुन जो सामना कर सकते बीमारी होली और ये होली, तो समय समय में उन चीज चो उन मन के जानकारी मिली बोले उन मन उन चीज से बचुक सकते।
6: हाँ हाँ वन तो ऐसे गाँव पारा ने तो किसान भाई बहन लग भूई रहे से कुछ लोग कम रहे से कुछ लोग आगर रहे से मानतर जो चो लगे आसे उनमन असन जसन तु ये भी जसन हिसाब ने तु कमानी कर सी तू से नहीं कर सोते भी कसन जसन तु बोलीस की हॉर्टिकल्चर हिसाब ने कर सी तो रेडियो सुन तो जितलो बोले किसान भाई बहन मना तो उनमन बोली तू ची जन कमानी कर सी यही हिसाब ने उनमन बोले कमानी कर लो ने उन खिनिक मा नानी असन भूई ने बोले उनमन आमदनी अगर कमाक लाए सक देने।
7: जी जी बिल्कुल सही बोलिस।
6: हाँ और दके चे संग मैं और पूछुक चाहे से कि जसन ते जन जितलो बोले खेती किसानी कर सी जैविक पद्धति हिसाब ने हो सी कई कसन जाले जैविक खेती हिसाब ने।
7: मैं तो बोले से कि जैसे हम चला कि गौ पालन सब किसान मन घर एक दू ठन गाय बैला आसे।
6: हाँ।
7: और हुन गाय बैला चो हिसाब में अगर हुन मन गाय चो गोबर और गाय चो गौमूत्र ले।
6: हाँ।
7: अगर हुन मन खेती कर सत तो जो जमीन चो आजकल जो नुकसान हो से।
6: हाँ, हाँ।
7: जमीन चो बैलेंस बिगड़ ली से कार्बन जमीन ले जी खत्म हो से और बीमारी बहुत तगड़ा होते जाए से जमीन बले कड़ा होते जाए से तो हम के बैलेंस बना रखुक लागे दे उन चीज के मैं ऐसा समझ चाहे से जैसन की हम दवाई डॉक्टर बोले से दवाई खा से।
6: हाँ, हाँ।
7: कोई बल दवाई दे से तो बोले से कि दूध के साथ खाना।
6: हाँ।
7: तो हम ही काय का बोले से उन क्योंकि हम जो बैलेंस हम जो शरीर जो जो हिसाब आ उनके बरकरार रखते का तो मैं ये नहीं बोले कि रासायनिक खाद डाल तो खराब है लेकिन मात्रा जो हिसाब में गोबर खाद बल डाल लागू है काय काज की हम जो जमीन ही हम जो पूंजी आए।
6: हाँ, हाँ,
7: और उन पूंजी के जसन हम शरीर के देख रेख करू से उसन हम के जमीन के बल देख रेख करूक लागू है बेरा बेरा में हम के टेस्ट बल कराउक लागू है और मैं एक ठन गोट गोट गोट के मैं काटू कुलाए बने से कि आज एबे दीदी मन नहीं है वत खेती का। हाँ, काम हाँ, ने मुर दिन ले जब से खेती चले से जब जुग जुग ले जब से खेती कर सत करू कुलाए हम मनुष्य सीकुलू से
6: हाँ, हाँ।
7: उन दिन ले महिला पुरुष जो पूरा पूरा भागीदारी होए से तो ये बात मैं बोलू है कि आज जब भी नींद तो चो काम काचो है बाले मंचो है
6: मेहरार मंचो सी है
7: काट तो चो काम काचो है
6: मेहरार मंचो है
7: मैं कहीं पाक फल की बिक तो बाजार ने काचो काम है
6: उनबल मेहरार मंचो है
7: मनुक पीला मन काय नांगर धरसत ब्यासी मारसत और जो हार्ट काम हो से उनके मनुक पीला मन कर सत बाले टोकी मंचो ज्यादा जिम्मेदारी
6: आ तो आए छे। हां
7: तो मैं बोले से कि जो दीदी मन करुक सकसत काम कुछ दीदी मन सामने असत मचो सन मन सामने इला बाकी दीदी मन जो पर्दा चुन पाट काम कर सत उन मन के पिक्चर ले हुन पाट आसत उन मन के पूरे यूक लागू है
6: तो
7: सब्जी बल हुनी मन बिकसत सारा चीज हुनी कर सत
6: आए छी। तो कितला अच्छा ये गोट के सांगलिस दीदी दक ऐसी चाय की गांव पारा चो जितलो बोले मेहरार दीदी मनासो तुन लाज हुआ पूरी उनवाती से अच्छा गोट के सांगलिस की जितलो बोले मेहरार दीदी मनासो तुन मन बोल पूरी होत आप लोग काम बुता के करो ते भी उन मंचो जोन आमदनी आए उन अच्छा उगले सके ने।
7: जी जी जी। हाँ। और मैं एक आकाशवाणी जो चैनल जो हिसाब ने मैं ये सांगुक सके से कि हर घर में 10-20 मील जमीन आसे।
6: हाँ, हाँ।
7: 10-20 मील 5-10 मील जमीन आसे अगर उनमें हम जो बाड़ी जसन छोटे मचो बाड़ी जसन कोई योजना चला उन भाती दीदी मन अगर उत्पादन करूक चाहसत तो विभाग से भी जुड़ उन भाती योजना के हम जाऊन भाती समूह बना लो आसे महिला मंचो।
6: हाँ,
7: तो
6: हाँ।
7: समूह हिसाब ने 10-10 जन समूह बीती महिला मन जाऊन भाती अगर योजना के विभाग ने सांसद तो विभाग बांट ले उद्यान की विभाग बांट ले उन मन के बहुत सहयोग मिले थे। हाँ, हाँ। और ये जसन कुंदरू लगातो है बरबट्टी लगातो है ये लगातो है तो एक ये मन असन योजना के करुक लाए कोशिश करुक सकसत और दीदी मन घरे बले जो खरपतवार निकरे से और जो गोबर आसे उनचो भी खाद बनाउन भाती आराम से 10-20 मील में अपनो व्यवस्था करूँ अपला हांग इनकम के और बल करुक सकस।
6: हाँ जी सत्य गोटा याद इतना अच्छा गोट के सांगले से गोट बात के सुनून ये मेहरार दीदी मनासोत किसान बहन मनासोत ये मन बोले यही हिसाब ने काम करोत और आप लोग बढ़ती करोत और आमदनी अच्छा धरोत तो इतना अच्छा गोट बात के सर सराले सांगली दीदी रह चुका तो खूबे खूबे जुहार है
5: का सुंदर भेट वार्ता रही ने और एक हमरो रोहत बिंदु शर्मा ये महिला कृषक रोहत और एक भेंट करते रहला सीआर कस्ते अपने का सुंदर नगत गोट मन के सांगला ने।
4: हाँ मगर हम मुर ने बोल रहा हूँ कि असन का एक टन योजना मर रहे से विभाग महकमा मर रहे से जो नाम चो खेतिहार दादा दीदी मनात उन मन का है उनता नहीं जाऊन बाती ये सब धरुक लाए सको कसन का है कि हम बोलो कि पानी काज बोले डबरी निर्माण ने तालाब निर्माण कुआं निर्माण असन रहे से तो का है कि उसने खेती बाड़ी कर तो काज बोल कई टन असन विभाग मन रहे से कई टन असन विभाग मन रहे से और उता का है पशुपालन जो बोल जानकारी दे सो तू चुप बूटा लगा तोर फल बूटा लगा तोर नाले पौधा रोप तोर असन कई सारा चीज मन जो जानकारी उतालाम के मिरे से कसन तो मंगलू फिर बोला हम लगनागत गोड़ बात मन बोला सुनो
5: सुनो
8: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को हरिया अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज
9: मेरे किसान भाइयों और बहनों आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं
10: वो कैसे
9: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551
11: ये किसका नंबर है भाई
9: किसान कॉल सेंटर का जहां विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत
12: अरे भाई विशेषज्ञ हर समय थोड़ा ही बैठा मिलेगा
9: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई साल के 365 दिन मिलेगा वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक
11: पर भैया लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे
9: कोई पैसे नहीं मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो सलाह के भी पैसे नहीं
13: सच
9: 16 आने सच
14: किसान भाई खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801551 पर मुफ्त संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
15: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की
16: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी साथियों अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है
15: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं छटाई या ग्रेडिंग इकाई पैकिंग हाउस सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है
17: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए
15: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है
18: ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ
15: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ आज देश के कोने कोने से किसान कृषि उद्यमी किसान उत्पादक संघ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं
5: हाँ गड्डू गोट तो रेली ने मानतर हम चो गांवकारी दादा दीदी मन काज वाले आमी नंगत नंगत गोट मन गीता सन गोविंद कविता सन कहानी सन धरनी हमने और रसनी गोटो गीता से आमच लगे आले गीत की बोल सुनो और पाच गीत कुरिया मंच पाच नाव के सांगवा
4: हाँ

0: हाँ गडरु का सुंदर गीत रही ने
1: हाँ
0: ये गीत किरा मन के चिता ली।
1: हाँ ये गीत के गाँव रहा राजेंद्र कश्यप और मचो संगवारी मन मंगलू
0: हाँ
1: दा काय की ज्ञान दियन चो गोट बोलो ली जमाय होली ने
0: हाँ हाँ
1: और काय वे सांझ बेरी आए तो हम चो जो दादा दीदी मनात बुता बहना करू ने उन थकुन पुकुन रुआत
0: हाँ
1: कसन
0: हाँ
1: गोट बात संग संग काय गीत गोविंद होले उन मन के
0: नंगत
1: काय
0: संग
1: मजा
0: हाँ
1: रस रे जुमा बोले दे
0: हाँ
1: ने तो वाले हम चलो फिर गोटो गीत आस्ता
0: अरे
1: ये गीत के हम रहा हूँ गीत कुरे हम चलाओ के पाचे के सांग
0: सांग
1: हुआ।

0: मंगलू
1: हाँ गटरू
0: द काय सुंदर गीत लिहिणे
1: हा हा हा
0: हे गीत के गौरवला योगेश्वर पुजारी आऊ म्हणजे संगवारी मान
1: हा
0: अलग मंगलू गीत गोविंद बोल होली
1: हा
0: सब होली ने
1: हा
0: और काय दक गड़ी बार दक लैम जातो समय बोल होली
1: हा
0: और काय एक समय नीले का समय जाओ बोल पड़ गए
1: हा हा
0: अल तो मोड़ा कट रख सकल मैं विदा मांगे ने
1: हा
0: जातो पूरे किसानवाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए खेतियार दादा दीदी सी मन के मैं गडरू
1: और मैं मंगलू
0: हम दोनों करूं से
1: जुहार।
0: जुहार।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। विषय है बालिका शिक्षा। वार्ताकार हैं संगीता कश्यप।
1: बालिका शिक्षा, सशक्त समाज, समृद्ध राष्ट्र और उज्जवल भविष्य की आधारशिला। शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह केवल पढ़ना लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच, व्यवहार और भविष्य को आकार देने वाली शक्ति है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ के नागरिक शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर हो। समाज के विकास में महिलाओं और पुरुषों दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में लंबे समय तक लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। पुराने समय में यह धारणा थी कि लड़कियों का कार्य केवल घर संभालना है और परिवार की देखभाल करना है, उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। कई परिवारों में आज भी ऐसी सोच देखने को मिलती है, लेकिन समय के साथ लोगों की सोच बदली है और अब

0: समझ विकसित हो रही है कि यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित और जागरूक बनाती है। आज बालिकाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक, खिलाड़ी और राजनेता बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। यह सब शिक्षा की शक्ति का परिणाम है, इसलिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बालिका शिक्षा का अर्थ और महत्व। बालिका शिक्षा का अर्थ है लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। शिक्षा लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करती है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। एक शिक्षित लड़की अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वह न केवल स्वयं को आगे बढ़ाती है, बल्कि अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारी बनाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बालिका शिक्षा के अनेक लाभ हैं। आत्मनिर्भरता। शिक्षा लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। वे नौकरी या व्यवसाय करने अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और परिवार की सहायता कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता। शिक्षित महिलाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, मतदान और सामाजिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। बाल विवाह में कमी। जहां लड़कियां शिक्षित होती है वहां कम उम्र में विवाह की घटनाएं कम होती है। शिक्षा लड़कियों को अपने भविष्य के प्रति सजग बनाती है। स्वास्थ्य में सुधार। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखती है, इससे कुपोषण और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। समाज में समानता। बालिका शिक्षा से महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता बढ़ी है तथा लैंगिक भेदभाव कम होता है। बालिका शिक्षा की स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल भेजना आवश्यक नहीं माना जाता था। कई सामाजिक कुरीतियां जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव बालिका शिक्षा में बड़ी बाधाएं थी। धीरे धीरे समाज और सरकार के प्रयासों से स्थिति में सुधार आया है। आज भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें प्रमुख है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पुस्तक और गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति योजनाएं, साइकिल वितरण योजनाएं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना है। आज देश के कई राज्यों में बालिकाओं की स्कूल उपस्थिति पहले की तुलना में काफी बड़ी है। इसके बावजूद चुनौतियां अभी भी मौजूद है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां माध्यमिक स्तर के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। गरीबी, घरेलू जिम्मेदारियां, स्कूल की दूरी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं आज भी शिक्षा में बाधा बनती है। छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहाँ बड़ी आबादी ग्रामीण और वन क्षेत्रों में निवासरत करती है। राज्य गठन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा छात्रावास, आश्रम शालाएं, कन्या विद्यालय एवं छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, पुस्तकें, साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। इससे स्कूलों में बालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव में रैली, जन जागरूकता कार्यक्रम और बैठक के आयोजन कर लोगों को समझाया जाता है कि लड़कियां परिवार पर बोझ नहीं बल्कि समाज की शक्ति है। आज छत्तीसगढ़ की बेटियां खेल, प्रशासन, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब भी माता पिता बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बस्तर में बालिका शिक्षा। चुनौतियां और परिवर्तन। बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति, लोक परंपराएं और जीवन शैली पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन लंबे समय तक बस्तर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, जंगल, गरीबी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ शिक्षा व्यवस्था को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। कई गांवों में विद्यालय बहुत दूर थे। परिवहन सुविधा की कमी के कारण लड़कियों का नियमित रूप से स्कूल जाना कठिन था। कई परिवारों में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लड़कियों को घर के कामों में लगा दिया जाता था। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक झिझक और जागरूकता की कमी भी समस्याएं थी। लोग यह नहीं समझ पाते थे कि लड़कियों की शिक्षा भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बस्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय खोले गए हैं, आश्रम शालाएं और छात्रावास बनाए गए हैं ताकि दूर दराज के गाँव की बालिकाएं पढ़ाई कर सके। आज बस्तर की कई लड़कियां शिक्षा के माध्यम से नई पहचान बना रही हैं। वे खेल प्रतियोगिताओं, प्रशासनिक सेवाओं, कला और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं। कई बालिकाएं उच्च शिक्षा के लिए रायपुर, जगदलपुर और अन्य शहरों तक पहुंच रही हैं। बस्तर में स्थानीय भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बच्चों और विशेष रूप से बालिकाओं को पढ़ाई समझने में आसानी होती है। आकाशवाणी, स्थानीय समाचार माध्यम, सामाजिक संगठन और शिक्षक भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रेडियो कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटक, रैली और ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याएं, हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी कई समस्याएं आज भी बालिका शिक्षा के मार्ग में बाधा बनी हुई है। जैसे गरीब परिवारों में कई बार लड़कियों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर घरेलू कार्यों और मजदूरी पर लगा दिया जाता है। दूसरा है बाल विवाह। ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह होने के कारण लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। और तीसरा, विद्यालयों की दूरी। दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय कई किलोमीटर दूर होते हैं, जिससे लड़कियों को आने जाने में कठिनाई होती है। चौथा, सुरक्षा संबंधी चिंता। कुछ परिवार लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए उन्हें आगे पढ़ने में हिचकिचाते हैं। आधारभूत सुविधाओं की कमी। विद्यालयों में अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त शिक्षकों की कमी भी समस्या का कारण बनती है। सामाजिक सोच। कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा उतनी आवश्यक नहीं है। यह सोच बदलना बहुत जरूरी है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय। बालिका शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार, समाज और परिवार तीनों को मिलकर कार्य करना होगा। जैसे जागरूकता अभियान चलाना होगा। गांव-गांव में लोगों को शिक्षा का महत्व समझाने के लिए अभियान चलाने चाहिए। दूसरा, आर्थिक सहायता। गरीब परिवारों की बालिकाओं को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। तीसरा, सुरक्षित वातावरण। विद्यालयों में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण होना चाहिए ताकि लड़कियां बिना डर के पढ़ाई कर सकें। चौथा, आधारभूत सुविधाएं। हर विद्यालय में शौचालय, स्वच्छ पानी, पुस्तकालय और पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा, स्थानीय भाषा में शिक्षा। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। समाज की भागीदारी। अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों को मिलकर बालिका शिक्षा के कार्य करना चाहिए। अंत निष्कर्ष यह है, बालिका शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की सबसे मजबूत नींव है। जब बेटियां शिक्षित होंगी तभी समाज में समानता, जागरूकता और विकास संभव होगा। एक शिक्षित लड़की केवल अपना जीवन नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार और समाज को नई दिशा देती है। आज भारत, छत्तीसगढ़, विशेष रूप से बस्तर में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रही है। सरकार की योजनाएं, सामाजिक जागरूकता और लोगों की बदलती सोच के कारण अब अधिक बालिकाएं स्कूल और कॉलेज तक पहुंच रही हैं। उनके दाखिला में इजाफा हुआ है, फिर भी अभी बहुत कार्य किया जाना बाकी है। हमें यह समझना होगा कि बेटियां किसी भी समाज की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हर बालिका को शिक्षा का समान अवसर मिले तो वह आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हर बेटी को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दें, क्योंकि शिक्षित बालिका ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की वास्तविक पहचान है। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। विषय था बालिका शिक्षा और वार्ताकार थी संगीता कश्यप। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिलीप कुमार पांडे और साथियों के स्वर में लीजिए सुनिए हल्बी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

दिलीप कुमार पांडे और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जेगोठ में आज हम सुनेंगे सुभाष चंद्र बोस के विषय में। प्रस्तुति है अनीता निर्मल की।

पिलामन काजी गुट कार्यक्रम सुनतोर सप्पाए नानी बड़े पिलामन के मचो बाटले खुबी खुबे मया और लाड़। तो पिलामन तुम्ही तो सप्पाए जाने साहस आमचो देश ने कई ठन महापुरुष रला और आमचो देश के अंग्रेज मनचो गुलामी ले आजादी काजे जीवन भर लड़ला। कई दिन कई राती जेल में रहून तकलीफ के बले सहला और आमचो देश चो आजादी काजे आप लोग जीव के बले दिला। तेबे आजी हमी स्वतंत्र आसू हुसनी गोटो महापुरुष रला सुभाष चंद्र बोस। तो पिलामन तुम्ही सपाय सुभाष चंद्र बोस के जान सा तो पिलामन आजी सुभाष चंद्र बोस चो गोटमन के जानू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चो जन्म 23 जनवरी 1897 के उड़ीसा चो कटक गांव ने होन रहे। ए मंचो माए चुनाव प्रभावती देवी और बाप जानकी दास बोस रला। ए मन कटक चो वकील रला। 14 भाई बहन ने सुभाष चंद्र बोस 9वां नंबर चो रहोत। बंगाली परिवार ने जन्म लो सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई ने खूबे नंगत रला। आप लो गांव चो स्कूल ले मूर चो पढ़ाई करला। एचो पाछे 1916 ने कलकत्ता चो प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज ने दाखिला धरला। सुभाष चंद्र बोस के भारतीय सिविल सेवा चो अफसर बनाऊ चाहते रहोत। एई काजे कॉलेज चो पढ़ाई पाछे ए मन के सिविल सेवा चो पढ़ाई काजे इंग्लैंड चो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भेजला। ए समय ने भारत में अंग्रेज मन चो शासन चलते रहे। सिविल सेवा चो परीक्षा ने ए मन के चौथा स्थान मिलली। कई दिन तक ए मन ए नौकरी के करला। मानतर मन ने देश और आजादी भरू रहे। तो 1921 में ए मन ए नौकरी के छाड़ून भारत इला। तो भारत ए उन राजनीति ने उतरला और स्वतंत्रता चो लड़ाई लड़तो काजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शामिल होला। महात्मा गांधी और चितरंजन दास संगे काम करो मुरियाला। ए मन के कई हार जेल जाऊक पड़ली। चितरंजन दास के ए मन आप लोग गुरु मानते रहोत। 1921 ले 1941 चो समय ने ए मन के 11 हार जेल होली। अंग्रेजी सरकार ए मन चो ऊपरे कई मुकदमा चलाला। जेल ने रहुन भाती वाले ए मन आप लोग लक्ष्य ने नी भुलकला और भारत चो आजादी काजे काज करते रला। आजादी चो लड़ाई काजे आप लोग सर्वस्व न्योछावर करतो असन महापुरुष चो नाव के सुनून आम के गर्व महसूस हुए से। ए मन वीर सैनिक योद्धा महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ रला। ए मन देश के आजादी मिरो एचो काजे खूबे संघर्ष करला। ए मन भारत चो महान क्रांतिकारी रला। गुलाम भारत चो आजादी काजे ए मन आजाद हिंद फौज चो गठन करला। असन तो ए मन कई ठन नारा लिखला। ए मन चो ए प्रसिद्ध नारा आए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और गोटो गाय दिल्ली चलो। तो सुभाष चंद्र बोस जो बाले चुनाव रहे एमेली सेकल और ए मन जो बेटी चुनाव रहे अनीता बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेताजी और देश नायक जो उपाधि कसन मिली आल ए के जानू। तो पिला मन जर्मन जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस के सबले पहल नेताजी बलून रहे। एचो पाछे सपाय ए मन के नेताजी बल्ला। नेताजी संगे संगे ए मन के देश नायक बले बल्ला। सुभाष चंद्र बोस के देश नायक चो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर देव रहे। स्वतंत्रता संग्राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभातो बीता नेताजी चो 18 अगस्त 1945 ने गोटक विमान दुर्घटना ने ए मन चो मृत्यु होली। तो पिला मन दखा तुमने मन तो सुभाष चंद्र बोस जो कितलो अच्छा देश ने काय काय काज करला ये गोट मन के तो जान लास। अब पिला मन दखा तुम्ही बले असने नंगत पढ़ा लिखा हुआ और नंगत पढ़ुन भाती आप लोग माए बाप चुनाव के और आप लोग गांव चुनाव के और संगे संगे आप लोग देश चुनाव के बले आगे बढ़ावा। तो पिला मन दखा ये गोट के तो सुन लो मंत्र अदाए तुम मन का जे गोट गीत आनले से ताले एक गीत के बले सुनू।

बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोट में आप सुन रहे थे सुभाष चंद्र बोस के विषय में। प्रस्तुति थी अनीता निर्मल की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रूपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
4: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
3: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
6: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
5: This is Suparna Bhatia from Rome.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness, and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business Reform Summit in New Delhi. Mr. Goyal said the present global situation and geopolitical uncertainties should be viewed as an opportunity for India to strengthen supply chains.
7: That we will convert the current situation and the risks associated with the geopolitics around the world into an opportunity for faster reform, into preparing ourselves for greater resilience, make our supply chains stronger, and use every bit of opportunity that the world provides, that India is offering to the world. For example, the 38 countries which are now one after the other coming in within the framework of free trade agreements.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said, Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए फिल्म लेकिन का ये गीत। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

फिल्म शोर का गीत आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं डीएस बोरकर की आवाज में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम देवगांव जिला कोंडागांव से बुद्रू मंडावी, श्रीमती मंगलदेव मंडावी, श्रीमती मंगली मंडावी, श्रीमती सत्यवती मंडावी, जसवंत मंडावी और बसंती मंडावी। ग्राम गढ़िया लोहंडीगुड़ा बस्तर से बुंजाराम मौर्य, सुद्रू सेठिया, लखमू कश्यप, कोपाराम मंडावी, तुलसी सेठिया और हेमराज सेठिया।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है हीरा सिंह कश्यप और साथियों की आवाज में भतरी में। इस लोकगीत को सुनना चाहा है ग्राम मोरमेड़ विकासखंड बीजापुर से सोहन तेलाम, विनोद तेलाम, मुन्ना तेलाम, विजय तेलाम और चिन्नाराम तेलाम। ग्राम राजा मुंडा जिला सुकमा से लक्ष्मण मंडावी, गरिमा पोड़याम, हिरमा सोड़ी, वेके हुंगा, वेके नागो, माडवी गणेश, माडवी देवा और महेश कुंजाम। ग्राम बड़े मुरठपाल तोकापाल से भादुराम कश्यप, सहदेई कश्यप, मयंक कश्यप, चेयक कश्यप, कंसुला कश्यप, गुनी कश्यप, अनुराग कश्यप और बंडराज कश्यप। ग्राम करंजी कोंडागांव जिला कोंडागांव से विनोद नेताम, छेमेश्वरी नेताम, त्रिषा नेताम, नवल राम नेताम, रघमती बाई, बुधियारीन बाई और लुमनी बाई नेताम।

आइए अब सुनते हैं कोया और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम डोडरेपाल छोटे गुडरा विकासखंड दरभा जिला बस्तर से बलदेव मंडावी, विनीता मंडावी, दिलीप मंडावी, वेदांत मंडावी, परिता मंडावी, छवि मंडावी और अवनिका कश्यप। ग्राम कोरीरास कुआकोंडा जिला दंतेवाड़ा से मासा कुंजाम, मंगल कुंजाम, अजय कुंजाम, अनिता कुंजाम, कमलेश्वर कुंजाम, सुचित्रा कुंजाम, आरती कुंजाम और संतु कुंजाम। ग्राम मुरनार विकासखंड ओरछा जिला नारायणपुर से सुकमा वेड्डे, छुन्नीलाल वेड्डे, गोविंद वेड्डे, पंडी वेड्डे, गिजरू वेड्डे, सुखलाल वेड्डे और रमेश वेड्डे। ग्राम बिरिंगपाल विकासखंड जगदलपुर से घासीराम कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, प्रियंका कश्यप, खगेश कश्यप और अंबिका कश्यप।

आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में प्रस्तुत है भीमा देव पाड़ और कासन पाड़। वादक कलाकार हैं भारत और साथी।

लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुन रहे थे भीमा देव पाड़ और कासन पाड़। वादक कलाकार थे भारत और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान

होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद। होंगे तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।